नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय पे सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते

में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

俊等。हम जितने चाहें उतने लोगों से प्रेम कर सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक दिन हम प्रेम के मामले में दिवालिया हो जाएंगे। जहां तक प्रेम का सवाल है, हम कभी दिवालिया नहीं हो सकते। ये विचार ओशो का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं झरोखा। इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 308, 6:35 पर।

संगीत सरिता इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 11। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:07:30 पर। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैराही प्यार के। सुबह 8:00 सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे भाग 45 और यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक में आप सुनेंगे नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। केंद्रित होगा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण इस कार्यक्रम का होगा रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00 और दिन में 12:00 हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। 1:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से दिन में 1:00 और श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 2:00 समाचार का समय होगा 2:15। 2:30 यानी कि 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 सुनिए कार्यक्रम हेलो सहेली, संवादक दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4:00 सुनिए पिटारा गीतों भरी कहानी। कहानी आवाज ही पहचान है, लेखन और वाचन अरुण शेखर का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 99 नए पुरानी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसी बीच 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार। झरोखा सुनेंगे आप शाम 6:30 पर, जिसमें आपको शाम में होने वाले कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर और जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का भाग 10, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

हवा महल में सुनिए नाटिका शकुन का शीनू, मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुदगुदी, हिंदी रूपांतर एस ए हुनगुंद, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्भेकर। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर, समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे, इसी के बाद आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 308। आज आप सुनेंगे लंका कांड।

मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूं। पुलस्त्य ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधतावश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब अपने करनी के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ हैं और किराना घराने की गायकी पर चर्चा हो रही है इन कड़ियों में। शकुंतला जी, पिछली दो कड़ियों में हमने आलाप के बारे में बात की, आज किराने घराने की जो गायकी है उसमें जो तान की विशेषता होती है, इसकी तान कुछ अलग ही होती है। हाँ। क्या अलग होती है, तो कैसे अलग होती है, जरा बताइए।
2: बहुत ही प्यारा सा सवाल आपने पूछा, क्योंकि तान को ज्यादातर लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन तान जहाँ ली जाती है
1: जी,
2: उस पे तो हम हमारा भाव दिखा नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप आना चाहिए।
1: अच्छा।
2: किराना घराने की तान जो है उसमें स्पष्टता, उसके स्पष्टता के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तान की जो स्पष्टता एक विशेषता इस घराने की है, प्रत्येक स्वर स्पष्ट सुनाई देता है तान में।
1: अच्छा।
2: किराने घराने की तान में कोई भी स्वर ऐसा धुंधला या स्पष्ट नहीं होता। हर स्वर अपनी शुद्धता और पहचान के साथ सुनाई देता है।
1: क्या बात।
2: तान में स्वर शुद्धता सर्वोपरि होती है।
1: बिल्कुल।
2: तेज गति में भी स्वर अपनी सही जगह श्रुति पर लगाए जाते हैं। क्या है, तान में स्वर यहाँ वहां जाने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन किराना घराने में वही हम देखते हैं कि तान में हर एक स्वर पक्का उसकी जगह पर लगना है।
1: अच्छा।
2: झटकेदार नहीं तान, तो मींड और स्वर के संबंध में जो इसके साथ सहज रूप से जो आगे जाती है, और ये तान बहुत मधुरता से आती है। तानों का उद्देश्य केवल कौशल दिखाना इतना ही नहीं है, तो राग का स्वरूप जारी रखना।
1: हाँ।
2: राग का भाव को बनाए रखना।
1: जी, जी, जी,
2: और प्रत्येक तान राग के एक व्याकरण के अनुरूप होनी चाहिए।
1: बराबर।
2: इसका कटाक्ष यहाँ पे हम रखते हैं। किराना घराने की और एक तान के बारे में मैं बोलूंगी कि केवल गति ही नहीं बल्कि भाव ये तान में होता है, भाव भी होता है।
1: जी जी।
2: ताने का राग और भावाभिव्यक्ति, इसके लिए ही ये गायकी ज्यादा प्रभावशाली बनी है।
1: जी।
2: अभी देखो सरगम तानों का एक सुंदर प्रयोग। हाँ। हमारे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब ने किया है।
1: जी जी।
2: विशेष रूप को विकसित किया है उन्होंने, और तानों में भी प्रत्येक स्वर स्पष्टता। हाँ। और संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी।
2: उसके बाद सरगम डालने की प्रथा हमारी विदुषी प्रभा अत्रे ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यहाँ तानों की गति नियंत्रित

0: रहती है और अनावश्यक तेजी के बजाय स्पष्टता, मधुरता, संतुलन,
1: बातों
0: इन
1: का
0: सब बातों का अधिक महत्व यहाँ रहता है।
1: जी।
0: श्रोता के लिए सहज श्रवणीय गाना अगर बनना है तो स्पष्ट उच्चारण और स्वच्छ प्रयोग के साथ श्रोता तानों के प्रत्येक स्वर को
1: जी,
0: एकदम अच्छी तरह से सुन सकेंगे,
1: उसका आनंद
0: समझ
1: ले सकेंगे।
0: सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई श्रोता जो रहता है ना,
1: हाँ
0: वो गायक से भी ज्यादा उसका ज्ञान होता है संगीत
1: अच्छा।
0: के बारे में। वो गा नहीं सकता लेकिन समझ सकता है, ऐसा जो जानकार कहते हैं हमारी भाषा में,
1: हाँ
0: जानकार श्रोता है ना, उनके लिए तान का एक हर एक सुर,
1: हाँ
0: कभी भी इधर भी तान का सुर गया, अलग लिया,
1: हाँ
0: तो तुरंत पकड़े जाते हैं।
1: अच्छा
0: तान सुननी है तो आप एकदम बढ़िया तान हीराबाई बड़ोदे करके,
1: ओहो, हम
0: स्वच्छ, दानेदार,
1: हाँ
0: बहुत माधुर्य सब है उसमें,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: नहीं है। और राग प्रधान, एकदम राग को बिना छोड़े, एकदम सिंपल और बहुत ही बड़ी ध्यान।
1: शकुंतला जी, ये तान के बारे में जो बातें आपने बताई, इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप जो हम रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं हीराबाई बड़ोदेकर जी, क्या उसकी क्या खासियत है, जरा बताइए।
0: हीराबाई का सुर एकदम मुलायम, एकदम गोड़वा जो उसमें है,
1: मिठास उसमें जो है
0: मिठास जो है,
1: जी।
0: और बहुत ही प्यारा सुर के बारे में पक्का हर एक जगह पर, और उसका जो लय है वो
1: जी
0: भी बहुत अच्छी तरह से जाती है। तान सुननी है और तान सीखनी है
1: हाँ,
0: तो हीराबाई को ही सुनना है।
1: आइए सुनते हैं।

0: जयन जी
1: जी,
0: कोई कोई बातें हम बोल के नहीं कह सकते हैं, इतना डेप्थ उनकी आवाज में रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तान के बारे में और सुरेलता के बारे में जो हीराबाई के पास था,
1: जी जी जी,
0: वो एकदम अपार था, बहुत ही अच्छा था।
1: जी जी। और इसे सुनते हुए जो गाना याद आ रहा था, तो उस गीत की झलक सुनते चलें, चित्रलेखा फिल्म का गाना है, मन रे तू काहे न धीर धरे।
0: वाह, बराबर हमारे घराने का धीर धरने का,
1: हाँ,
0: जो
1: हाँ।
0: ये है, ये गाना बहुत ही उसके लिए फिट है।
1: जी चलिए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होना।

वर्कर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिल है नादान इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है सुधा मल्होत्रा ने। शकील बदायूनी की रचना है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ज्वार भाटा फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिए हैं अरुण कुमार और साथियों ने। नरेंद्र शर्मा ने इसके बोल लिखे हैं और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आपने ट्यून किया है विविध भारती। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमदर्द, इस फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज़ में। इस गीत को रचा है प्रेम धवन ने और इसकी तर्ज बनाई है अनिल बिस्वास ने।

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: अनिल बिस्वास का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है सरदार जाफरी ने। मीना कपूर ने इसे गाया है और परदेसी फिल्म का ये गीत है।

0: के दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा थीम पर लेजर शो, तीर्थ स्थलों और शक्ति पीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ 25 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: सेवा संकल्प अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला पंचायत प्रशासकों सहित नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी वर्चुअल बैठक की।
2: मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी से इस अभियान में गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को जोड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर की शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में लाभार्थी परिवारों के साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं से बने प्रमुख भवनों और विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करें। समाचार कक्ष से रितेश।
1: उधर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर देश के सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा शामिल हुए। श्री शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 157 घंटे का अनवरत स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी

0: वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहां के चिकित्सक आकर के यहां पर ओपीडी करेंगे, मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहां पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।

0: हुआ स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहां के चिकित्सक आकर के यहां पर ओपीडी करेंगे, मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहां पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। शिक्षकों के लिए स्पेशल TET 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पेशल TET के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कल बिजनौर में महिलाओं से संबंधित विवादों पर जन सुनवाई की, साथ ही उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को संबोधित भी किया।
2: ये बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि ये सभी बहनें विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी प्रगति करने वाली सभी बहनें हैं। आप सभी वो शक्ति है जो परिवार को संवारती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करती है।
1: सरकार ने 2 जिलों के जिलाधिकारियों सहित 5 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, वहीं समीर अब जालौन के नए जिलाधिकारी होंगे। चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं का आगमन कल से ही होने लगा था। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिर की परिक्रमा कर रहे हैं। वहां के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएँ की हैं।
3: हमारे इस मेले की सुरक्षा में डिप्टी SP रैंक के 14 अफसर हैं, SO इंस्पेक्टर्स 15 लगे हुए हैं, 36 इंस्पेक्टर, 262 सब इंस्पेक्टर, 13 महिला सब इंस्पेक्टर, 820 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 125 महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक के 18 उप निरीक्षक और 80 कांस्टेबल्स, PAC की 2 कंपनियां हैं, फ्लड प्लाटून भी हमारे पास 2 प्लाटून हैं।
1: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार कल 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इस बीच राज्य की कई नदियाँ अब भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 4 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण की सचिव ने अधिकाधिक पात्र वादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की।
4: मेरी जनता से ये अपील है कि ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपने मुकदमों का निस्तारण हमारे पास आके करवा सकते हैं, ना उनसे हम कोई लकड़े छूट लें, और यदि पहले तो उनसे कोई जुबानी प्रकरण लंबित है और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है।
1: सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल TET, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिर की परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित साहित्य कुमार नाहर का सितार वादन राग भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनूप कुमार बनर्जी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित साहित्य कुमार नाहर का सितार वादन राग भैरव। इनके साथ तबले पर संगत किया अनूप कुमार बनर्जी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस

0: रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सूर्यकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की

0: पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा।

0: 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अल-अक़वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC-NET जून 2026 के अंग्रेजी कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की अबूरी आंसर कीस जारी कर दी है। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर खवातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। कौमी राजधानी में इस अहम तकरीब के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इस दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले मुल्क शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूब अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सरबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तरा तावुन और पायदार तरक्की का कयाम। इस सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूब अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेदशकियान, अबू जहबी के वली अहद शहजादे, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो वियरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अस-सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुंग उन सरबराहान ममलुकत में शामिल हैं जो इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। इधर अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदर दिल्मा रोसेफ उन बैन अल-अक़वामी इदारों के सरबराहों में शामिल हैं जो इस तकरीब में शरीक होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सदर पुतिन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इधर जनूबी अफ्रीका के सदर भी आज सुबह नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं जबकि कुछ दीगर मुल्कों के रहनुमा आज बाद में पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में मुनक्कदा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर ब्रिक वज़राए खारजा मीटिंग के दौरान इस ग्रुप को हतमी शक्ल दी गई। पहली ब्रिक समिट 16 जून 2009 को रूस के यकतरिनबर्ग में मुनाकिद की गई थी। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद जनूबी अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल किया गया जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार अप्रैल 2011 में चीन के सानिया में मुनाकिदा तीसरी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत की थी। जनवरी 2024 में ब्रिक्स में मजीद तौसी की गई और मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात इसके मुकम्मल रुकन बन गए। इस साल 1 जनवरी को भारत ने ब्रिक्स की सदारत संभाली थी। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स की सदारत कर रहा है। इससे पहले साल 2012, 2016 और 2021 में भारत ब्रिक्स की सदारत कर चुका है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: ब्रिक्स कारोबारी फोरम 2026 की मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली है। दिन भर की इस मीटिंग में मेंबर मुल्कों के 1000 से ज्यादा कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, महकमा तिजारत के वजीर, माली उमूर के लीडर, आलमी सरमायाकार और सनती अख्तराकार शिरकत करेंगे। इसका अहतमाम सनत तिजारत के सरकर्दा एवानों, फिक्की, CII और SOCHM के इश्तराक से ब्रिक्स कारोबारी कौंसिल ने किया है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक अहम रूट्स पर ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया जाएगा और मोटरगाड़ियों की आमोदरफ्त पर कुछ बंदिशें आयद रहेंगी। राब्ता सड़कों के साथ साथ जो इलाके मुतासिर रहेंगे उनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग

मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, शांति पथ, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, प्रेस एनक्लेव रोड और लाला लाजपत राय मार्ग शामिल हैं। लोगों को यह सलाह दी गई है कि वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तजवीज करदा मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। उधर दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि सभी मेट्रो स्टेशन अगला नोटिस जारी होने तक खुले रहेंगे। दिल्ली में वाकई मरकजी हुकूमत के दफातर आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के लिए लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी इंतजाम में सहूलत की खातिर यह फैसला किया गया है। दिल्ली हुकूमत के दफातर, सरकारी इदारे, सभी हुकूमत के इमदाद याफ्ता और निजी स्कूल भी आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात के सबब इस माह की 14 तारीख तक कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और दीगर छोटे फिजाई प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर इस माह की 11 से 13 तारीख तक राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान अवाम के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि कल राष्ट्रपति भवन के अहाते में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी नहीं होगी। सातवां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 आज मुंबई में अख्ताम पजीर होगा। GFF 2026 का मौजू है इम्कानात से असरात तक, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, शमूलियाती फाइनेंस के लिए भरोसेमंद मरबूत आलमी निजाम। इस चार रोजा फिनटेक फेस्ट में फिनटेक के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल के लिए पॉलिसी साज, मरकजी बैंक, मालियाती इदारे, फिनटेक्स और टेक्नोलॉजी की कंपनियों समेत दीगर आलमी शराकत दारों ने शिरकत की। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बैनुल अक्वामी माली फंड IMF ने मौजूदा माली साल की पहली सैमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। IMF के मवासलाती महकमे की डायरेक्टर जूली कोजाक ने कहा है कि तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद खिदमात और बरामदात के शोबे के फरोख की बदौलत भारतीय मईशत की कारकर्दगी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही है। उनका यह बयान भारत की शरह तरक्की के ताजा आदद शुमार, उसके मैक्रो इकतसादी डेटा और ईंधन दरामद करने वाले बड़े मुल्क पर खाम तेल की ज्यादा कीमतों के असरात के ताल्लुक से पूछे गए सवालों के जवाब में सामने आया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। इस इकदाम से इन कारकुनों के लिए अपना नया आजिर तलाश करने या दीगर इमिग्रेशन मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने के लिए वक्त कम रह जाएगा। अगर दाखिली सलामती महकमे की इस तजवीज को हतमी शक्ल दी जाती है तो मुलाजमत से महरूम होने वाले कारकुनों को वहां कयाम के लिए इजाजत न मिलने की सूरत में बिला ताखीर अमरीका से बाहर निकलना होगा। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के दो रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर सिलवासा के डॉ APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज में एक अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो तिब्बी तालीम और तहकीकी इदारे और दमन में हाल ही में इफ्तिताह किए गए नमो अस्पताल समेत अहम मकामात का दौरा करेंगे। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC NET जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के फिर से कराए गए इम्तिहान की उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। उम्मीदवार इस महीने की 13 तारीख तक UGC NET पोर्टल के जरिए आंसर कीज को ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं। NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पर्चों में कई गलतियों के बारे में शिकायतें मौसूल होने के बाद UGC NET इम्तिहान के इन तीन पर्चों का इम्तिहान दोबारा कराने का ऐलान किया था। अमरीकी सरजमीन पर 9/11 को हुए सबसे खतरनाक हमले को 25 बरस हो गए हैं और अमरीकी शहरी इसके तकरीबन 3,000 मुतासरीन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को हाईजैक किए गए 4 मुसाफिर तैयारों को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने अलकायदा को नेस्तो नाबूद करने और उसके लीडर ओसामा बिन लादिन को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान पर फौजी हमला किया था। ओसामा 2011 में पाकिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान मारा गया था।

0: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन के वक्त अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में भी तेज बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल तक तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। दिन के वक्त ज्यादा दर्जा हरारत के बाद आज केरलम के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पथनमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुकी अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा पायदार और ज्यादा मुसावी सेहत निजाम की तश्कील की खातिर इलाकाई शराकतदारी और इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करने के भारत के अज़्म का इआदा किया है। वजीर मौसूफ ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जुनूब मशरकी एशिया के लिए आलमी सेहत तंजीम WHO की इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही। जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारत सेहत की इब्तदाई देखभाल को मुस्तहकम करना, मयारी खदमात को वसअत देना और मुतादी और गैर मुतादी बीमारियों दोनों पर तवज्जो मरकूज करना जारी रखे हुए है। इजलास में भारत को आलमी सेहत तंजीम जुनूब मशरकी एशिया खित्ते के अवार्ड से सरफराज किया गया। सेहत के वजीर ने कहा कि यह एजाज गुज़श्ता दहाई में भारत की अवामी सेहत के सिलसिले में हुसूलयाबी को तस्लीम करता है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश को 40 रन से हरा दिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इसमें जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। कल जनूबी कोरिया के चांगवोंग में आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने एक मजबूत शुरुआत करते हुए सोने का एक, चांदी के दो और कांसे का एक तमगे समेत 4 तमगे जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखारा और मिली शाह पर मुश्तमिल खवातीन की भारतीय टीम ने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें और अब अखबारात कहने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के इनेकाज से मुतालिक खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, दिल्ली ब्रिक्स सरबराह इजलास के लिए तैयार, मेहमानों की आमद शुरू। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत की डिप्लोमेसी का असर, ट्रंप समेत पूरी दुनिया की ब्रिक्स समिट पर नजर। इसी अखबार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी नुमाया किया है कि भारत तरक्की और अमली तआवुन को तरजीह देना चाहता है। वजीर आजम मोदी की इस्माइली तबके के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की खबरों को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। इसके अलावा अहम बैनुल अक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, यमन में हूसियों का बुहरे अहमर के साहिली शहर मोखा पर कब्जा, ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाब जीतने पर हर अमरीकी शहरी को $5,000 देने का वादा किया।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैनुल अक्वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सैमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक क्लीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के कयाम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज पेश की है। और क्रिकेट में दुबई में भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर ख्वातीन एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं

0: का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, यानी 11 सितंबर की, और हम मना रहे हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अगर धरती माँ की कोई सबसे खूबसूरत मुस्कान है तो वो है वन, जहाँ हवाएं पत्तों से बातें करती हैं, जहाँ सुबह सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच में झांकती है, जहां पक्षियों की चहचहाट बिना किसी साज के संगीत बन जाती है। वही तो है हमारा वन। वन सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं श्रोताओं, वन हमारी सांस है, हमारी बारिश है, हमारी मिट्टी की खुशबू है, और न जाने कितने जीवों का घर। अगर जंगल न हो तो पक्षी कहाँ अपना घोंसला बनाएंगे, जानवर अपना कहाँ घर पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं वनों का होना बहुत जरूरी है। पेड़ों को देखने की नहीं, एक महसूस करने की कोशिश करिए। किसी पेड़ के नीचे कुछ पल बैठिए, उसकी छांव को महसूस कीजिए, हवाओं में पत्तों की सरसराहट सुनिए और महसूस कीजिए। कहते हैं ना कि जंगलों में जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तो एक अलग सी खुशबू, एक अलग सा संगीत हमें सुनाई देता है। ये दिन भारत के जंगलों, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर वन कर्मियों और शहीदों को समर्पित है। श्रोताओं, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2013 में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद के दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। जंगल और पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। वन जीवों और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें वन रक्षकों के साहस और बलिदान को याद करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, ये बताना चाहिए। मधुर संगीत सुनना चाहिए उस जंगल की, जो हाँ उसके बीच रहकर सुनाई देती है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये है कार्यक्रम आपके विचारों का, जो आप हमें लिख भेजते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। आप भी हमें अपने विचार लिख भेजिए, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं विचार जिन्होंने हमें पहले ही लिख भेजा है। तो सबसे पहले लेते हैं विचार नीरा त्रिपाठी जी का। इन्होंने लिखा है कि वक्त नहीं है किसी के पास जब तक ना हो मतलब खास। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। एक और विचार इन्होंने भेजा है, ये लिखती हैं कि कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर देती है। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिख भेजा है नीरा त्रिपाठी जी ने। अगला विचार है नैनी प्रयागराज से। श्याम जी लिखते हैं, बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर लिखी होती है। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिखा है। अगला विचार है राज लक्ष्मी त्रिपाठी जी ने। ये लिखा है कि आज इंसान के पास समय कम है, पर संवेदनाएं उससे भी कम होती जा रही हैं। किसी के चेहरे की मुस्कान पढ़ने की बजाय हम उसकी तस्वीर पर लाइक कर देते हैं। आइए फिर से थोड़ा इंसान बने, किसी का हाथ थामें, किसी का दर्द समझें, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं संवेदनाओं से जीवित रहते हैं। बहुत ही सुंदर विचार आपने लिख भेजा है हमें। अगला विचार लिखा है विष्णु मिस्किन जी ने। ये लिखते हैं कि सड़क पर मंजिल तक जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं, सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। एक पल की जल्दबाजी लापरवाही या यातायात नियमों की अनदेखी हादसे का कारण बन सकती है। याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए रफ्तार से पहले अपनी और दूसरों की जिंदगी का महत्व दें। जी हाँ, अपना और औरों का ख्याल रखें। इनके विचारों द्वारा ये संदेश दे रहे हैं आप सभी को, हम सभी को। अगला विचार भेजा है

सुदर्शन साह जी ने ये लिखते हैं कि स्वयं की निगाह में गिरकर जो व्यक्ति उठता है और आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है, यदि उसके आगे बढ़ने के रास्ते में फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह हर उस कठिनाई को बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है। सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। वो व्यक्ति कांटों के फूल में भी गुलाब रूपी गुलशन को ढूंढ निकालता है और उस सफलता को अर्जित करके उसके दिल को बड़ा ही सुकून और आनंद मिलता है। बहुत ही सुंदर सुंदर विचार आप सभी ने लिख भेजा है, ऐसे ही विचार हमें लिख भेजिए।

हम बात कर रहे हैं वन रक्षक अधिकारियों और स्थानीय लोगों के ऐतिहासिक बलिदान की, जो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। श्रोताओं, जंगल की देखभाल करने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। वो पेड़ों को काटने से बचाते हैं, जंगल में आग लगने से रोकने में मदद करते हैं, जंगल में रह रहे जानवरों का भी ध्यान रखते हैं। जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ हमें साफ हवा देते हैं, इनसे हमें औषधियाँ मिलती हैं, जंगल से बहुत से पशु पक्षी रहते हैं, अपना निवास करते हैं, धरती हरी भरी कितनी सुंदर दिखती है। जंगलों की रक्षा करना केवल वन विभाग का काम नहीं, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और लगाए गए पौधों की देखभाल करनी चाहिए। अपने परिवार, स्कूल और समाज में लोगों जंगलों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। यदि किसी कारण से पेड़ काटना पड़े तो उसके बदले एक नए पेड़ हमें लगाने चाहिए। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हमें प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेने की प्रेरणा देते हैं। स्वस्थ जीवन, स्वच्छ वातावरण और उज्जवल भविष्य के लिए जंगलों का सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। तो हम सब एक संकल्प लें, वन बचाएं, प्रकृति बचाएं, भविष्य बचाएं। इसी के साथ लेते हैं हम विदा। आप सुनते रहिए नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जाँच लें।
5: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
6: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
7: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
6: RBI कहता है जानकार बनिए,
7: सतर्क रहिए।
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
9: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अदनान धूल की आवाज, संगीत रवि अहमद का, बोल अदनान धूल के, और फिल्म का नाम एक विलन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला व अंतिम गीत सुनिए बागी टू फिल्म से सुविन नौटियाल की आवाज़, बोल शहीद गोदरी के और संगीत मिथुन का।

जुबिन नौटियाल के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हलचल पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
1: बस्ती जिले में घाघरा और कुआनो नदियों के जलस्तर बढ़ने से एक दर्जन गांव में घुसा पानी और एक दर्जन से अधिक गांव प्रभावित। बस्ती जिले में नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा कुआनो नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई हैं, तो करीब एक दर्जन गांव मैरून हो गए हैं, जबकि दो दर्जन से अधिक गांव पानी से प्रभावित हो गए हैं। जिले के हरैया और बस्ती सदर तहसील के एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर बांधों और शरणालयों में शरण लिए हैं। जिला प्रशासन राहत बचाव के साथ बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव और स्टीमर लगाए गए हैं। इस संबंध में जिला अधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया कि
2: बाढ़ क्षेत्र में हम लोग पहले भी आए थे, तब थोड़ा कटान हो रहा था और जो रेस्टोरेशन वर्क था वो किया जा रहा था। इस बीच में क्योंकि कटान थोड़ा और ज्यादा हुआ था और कप्तान साहब थाना दिवस के पहले वहाँ गए थे, हमने पूरी अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सबके साथ वहाँ पे विजिट की थी। रेस्टोरेशन वर्क वहाँ पे काफी ठीक तरीके से किया गया है और कोई भी आबादी अभी फिलहाल वहाँ पे प्रभावित नहीं।
1: बस्ती जिले के वाल्टरगंज के तत्कालीन थाना अध्यक्ष सूर्यप्रकाश सिंह की फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला और उसके साथियों पर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लाखों रुपए वसूलने का आरोप है। इस संबंध में बस्ती के पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि
3: जब ये गैंग का खुलासा हुआ है तो निकल के आया कि इस तरह के और भी कई प्रकरण हैं जिसमें ये गैंग इन्वॉल्व है। वो बार बार एसओ को निगोशिएट करने के लिए अमाउंट बुला रहे थे। ये लोग उनसे 1 करोड़ रुपए वसूलने की प्रयास में थे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक बिजनेसमैन को इन्होंने अपने हनी ट्रैप में फंसा के उससे भी 1 करोड़ रुपया मांगने का प्रयास किया जा रहा था। जो इन्होंने संपत्ति पिछले समय में हनी ट्रैप के मामलों से अर्जित करी है, इसको 107 BNS की धारा के अंतर्गत जब्त करवाया जाएगा।
1: बस्ती में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच के दौरान सामने आए 1017 लाइसेंसों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारी की भूमिका सामने आने के बाद 4 कर्मचारियों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। RTO बस्ती की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी पर भी कार्रवाई की तैयारी है। फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात सामने आई है। RTO फरीउद्दीन के मुताबिक उच्चाधिकारियों से मिले निर्देश के क्रम में 4 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इस संबंध में RTO बस्ती फरीउद्दीन ने बताया कि
4: जांच के उपरांत जो आउटसोर्स कर्मचारी है सेवा प्रदाता कंपनी, उनके कर्मचारियों की भूमिका सामने आई थी, जिसके क्रम में RTO प्रशासन बस्ती श्रीमती माला वाजपेयी के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी जो 4 कार्य थे उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस के द्वारा विवेचना करके आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1017 ड्राइविंग लाइसेंस के फर्जी तरीके से बनाए जाने की मामला जो है जांच समिति के द्वारा बताया गया है और इन सभी ड्राइविंग लाइसेंस के धारकों को विभाग के द्वारा नोटिस प्रेषित किए जा रहे हैं और इनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी।
1: बस्ती के मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर बृहद रूप में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराकर निवेश कर उद्यमियों को रोजगार प्रदान कराना है। विभागीय अधिकारी मंडल के उद्यमियों की इकाइयों की स्थापना एवं निवेश तथा स्वरोजगार में आ रही समस्याओं का त्वरित गति से समाधान कराएं। संयुक्त आयुक्त उद्योग बस्ती मंडल गौरव मिश्रा ने बताया कि बस्ती जनपद में कुल 183 इकाइयों द्वारा 2,206 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश एवं 7,138 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है, जबकि सिद्धार्थ नगर में 72 इकाइयों द्वारा 2,266 करोड़ की पूंजी निवेश एवं 5,812 व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित है। संत कबीर नगर में कुल 98 इकाइयों द्वारा 564 करोड़ 38 लाख का पूंजी निवेश एवं 2,949 व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित है। मंडल में कुल 353 निवेशकों द्वारा 5,036 करोड़ 58 लाख रुपए का पूंजी निवेश एवं 15,899 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। उक्त के सापेक्ष मंडल में कुल 310 निवेशकों के रुपए 2,787 करोड़ 28 लाख रुपए के निवेश प्रस्तावित धरातल पर आए, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 10,825 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त ने विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना ODOP वित्त पोषण योजना तथा निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों का गहनता से

0: समीक्षा किया। बस्ती जिले में चीनी की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी कृतिका जोशना ने कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आमजन को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने तथा आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से चीनी की वर्तमान उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनपद में चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से स्टॉक की निगरानी करें और आवश्यकता के अनुसार समय से आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चीनी के वितरण में किसी भी स्तर पर अनियमितता, कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही निर्धारित दर एवं मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
1: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: बदायूं जिले में लगातार हो रही बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने के कारण दातागंज तहसील क्षेत्र में बहने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर आसपास के गांवों में पहुंचने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधि और जिला प्रशासन ग्रामीणों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बदायूं के जिला अधिकारी अवनीश राय ने बाढ़ प्रभावित ग्राम जटा का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य टीमें नियमित रूप से पहुंच रही हैं अथवा नहीं। शिक्षक दिवस पर योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में आयोजित राज शिक्षक पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया, जिसका सजीव प्रसारण बदायूं में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सदर विधायक महेश चंद गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक और मुख्य विकास अधिकारी गामनी सिंगला सहित अन्य अधिकारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं ने देखा। इस दौरान CDO गामनी सिंगला ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके नवाचार, समर्पण और अनुभव से अन्य शिक्षक भी प्रेरणा लेकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। नवाचार के अंतर्गत उमंग एक पहचान कार्यक्रम जनपद के परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक और सविलियन विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने और जीवन कौशल के लिए विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताएं कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों देश के युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। बदायूं VIMT और राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छात्र छात्राओं को दिखाया गया। इस दौरान सदर विधायक महेश चंद गुप्ता ने कहा कि आज देश के युवा विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलों से शरीर में जोश, स्फूर्ति और ताकत आती है। लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ो, मंजिल जरूर मिलेगी। किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत खुद मेहनत की मोहताज होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि देश का युवा आगे बढ़कर विश्व में नाम रोशन करे। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में उद्यमी प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत बीते दिनों बदायूं के डाइट परिसर स्थित ऑडिटोरियम में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र बदायूं द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित योजनाओं पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य जिले के उद्यमियों, युवाओं और नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी गामनी सिंगला के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम योजना, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, औद्योगिक आस्थान प्रबंध समिति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में तेजी लाने और त्वरित संबंधी कार्यक्रम व उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी गामनी सिंगला ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और उचित मार्गदर्शन के उद्देश्य से छात्र छात्राओं के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान छात्र छात्राओं ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी सहित विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्य विकास अधिकारी ने छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में उचित मार्गदर्शन देते हुए नियमित अध्ययन, लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी करने और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। बदायूं जिले के कादर चौक रोजहानी ब्लॉक के गांव अलापुर चमारी चेतु नगला निजामपुर के 13 लोगों की बागपत में एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पूर्व मंत्री आबिर रजा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। पूर्व मंत्री आबिर रजा ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार।

0: काश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

आप सुन रहे हैं कैंपस डायरी, एक ऐसा सफर जहां हम पहुंचते हैं शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, उनके कैंपस की फिजा को महसूस करते हैं, तालिबात के ख्वाबों को सुनते हैं और जानते हैं कि आज की नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल को किस नज़र से देखती है। आज कैंपस डायरी का सफर हमें ले आया है खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये कॉलेज 1931 से यहाँ क़याम पज़ीर है, एक ऐसा तालीमी मरकज़ जहाँ इल्म के साथ साथ अदब, शख्सियत साजी और तख्लीकी सलाहियतों को बहुत अहमियत दी जाती है। किसी भी

0: सफर को तो जाइए, यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए मुझे, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। बज़्म से तेरी चले हैं आज दिल को तोड़ कर, कि बज़्म से तेरी चले हैं आज दिल को तोड़ कर, तोहफा तो अच्छा दिया है अब रुलाने के लिए। इश्क में जोगी बने तो लोग ये कहने लगे, इश्क में जोगी बने तो लोग ये कहने लगे, पेशा तो अच्छा किया है अब मांग खाने के लिए। अश्क आँखों से निकल कर बस ये कहने लगे, कि अश्क आँखों से निकल कर बस ये कहने लगे, एक उम्र सारी खो दी तुझको पाने के लिए।
1: बहुत उम्दा इरम, मेरा दिल करता है कि मैं आपसे गुजारिश करूं आप अपनी एक और प्यारी सी गजल हमें सुना दें।
0: तू कहाँ है कि तुझे ढूंढ रही हैं ये आँखें, तू कहाँ है कि तुझे ढूंढ रही हैं ये आँखें, वो बात अलग है कि अश्कों से भरी हैं ये आँखें।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: कभी रोना कभी हंसना कभी हैरान सा रहना, कभी रोना कभी हंसना कभी हैरान सा रहना, न जाने कैसी हैं ये बेजान सी आँखें।
1: बहुत खूबसूरत।
0: तुम्हारा तसव्वुर आते ही, कि तुम्हारा तसव्वुर आते ही हंस देती हैं ये बेजान सी आँखें। तुम्हारी आँखों से गहरा समंदर कहाँ, कि तुम्हारी आँखों से गहरा समंदर कहाँ, डूब जाती हैं इस दीवाने की उसमें ये आँखें। खुदा की कसम याद रखना अपना वो वादा, खुदा की कसम याद रखना अपना वो वादा, तुम्हें ढूंढती होंगी महशर में वो आँखें।
2: बहुत खूबसूरत,
1: बहुत खूब। अल्फाज जब एहसास के साथ मिल जाते हैं तो वो सिर्फ अशार नहीं रहते बल्कि दिल की आवाज़ बन जाते हैं। हमने खुनखुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिबात से कुछ अफसाने के मुतालिक भी सवालात किए। आपके ख्याल में अच्छा अफसाना लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मुशाहिदा, तजुर्बा या ख्याल?
3: मेरा नाम समीरा मलिक है, मैं बीए थर्ड ईयर की तालिबा हूँ। एक अच्छा अफसाना लिखने के लिए मुशाहिदा भी बहुत ज़रूरी है, तजुर्बा भी बहुत ज़रूरी है और ख्याल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तभी कोई अच्छा अफसाना लिख पाते हैं। कहानी लिखने के लिए, अफसाना लिखने के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुशाहिदा ज़रूरी।
1: अब हम जानने की कोशिश करें कि अफसाना किसे कहते हैं।
4: मेरा नाम है अदीबा फातिमा, मैं बीए थर्ड ईयर की तालिबा हूँ। उर्दू नसर में बहुत सी असनाफ मौजूद हैं, जैसे दास्तान, नावल, ड्रामा और मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना एक ऐसी सिंफ है जो जदीद दौर में सबसे ज़्यादा मकबूल है। अंग्रेज़ी में इसे शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। अफसाना एक ऐसी छोटी और फर्जी कहानी को कहते हैं जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू, वाकया या सच्चाई इस तरह बयान की जाए कि वो पढ़ने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़े। एक अच्छे अफसाने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसे आधे या एक घंटे में बैठकर मुकम्मल यानी एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। नॉवेल की तरह इसमें कई सालों की तवील कहानियां नहीं होती बल्कि ज़िंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा पेश किया जाता है। अफसाने के कुछ लाजमी अज्जा भी हैं, यानी कि किसी भी कहानी को बेहतरीन अफसाना बनाने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें अफसाने के अज्जा कहा जाता है। प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमा, ज़मानो मकान, नुक्ते उरूज, वहदते तासुर। उर्दू अदब में अफसाने की शुरुआत 20वीं सदी के आगाज में हुई। ये सिंफ मगरिब से मुतासिर होकर उर्दू में आई। इससे पहले उर्दू में दास्तानें लिखी जाती थीं जो कि बहुत लंबी होती थी, यानी कि जो बहुत तवील होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी मसरूफ होती गई, तवील दास्तानों की जगह नावल और फिर नावल की जगह मुख्तसर अफसाने ने ले ली। इब्तदाई दौर जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का दौर था, मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में गरीब किसानों, मजदूरों और देहाती ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश की है। तरक्की पसंद तहरीक का दौर, तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अफसाने को रवायती और रुमानी मौजूआत से निकाल कर आम इंसान की ज़िंदगी, गुर्बत, समाजी नाइंसाफी और हकीकत निगारी से जोड़ा। सादत हसन मंटो, तरक्की पसंद उर्दू अफसाने का एक अहम नाम है। जदीदियत का दौर जो कि 1960 के बाद का दौर था, उर्दू अफसाने ने अपने 100 साल से जायद के सफ़र में बहुत से रंग बदले हैं। ये देहात के किसानों की झोपड़ियों से निकलकर शहर के पढ़े लिखे इंसान के जहनी और नफसियाती मसाइल तक पहुंच चुका है। आज का उर्दू अफसाना दुनिया के किसी भी बड़े अदब के अफसाने के बराबर खड़ा है। ये हमारी ज़िंदगी, हमारे दुख सुख और हमारे माशरे का सच्चा आईना है।
1: क्या आप में से कोई अफसाना निगारी भी करती हैं?
3: मेरा नाम समीरा मलिक है, आज मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई एक कहानी पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है नूरजाद। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने

0: इसमें जितने भी सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होते हैं तो उसमें हम इस तरीके से हम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं कि वहाँ पे जो भी नया सिखाया जाए, जो भी हमें नया सीखने को मौका मिले, हम उसको सीखें और ताकि वो हमारे आगे आने वाले समय में भी काम आ सके और साथ ही साथ जो है हम उसको दूसरों तक भी पहुँचा सकें।
1: अब वक्त है कॉलेज के एक ऐसे रिश्ते की बात करने का जो तालिबे इल्म की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। हमने बात की खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा अंशु केडिया साहिबा से। आज की लड़कियों में आपको ऐसी कौन सी सलाहियत नजर आती है जो आपको मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद करती है?
2: आमतौर पे ये कहा जाता है कि पुरानी पीढ़ी अच्छी होती है, नई पीढ़ियां ये नहीं करती वो नहीं करती, ऐसा नहीं मानती वैसा नहीं मानती, लेकिन एक्चुअली में नई पीढ़ी को जब हम लोग देखते हैं उनमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं। वो ट्रेडिशनल काम भी देख रही हैं, वो इंटरनेट मल्टी चीजों के कारण वो एक नई दुनिया से भी जुड़ी हैं, तो उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो उसको सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हम लोग तो कॉलेज में भी बहुत प्रयास करते हैं कि क्लासेस के अलावा मल्टीपल कौशल विकास मिशन से जुड़े कोर्सेज चले। ब्यूटिशियन भी यहाँ सरकारी चलाते हैं, तो कंप्यूटर भी चलाते हैं, तो सिलाई भी चलाते हैं, रिटेल एसोसिएट का भी, तो मल्टीपल कोर्सेज भी चलते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 दिन का उड़ान महोत्सव हुआ राज्य स्तरीय, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत जोर शोर से भागीदारी दी।
1: अब हमने बात की यहाँ के उर्दू डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा से और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो अपनी तालिबात को मुस्तकबिल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी।
3: बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। मेरा ख्याल ये है कि लड़कियां जो हैं उनको हम चिड़ियां कह सकते हैं। चिड़ियां जब चहकती हैं, महकती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक बहुत खूबसूरत कथा है किसी शायर का, तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया। आप लोगों ने बया देखी होगी, हम सब ने देखी है सामाई ना, आपने भी देखी होगी। एक छोटी सी चिड़िया होती है जो बेहद खूबसूरत घोंसला बनाती है, और देखिए एक चिड़िया है पर उस घोंसले की बुनत देखिए आप जरा। तो ये अशआर पढ़िए और सुनिए बल्कि, और उसके बाद अंदाजा कीजिए कि किस तरह से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, खुसूसन हमारी लड़कियां। तो तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया, तड़प के हाथों ही वो घोंसला बनाती है, और प्यास इल्म की तामीर की तरक्की की, प्यास इल्म की तामीर की तरक्की की, प्यास कोई भी हो रास्ता दिखाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है और हमारी प्रिंसिपल मैम की भी, प्रोफेसर अंशु केडिया साहिबा की भी, कि ये जो हमारी तालिबे इल्म हैं ये अपने अंदर तड़प, मेहनत, लगन और जस्तजू का जज्बा पैदा करें और ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं।
1: उस्ताद सिर्फ किताबों का इल्म नहीं देता, वो शख्सियत को संवारता है, हौसलों को परवाज देता है, मुश्किल राहों में रहनुमाई करता है। उस्ताद का दिया हुआ इल्म शायद वक्त के साथ याद से धुंधला जाए, लेकिन उसका दिया हुआ हौसला उम्र भर इंसान के साथ चलता है। और अब कैंपस डायरी में थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए तो आइए चलते हैं रैपिड फायर की तरफ, जहाँ कुछ सवाल होंगे जिनके फटाफट जवाब होंगे। पसंदीदा सब्जेक्ट
4: उर्दू।
1: पसंदीदा शायर
4: गालिब।
1: लाइब्रेरी या कैंटीन?
4: लाइब्रेरी।
1: क्लास या फ्री पीरियड?
4: क्लास।
1: एक शख्सियत जिससे आप मिलना चाहेंगे?
4: द्रौपदी मुर्मू।
1: कॉलेज की एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा याद आएगी?
5: प्रिंसिपल मैम।
1: ये था हमारा रैपिड फायर सेगमेंट, इसी के साथ वक्त हो चला है अब इख्तिताम का। तो सामीन, खुनखुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इस खूबसूरत सफर में हमने महसूस किया कि कैंपस सिर्फ क्लासरूम और कॉरिडोर का नाम नहीं, ये उन ख्वाबों की जगह है जो आंखों में जन्म लेते हैं, ये उन आवाजों की जगह है जो अपनी पहचान तलाश रही हैं, ये उन कदमों की जगह है जो मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की हमारी तालिबात के पास इल्म भी है, ख्वाब भी हैं, और उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला भी। इसी उम्मीद के साथ कैंपस डायरी के आज के सफर को दीजिए इजाजत। आदाब।
6: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।
5: विज्ञापनों के माध्यम से
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: 4-2।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं कौशिकी राय। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये भजन।

कौशिकी राय के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।

0: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकेटरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य सेवाएं बहाल रहेंगी। ब्रिक्स व्यापार मंच का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिन के कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। एक बयान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद यह बयान आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मुख्य कारण सेवाएं और निर्यात में हुई वृद्धि है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 की जून की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कल हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत की 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की।
3: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। आज वॉइस ऑफ प्रयागराज में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 2 उभरती हुई खिलाड़ी, कयाकिंग और कैनोइंग में, जिन्होंने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और भविष्य में इनकी

0: योजना है कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की। तो आइए स्वागत करते हैं आंचल और भूमि का। आंचल, भूमि, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: आंचल, आप बताइए, आपको कायाकिंग और कैनोइंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इस खेल में जाने की?
2: सर, अभी हम बचपन से स्विमिंग करते थे, तो हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो इसकी वजह से स्विमिंग हमारा बंद हो गया था। तो फिर से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम स्विमिंग की, तो
0: यूनिवर्सिटी गेम्स की।
2: हाँ, तो फिर सर उसके बाद जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे देखा तो कुछ नाव चल रही थी, क्योंकि वो पहली बार देखा था, ऐसा कभी गेम सुना भी नहीं और पहली बार देखा था। तो फिर वो गेम देख के लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्विमिंग पूरे 12 महीने नहीं कर सकते, ठंड आ जाती है। फिर हाँ हुआ कि ये गेम करना है, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर गए, बगल में ही था जस्ट बोट क्लब प्रयागराज है कीड़गंज के पास, तो वहाँ पर गए हम। वहाँ कोच थे धवन सर, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे से आना, तो फिर हमने वहाँ पर ज्वाइन किया।
0: वहाँ से आपकी शुरुआत हुई।
2: जी सर।
0: तो जैसा कि आंचल ने बताया कि शुरुआत आप लोगों ने स्विमिंग से की थी, तो स्विमिंग कहाँ आप करती थी? भूमि, स्विमिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या शौक से करती थी या सीखने के लिए करती थी, तो कौन लेके गया आपको स्विमिंग के लिए?
3: मेरे फादर का नाम मिस्टर राजा बाबू सोनकर है। वो हमें शुरू से ही मतलब गेम में डालना चाहते थे, क्योंकि गेम में जितना हम लोग जाएंगे उतना ही खुल के रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को पहले टैकांडो सिखाया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। हम जब 5 साल के थे और ये 7 साल की थी, तब हमने टैकांडो किया था, तो फिर येल्लो बेल्ट करके हमने छोड़ दिया था। फिर 1 साल तक घर पे बैठे थे, कोई गेम नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे। फिर पापा मेरे रोज़ गंगा जी जाते हैं नहाते, तो उन्होंने देखा था कि हाँ वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि हम लोगों को कराते, तो एक दिन वो ले करके गए, बस दिखा करके आ गए। फिर उस दिन संडे था, उस दिन ऑफ था, हमें कुछ पता नहीं था। फिर अगले दिन हम खुद से गए, ये लगा था कि शौक के लिए कर रहे हैं। फिर स्कूल में गए तो पता चला कि हाँ एक कॉम्पिटिशन वगैरह होता है। फिर स्कूल स्टेट खेला, उसमें अच्छे रिजल्ट आए, मतलब पहली बार गए तो मेडल आए अच्छे खासे। फिर दूसरी बार 10th में गए, उसमें भी मेडल आए, लेकिन जब 11th में खेलने की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया, तो वहीं पे सब चीज रुक गई।
0: लॉकडाउन के बाद आप लोग
3: 2 साल एकदम रुक गया था,
0: 2 साल कुछ नहीं किया,
3: कुछ नहीं, घर पे ही थे,
0: पढ़ाई किया।
3: हाँ, फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा 12th कंप्लीट हुआ। 12th के बाद हम कॉलेज में एडमिशन भी लेना था, ये था कि स्विमिंग से अपना करेंगे आगे का, लेकिन स्विमिंग का ना यहाँ कोई फैसिलिटीज थी, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, स्विमिंग का कोई अच्छा कोच नहीं था, बहुत उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर बस हमने कायाकिंग कैनोइंग ज्वाइन किया।
0: अच्छा, भूमि, आप दोनों सगी बहने हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? क्या कोई परिवार में पहले से स्पोर्ट्स में था, या फिर आप लोग ही पहले शख्स हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं?
3: सर, अभी तक मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और जहाँ से सर हम बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे बस्ती है।
0: आपके पिताजी क्या करते हैं?
3: हमारे पापा अभी चाय की दुकान है।
0: आपके पिताजी की चाय की दुकान है, वो अशिक्षित हैं, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, ये प्लान किया और ये प्रेरणा दी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई भी, लेकिन खेलकूद में आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो श्रोताओं, अभी हो चला है वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो भूमि और आंचल, आप लोग कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
3: कभी कभी अगर हम ऐसा डाउन होता है तो हम लोग एक गाना सुनते, रुक जाना नहीं, वो गाना थोड़ा सा इमोशनली है, बट वो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करा
0: जाना नहीं तू कहीं हार के।
3: हाँ।
0: तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी आपको स्विमिंग के लिए ले गए गंगा जी में, जहाँ पे आपको किसी ने सिखाया और आपने उस समय शौक के लिए ही स्विमिंग सीखनी शुरू की, और कोविड के बाद आप लोग क्योकिंग और कैनोइंग में आए। तो वहाँ पे आपके कोच कौन थे, कैसे आप लोगों ने सीखना शुरू किया और शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई आप लोगों को?
1: पहले तो हम स्विमिंग में स्कूल स्टेट खेले थे तो इतना कुछ जानते नहीं थे। कैकिंग कैनोइंग में जब आए तो वो हर चीज एकदम नया था। मतलब वो ऐसा गेम था कि आज तक न देखा था और न ही तो सुना था। पहली बार देखा भी था, पहली बार सुना भी था। बस वो भी लग रहा था कि ऐसे शौक से होगा, ठंडी में छुट्टी होगी, लेकिन ये गेम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ असल में अब हम गेम में आए हैं। वो तो स्कूल स्टेट था इसलिए उतना कुछ लगा नहीं। फिर इधर जब आए तब गेम का अहमियत पता चली कि गेम क्या होता है। एक खिलाड़ी हम अगर बने तो कैकिंग कैनोइंग से बने, एक एथलीट हम अपने गेम से ही बने। बस स्विमिंग एक जरिया था हम लोगों को इस गेम तक पहुंचाने के लिए।
0: स्विमिंग माध्यम था जो आपको लेके गया कैकिंग और कैनोइंग में। तो आंचल ये बताइए कि जब आप लोगों ने कैकिंग और कैनोइंग शुरू की तो उसमें K1 होता है जिसमें एक ही प्लेयर पैडल करता है, और K2 होता है जिसमें दो होते हैं। तो आप लोग क्या शुरुआत में ही साथ में ही किया करते थे, K2 ही किया करते थे, कि शुरुआत में K1 और उसके बाद में फिर आपने टीम बनाई दो लोग मिलके K2?
2: नहीं सर, हम जब ये गेम ज्वाइन किए थे तो इसमें बोट में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: तो वो अकेले करते थे?
2: हाँ, तो कोई भी बच्चा होगा वो उस गेम में जो जो भी जाएगा तो उसमें उसको अकेले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उसकी बोट बैलेंस हो जाएगी, बोट चलने लगेगी, तब वो डबल और फोर पे बैठ के पैडल चलाता है।
0: तो आप लोग K1 में भी करती हैं, K2 में भी करती हैं। तो पहली ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें जाके आप लोगों ने कोई मेडल जीता हो या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को लगा हो कि नहीं हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं?
1: हम लोग ने अगस्त 2022 में गेम ज्वाइन किया था तो, और फिर नया नया गेम था उस समय, एक खिलाड़ी की तरह शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं थी तो बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर दिसंबर 2022 में हमने अपना पहला नेशनल खेला था जो कि भोपाल में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हम 5 लड़कियां थी तो मैं अकेले गई थी, K1 से खेला था हमने और इन्होंने K4 से खेला था। उस समय खेलो इंडिया हुआ था तो हम गए थे K1 से खेलने, मेरी 200 मीटर की रेस थी तो उसमें पलट गए थे। तो पलटने के बाद उसमें काफ़ी लोगों ने ऐसा कमेंट पास किया तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया कि हम उस समय मेरी बोट इन चारों से थोड़ी सी सही चल रही थी लेकिन फिर भी हम पलट गए थे। तो उस चीज़ को लगा कि ये चीज़ गलत है तो अब गेम पे ध्यान देंगे।
0: वहाँ से आपको जो सीखने को मिला, सबक मिला, उसके बाद आपने मेहनत और ज़्यादा करनी शुरू की और इसको ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो आंचल आपको कब लगा कि भूमि तो अच्छा कर रही हैं, भूमि तो अब ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा गंभीरता से ले रही हैं, तो क्या आपने भी तभी से गंभीरता से लिया या आपने उस समय शौक से ही लिया?
2: सर उस टाइम तो हमारी वो जब खेलो इंडिया हुआ था तो उस टाइम हमारा बैलेंस था, हम ढंग से पैडल भी नहीं मार पाते थे। तो फिर उसके बाद खेलो इंडिया खेल के आए, यूपी को फाइनल में पहुंचाया था, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट किया फाइनल में यूपी को। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, उसमें फिर गोल्ड आने चालू हुए। मेरा बैलेंस बहुत लेट से बना था बोर्ड पर, उसमें सबसे मुश्किल वर्क होता है बैलेंस बनाना।
0: जैसा कि भूमि ने बताया कि वो उस प्रतियोगिता में अच्छा तो खेल नहीं थी लेकिन अचानक से उनकी बोट पलट गई, यानी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया। तो आप लोग बहनें जब साथ में करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ K2 में, जब K2 में आप लोग साथ में पेडल करती हैं तो क्या आपस में थोड़ा सा लड़ाई होती है कि तुम ठीक से नहीं चला रही हो, तुम ठीक से नहीं चला रही हो?
1: हाँ सर, होती है बहुत हद तक। सर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि जो अपना K2 पार्टनर होता है या भी कोई भी अगर अपना पार्टनर होता है तो हम लोगों का माइंडसेट एक होना चाहिए, एकदम एक, कि अगर एक आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वालों को बिना बताए पता चल जाए, इतना ज्यादा माइंडसेट एक होना चाहिए। तो एक बार की तो ये चीज हुई नहीं सर। फिर हम K1 करते थे सर, K2 बस हमने ऐसे चलाना शुरू किया लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम साथ में K2 चलाएंगे,

0: बस ऐसे उतारा एक दिन केटू, वो सही चलने लगी, सही चलते चलते कंपटीशन करते करते एक एक्सपीरियंस मिलने लगा, और सर हमारा 3 साल के बाद मेडल पढ़ना शुरू हुआ था।
1: पहला मेडल कब मिला आपको?
0: दिसंबर 2025 में
1: कौन सी
0: नेशनल
1: प्रतियोगिता
0: में
1: में?
0: आया था, खेलो इंडिया में।
1: खेलो इंडिया में, उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला
0: जी
1: 200
0: सर,
1: मीटर्स में।
0: जी सर।
1: तो जैसा कि आपने बताया, केटू में सबसे जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बना के रखना, क्योंकि घर में भी आप लोग साथ रहते हैं तो घर में भी एक समन्वय बना के रखना पड़ता है, और खेल में भी आप लोग साथ हैं तो इससे आपको एक सहयोग मिल जाता होगा, एक एडवांटेज मिल जाता होगा साथ में खेलने का, क्योंकि कोई और खिलाड़ी बाहर से आता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता, तो आप समन्वय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आप लोग साथ रहती हैं। अब वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का, तो दोनों बहनें अब कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? आंचल आप बताइए।
0: दंगल मूवी का दंगल दंगल करके है।
1: ठीक है, आइए श्रोताओं सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।
2: माँ के

0: दंगल फिल्म के इस प्यारे से गीत के बाद अब मैं भूमि आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि क्योकिंग और कैनोइंग, ये इस खेल के बारे में लोग कम जानते हैं और इस खेल में जो प्रशिक्षण के अवसर भी हैं प्रयागराज में कम है, बहुत कम खिलाड़ी होंगे, गिनती के खिलाड़ी होंगे जो आप लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो यहाँ कहाँ पे सीखती हैं, आपके कोच कौन है और कितनी सुविधाएं हैं, कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पे?
1: यहाँ पे हमारा बोट क्लब है प्रयागराज, जो ये केड़िया चौखंडी पे अपना सर, वहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया था। हमारे बोट में क्या होती है, जो यहाँ पे बोटे हैं वो कार्गो है,
0: कार्गो,
1: और जिससे हमारा कंपटीशन होता है वो नैलो है। और सर हमारा गेम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, हमारी केवल पैडल ही 50 से 60 हज़ार की आती है, और बोट तो और ही ज़्यादा आती है, नैलो अपनी आती है लैक्स 2 लैक्स में। तो सर अपने पास नहीं है वो। सर हम 3 साल से यहाँ पे इसीलिए पीछे थे क्योंकि सर अपन यहाँ पे कार्गो चलाते थे, और वहाँ जाके नैलो एक बार की इतनी अच्छी नहीं चलती जितना अपना कार्गो चल जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते थे। और सर यहाँ पे पैडल भी है लेकिन कम है, बच्चे अगर 50 है तो पैडल 10 है। तो सर अपने पास फैसिलिटीज़ भी कम थी, बस बच्चे मेहनत करते थे, मेहनत से भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते थे क्योंकि अपने गेम में डाइट भी बहुत ज़्यादा रहता था, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी।

0: का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे घर पे रह के गेम करते हैं सर, वो उतना अच्छा डाइट तो ले सकते हैं सर, लेकिन जहाँ तक रिकवरी नहीं ले सकते सर, इसलिए गेम में थोड़ा सा अपने को रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सर फैसिलिटीज़ भी चाहिए।
1: तो आप लोगों को अभी डाइट रिकवरी या फिर जो प्रशिक्षण है वो कहाँ आप कर रही हैं अभी फिलहाल? भोपाल
0: सर अभी तो हम भोपाल में कर रहे हैं, हमको 1 साल हो गया।
1: में कहाँ?
0: भोपाल में जहांगीराबाद है अपना छोटा तालाब, वो मुख्यमंत्री आवास से पहले है, 1 किलोमीटर पहले, तो वहाँ पे छोटा तालाब है। और सर भोपाल में ये हमारे कैकिंग कैनोइंग का एक तरीके से हब है,
1: अच्छा,
0: वहाँ के ऑल इंडिया के प्लेयर जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते अच्छा, वो हमारे क्लब पे आते हैं, मतलब भोपाल पे आके प्रैक्टिस करते हैं।
1: तो अभी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल रही
0: जी
1: हैं,
0: सर।
1: और जैसे आपने बताया कि यहाँ पैडल्स कम थे, आपको कार्गो बोट्स मिलती थी, वहाँ पे अलग बोट्स होती थी,
0: नैलो बोट।
1: नैलो बोट्स, तो वहाँ पे वो बोट्स मिल रही हैं,
0: हाँ जी सर।
1: वहाँ पे आपको कोचेस भी अच्छे मिल रहे होंगे,
0: हाँ
1: सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होंगे। अच्छा,
0: वहाँ पे एक खुद का एसोसिएशन है।
1: ये एसोसिएशन है तो आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन की होंगी तो वो आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो आंचल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप पहली बार भोपाल में गई होंगी, आप लोग यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और ज़्यादा मेडल्स अचीव कर सकती हूँ?
0: सर एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जहाँ पे अभी प्रयागराज में गेम करते हैं सर, केवल हम ही बच्चे हैं सर, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो 50, लेकिन जहाँ सर हम भोपाल में आज प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सर कम से कम 500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कुछ जॉब वाली टीम है, जैसे कि सर्विसेस है, SSB है, CRPF है, BSF है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं, और भोपाल में इंटरनेशनल कोचेस भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं।
1: वहाँ आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं और कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलेंगे तो आपके खेल में और निखार आएगा। तो इस मौके पर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे भूमि?
0: सर एक गाना है दिल ये जिद्दी है, क्योंकि सर एक खिलाड़ी का जिद्दी होना बहुत जरूरी है, तो दिल ये जिद्दी है वो सुनना चाहते हैं।

0: इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आंचल और भूमि, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा आपके पिताजी से मिली। पिताजी ने आपको सबसे पहले स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एडमिशन कराया, आप लोग सीखने लगे गंगा जी के तट पे, वहां पे तैराकी में। उसके बाद आप लोग क्याकिंग और कैनोइंग में थे, तो और कहां से आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिला इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए?
1: सर, हमारे पिताजी के बाद तो हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने ही सब चीज़ किया। क्योंकि सर, अभी मैंने बताया कि हमारा गेम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और सर हम इतने कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, तो अभिषेक सर ने ही पूरा पूरा साथ दिया था। और सर, पेरेंट्स ने तो बस एक परमिशन दी है, बाकी पूरा गेम का हर चीज़ अभिषेक सर देख रहे हैं।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आंचल और भूमि, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, हम यही चाहते हैं कि आप न सिर्फ प्रयागराज उत्तर प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाएं और देश का नाम रोशन करें। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकमाधुरी कार्यक्रम। लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वंदना सरोज और साथी के ओमकार नाथ कमलेश्वर सिंह गहमरी के गाए लोकगीत। सबसे पहले सुनिए वंदना सरोज और साथी के गाए लोकगीत। इनके स्वर में सुनिए लाचारी।

लोकमात्री कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वंदना सरोज और साथी के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए ओमकार नाथ के स्वर में ये देवी गीत।

लोकमात्री कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ओमकार नाथ के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए कमलेश्वर सिंह गहमरी के गाए लोकगीत। सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में गंगा गीत।

मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ। आज महफिल सजी है मुस्कानों की, अदाओं की मलिका के अफसानों की, जिसकी एक मुस्कान पर दिल धड़क उठे, जिसके ठुमकों से पर्दे भी झूम उठे, जिसे दुनिया जानती है माधुरी दीक्षित के नाम से।

80 के दशक में आई वो बनकर एक नई रोशनी, चेहरे पर वही मासूमियत, आंखों में थी चांदनी। शुरुआत हुई फिल्मों से मगर पहचान अभी बाकी थी, किस्मत की किताब में एक सुनहरी पंक्ति लिखनी बाकी थी।

फिर आई फिल्म तेजाब और एक दो तीन का ऐसा जादू छाया, हर दिल में बस माधुरी को अपना सपना बताया।

0: जेसिका इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?
0: ऐसे।
2: एक नाम था मोहिनी, मगर असर तूफान जैसा। एक दो तीन पर थिर का जमाना, हर अरमान जैसा। माधुरी ने नृत्य को सिर्फ अंदाज नहीं, पहचान भी दिया और बॉलीवुड को एक ऐसा सितारा दिया जो कभी फीका नहीं पड़ा।

मासूमियत की तस्वीर, मोहब्बत की कहानी, मधु बनकर माधुरी ने जीत ली हर जवानी। प्यार में तकरार और तकरार में प्यार का सिलसिला, हर किरदार ने माधुरी को बना दिया दिलों का काफिला।

ममता भी, संघर्ष भी और हौसलों की उड़ान भी। सरोज के किरदार में थी एक नारी की पहचान भी। माधुरी दीक्षित ने बेटा फिल्म में बता दिया अपनी अदाकारी के जोर पर कि औरत सिर्फ किरदार नहीं, पूरी कहानी होती है।

एक ही कलाकार कार्यक्रम आज जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर केंद्रित है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने होस्ट और दोस्त उज्ज्वल सिन्हा के साथ।

आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है या हमारे अन्य कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए, अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250, यानी 8004926250।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज बातें चल रही हैं जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की। एक फिल्म आई थी माधुरी दीक्षित अभिनीत खलनायक, और उसमें निभाया गया माधुरी दीक्षित का किरदार था गंगा का। गंगा की आंखों में मोहब्बत, दिल में इंतजार था, जिसे चाहा उसी के लिए हर पल बेकरार था। सादगी में भी दर्द का ऐसा रंग भर दिया कि गंगा को माधुरी ने यादगार कर दिया।

प्यार क्या है शायद पूजा से बेहतर कौन बताए, जो दिल में हो उसे आंखों से कैसे छुपाए। नृत्य मोहब्बत और इंतजार का खूबसूरत संगम, माधुरी ने पूजा में भर दिया जज्बातों का हर रंग।

मोहिनी हो, गंगा हो या फिर चंद्रमुखी का दर्द, हर किरदार में माधुरी दीक्षित ने छोड़ा अपना एक अलग ही रंग। वो सिर्फ किरदार निभाती नहीं थी, उन्हें जीती भी थी, इसीलिए उनके किरदार आज भी यादों में सांस लेते हैं।

आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए जिन फिल्मों के गीत हमने आपको सुनवाए उनके नाम हैं। पहला गीत हमने लिया था उदित नारायण

0: आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए जिन फिल्मों के गीत हमने आपको सुनवाए उनके नाम हैं। पहला गीत हमने लिया था उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में राजा फिल्म से। कार्यक्रम का दूसरा गाना तेजाब फिल्म से, जिसे गाया अलका याग्निक और सखियों ने। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आपने सुना था दिल फिल्म का गाना।
1: दिल तो पागल है।
0: उसके बाद हमने आपको सुनवाया था पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में बेटा फिल्म का युगल गीत। फिर आपने एंजॉय किया पुकार फिल्म का गाना शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में। उसके बाद खलनायक फिल्म का गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में था। और बैकग्राउंड में ये जो गाना चल रहा है, इसे हमने लिया है दिल तो पागल है फिल्म से, आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की। अब आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाजत दीजिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे नंबर 8004926250 पर। यानी 8004926250।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। आज का दिन है खास, खास क्योंकि आज बात होगी उस भाषा की जिसमें हम सपने देखते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, प्यार जताते हैं, गुस्सा करते हैं और कभी कभी तो बिना वजह भी बोलते चले जाते हैं। बात हो रही है हिंदी भाषा की, क्योंकि चल रहा है हिंदी पखवाड़ा। सवाल ये है कि क्या हिंदी सिर्फ एक विषय है या फिर सिर्फ किताबों में और परीक्षाओं तक सीमित रह गई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस भाषा में हम एक दूसरे से बात करते हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान कैसे हो सकता है। तो आइए इस विषय पर और बात करेंगे, लेकिन एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं।

तो दोस्तों बात हो रही थी कि हिंदी दिवस की, क्योंकि हिंदी दिवस आने वाला है 14 सितंबर को और अभी चल रहा है हिंदी पखवाड़ा। तो दोस्तों हिंदी भाषा ना सिर्फ भाषा नहीं है, ये एक एहसास है। हिंदी सिर्फ किताबों में

रखे हुए शब्दों का नाम नहीं है, हिंदी में एक गहराई है जो हमारे कवियों ने सदियों पहले ही समझ ली थी। संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा न कोई। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन कितनी बड़ी सीख छिपी है इसमें। दोस्तों, आज हम जब दूसरों को इतना इंस्टेंटली जज कर लेते हैं, कुछ सेकेंड्स ही नहीं लगाते हैं और किसी के एक्शन से एक पूरी स्टोरी फॉर्म कर लेते हैं, हमें लगता है कि उसका जो ओपिनियन है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है, सब गलत है और सिर्फ हमारा जो ओपिनियन है वो सही है। और इसी जहाँ पे ये दौर है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, वहीं शायद दौर है इंस्टेंट जजमेंट्स का भी। तो कई बार ऐसे जजमेंट्स को ना थोड़ा साइड में रख के, थोड़ा दूर रख के, जो कबीर कहते हैं कि दूसरों में कमी ढूंढने से पहले एक बार खुद को ज़रा समझिए, खुद के अंदर झांक कर देखिए और शायद तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके ओपिनियंस हैं, जो आपका मानना है वो कितना सही है। और सामने वाला हर बार गलत नहीं होता, लेकिन हमारा जो नज़रिया होता है ना, कहते हैं ना कि हम जिस लेंस से सामने वाले को देख रहे होते हैं वहीं सबसे बड़ा एक सीख छुपी होती है और शायद वही सबसे बड़ा बदलाव भी शुरू होता है।

और हिंदी की दुनिया से एक और खूबसूरत सा दोहा। रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कितना खूबसूरत संदेश है ना दोस्तों। आज छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारी और हम तुरंत लोगों को ब्लॉक कर देते हैं या फिर एक छोटे से आर्ग्यूमेंट पर ही अनफॉलो कर देते हैं। रिश्ते संभालने पड़ते हैं, कभी सॉरी से तो कभी किसी को फ़ोन कॉल करके उनका हालचाल पूछ लेने से, और कभी तो बस उनसे ये कह देने से कि वो कितने प्रिय हैं हमारे लिए और कितने इम्पॉर्टेंट हैं। बस इतना ही सा तो करना है। और वो जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे साथ रहते हैं और उनमें अपनापन हमेशा बरकरार रहता है।

दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी के सामने मुश्किलें आती हैं। किसी को एग्ज़ाम की टेंशन, किसी को करियर की और किसी को नौकरी की या रिलेशनशिप की। कभी कभी लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए और ऐसे समय में रहीवन का ये दोहा ज़रूर याद रखना चाहिए। रहीवन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो दोस्तों, जो मुश्किलें हैं ना जीवन की, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ज़रूर जाती हैं। तो उनसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।

अभी युवजन सुन रहे थे अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। 12 बज रहे हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

0: राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवू ओजुफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective.

महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:31 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर सुनिए कमला बोस का गायन। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 से। एक और फोन इन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे हेलो गृहलक्ष्मी 1:15 से। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 2:30 से सुना जा सकता है। नन्हे मुन्ने सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया शाम 5:00। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुने 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे राम सुमेर यादव और साथियों के गाए लोकगीत और रमेश कुमार शुक्ल की वार्ता का विषय होगा पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से गुमशुदा व्यक्ति की सूचना। जीतलाल निवासी ग्राम व पोस्ट बिसौना, ब्लॉक भगवतपुर, थाना एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश, सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री दिनांक 4 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे घर से करेली गई थी और वापस नहीं आई। उसका विवरण इस प्रकार है। रंग गोरा, लंबाई 4 फुट 6 इंच, जिसने नीले रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। यदि किसी व्यक्ति को इसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। 8957873640 और 7521086741। सूचना समाप्त हुई।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग धानी में गाया ख्याल, कलाकार कमला बोस।

0: राजधानी में गाया ख्याल अभी आपने सुना। कलाकार थी कमला बोस। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है आपके फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश कर रही हैं मधु कुमार।
1: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
2: नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हवलिया झूठी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बात कर रहा हूँ।
1: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल
1: जी।
2: गाने का बोल है परदेसी या सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझे दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले।
1: जी, अमिताभ बच्चन और रेखा के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है।
2: हाँ मैडम, बहुत बढ़िया गाना था।
1: चलिए, तो आपने जिस गीत की फरमाइश की उसे सुनाए आपको।
2: हाँ मैडम सुनाइए। नमस्ते,
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव भक्ति कमाओ देवा जिला प्रकाश से।
0: जी जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
1: मैम? फिल्म का नाम है एक फूल दो माली
0: जी,
1: और गाने की बोल है मेरा नाम करेगा रोशन जग में सारा।
0: मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत है, रोशनी जी की पसंद है। तो रोशनी जी किसी का नाम लेना है आपने, ले लीजिए।
1: जी मैम, मैं भी शांति दीदी हैं, लैला मोहन
0: अच्छा।
1: सुनील दीदी हैं, उनकी दो बेटी हैं आशीष सागर आबिद सागर, और पूरे बेटियों हैं प्रीति दीदी शेखर दीदी, और मैम प्रीति दीदी को ही उनका लड़का हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, इसीलिए ये गीत सुनवाना चाह रहे
1: हैं। हम ये गाना सुनना चाहते हैं।
0: ओके जी, चलिए तो फिर आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं रोशनी जी, और फिल्म का नाम है एक फूल दो माली। आइए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम नितीश आर्या है
0: जी। नितीश जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है इजाजत और गाने बोले मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
0: आशा जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है जिसे गुलजार साहब ने लिखा है।
1: इस फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं,
0: फिल्म भी बहुत अच्छी थी और गाने भी बहुत अच्छे हैं। और जिसकी एक गाने की फरमाइश आ गई है नितीश जी ने की है, तो नितीश जी आपको गाना सुनवाएं
1: जी।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का इजाजत फिल्म का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव पूरा हंडिया प्रयागराज से बोल
0: जी, हंडिया से रेखा जी हमारे साथ हैं कॉल पर। तो रेखा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: क्रांति फिल्म का मन चना जोर गरम बाबू मलाया मुझे।
0: चना जोर गरम, तो ये बहुत बढ़िया गाना आपने चुना है। और चने के सेवन से सेहत खूब बढ़िया बनती है।
1: बारिश में भी चना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, बरसात हो रही और लाई चना सामने हो तो कितना अच्छा लगता है। उस समय खूब सोनी सोनी खुशबू आती है। तो भाई, आप चने का सेवन कर रही हैं कि नहीं?
1: क्या मैं
0: चने खाती हैं कि नहीं खाती हैं?
1: हाँ हाँ मैं रोज सुबह शाम को खाते हैं, रोज बच्चों को हम भी खाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और रेखा जी ने गाना भी यही चुना है, क्रांति फिल्म का ये गीत है, आइए सुनते हैं।

0: यथा फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मधु कुमार ने।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे, महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल शाम 7:31 से।

0: सड़क पर चलते समय सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य धारण करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, 1 बजने वाले हैं समाचारों की, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने

0: ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity,
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: है।
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: Take to the world as a trusted partner.
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jaishankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
1: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
4: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in his address called upon BRICS nations to work together to translate their economic strength.

0: 18वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। दो रोजा सरबराही इजलास की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ब्रिक्स में 11 बड़े तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात। इस साल ब्रिक्स सरबराही इजलास का थीम लचक, इख्तरा, तावुन और पायदारी की तामीर है। सरबराही इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और ईरानी सदर मसूद पेजिशकियन शिरकत करेंगे। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, इथोपिया के वजीर आजम बी अबी अहमद अली और सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश की दारुलहुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकाम को बचाव और राहती काम करने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा बारिश से होने वाले जानी नुकसान, मवेशियों और माशी नुकसान का नोटिस लिया। उन्होंने तमाम सीनियर अफसरान को फील्ड में जाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि अफसरान मुतासिरा खानदानों से राबता करें और हर मुमकिन मदद फराहम करें। शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी, मवेशी और मुआशी नुकसान का अंदाजा लगाएं और 24 घंटे के अंदर मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएं। पानी जमा होने से लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इस सिलसिले में किसी भी सतह पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने रियासत के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि खराब मौसम के दौरान आसमानी बिजली गिरने का इम्कान होता है, इसलिए इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। शदीद बारिशों के दौरान दरियाओं और आबी ज़खायर में नहाते हुए खास एहतियात करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलसल खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का आगाज करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर खजाना पंकज चौधरी की मौजूदगी में इंतखाबी मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक

0: कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: सेवा संकल्प अभियान के ताल्लुक से वजीर आला ने कल रियासत के तमाम अराकीन असेंबली, एमएलएज, मेयर्स, जिला पंचायत मुंतजमीन, नगर पंचायत और ब्लॉक सतह के अवामी नुमाइंदों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की।
2: मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी से इस अभियान में गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को जोड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर की शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में लाभार्थी परिवारों के साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं से बने प्रमुख भवनों और विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रभार वाले में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करें। समाचार कक्ष से रितेश।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के दोबारा इम्तिहानात के लिए इब्तदाई जवाबी कलीदें जारी कर दी हैं। उम्मीदवार 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की सरकारी वेबसाइट पर जवाब की कुंजियों पर एतराजात उठा सकते हैं। अंग्रेजी और कॉमर्स के इम्तिहानात 9 सितंबर को मुनक़िद हुए थे, जबकि सोशियोलॉजी का इम्तिहान कल मुनक़िद हुआ था। असतजा के लिए खसूसी टेट 3 नवंबर को मुनक़िद होगा। बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने खसूसी टीटी के इनाकात के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं। इस इम्तिहान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त का अमल 5 सितंबर को शुरू हुआ था। ऑनलाइन दरख्वास्त की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है, जबकि दरख्वास्त में तरमीम करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2026 है। जिन असतजा ने पहले टेट या सी टेट पास किया है, उन्हें खसूसी टेट पास करने की जरूरत नहीं है। रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के 26 जिला सैलाब की जद में है। इंतजामिया सैलाब से मुतासर इलाकों की मुसलसल निगरानी कर रही है और राहत और बचाव काम कर रही है। रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक कल 8,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियासना रियासत के कई दरिया अब भी बह रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में रियासत के कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो गृहलक्ष्मी।

0: पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बारिश की बूंदें उस मीठे सपने से होती हैं जो भले ही कुछ देर का हो पर होता बहुत प्यारा है। और कोई रंग नहीं होता बारिश में, फिर भी फिजा को रंगीन तो बना देता है।
1: क्या बात है, सुहाना मौसम मन में खुशियां और उमंग भर देता है, क्यों? तो भाई, हमारे श्रोता साथियों की तरह ही कुछ इसकी भी फितरत है, उनकी मुस्कुराहट भी मौसम को एक को और खुशगवार कर देती है। तो एक शायरी मेरी ओर से भी नजर है। जब तुम यूं मुस्कुराते हुए आते हो, जब तुम यूं मुस्कुराते हुए आते हो तो संग मौसम बहार का लाते हो। और अपने श्रोता साथियों का स्वागत करने आए हैं आज के हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में मैं कंचन
0: और मैं ऋतिका।
1: तो भाई, इस शायरी के बाद आपका क्या कहना है ऋतिका जी?
0: भाई, इस मौसम और माहौल को देखते हुए और भी खुशगवार बनाते हुए आज की दो फिल्मों के मीठे गीतों के साथ हम अपने श्रोताओं के सामने आए हुए हैं। आज की जो दो फिल्में हैं वो हम लाए हैं 1998 में प्रदर्शित हुई करीब और 1999 में प्रदर्शित हुई हम दिल दे चुके सनम।
1: बिल्कुल, और मीठे

0: गीतों के साथ होंगी ढेर सारी बातें भी। तो अपनी फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0532242364 पर, और हमारा एक और नंबर है 0532297046 पर।
1: अब जो फरमाइश की बात है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश या अपनी पसंद का गीत जो आप इन दो फिल्मों से सुनना चाहते हैं 8004926250 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं।
0: और देखिए हम कह तो रहे हैं इधर व्हाट्सएप पे दो तीन मैसेजेस दिखने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले क्यों ना अपने साथियों से बात कर लें। ये दोनों ही फिल्में अपने टाइम की बहुत ही बेहतरीन पिक्चरें रहीं और इनका एक जबरदस्त क्रेज रहा
1: जी, और इनका संगीत मतलब मैं बात करूं तो लाजवाब रहा, और हर प्रकार के गाने और इतना खूबसूरत संगीत कि सुनते ही बनता था। तो अगर हम ये बात करें फिल्म करीब की, तो वो 1998 में प्रदर्शित हुई और हम दिल दे चुके सनम 1998 में संजय लीला भंसाली द्वारा, 1999 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित हुई। और आज हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं।
0: हेलो,
2: हंडिया तहसील हंडिया थाना हंडिया गांव उगरा जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ कंचन मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपने पहचान लिया?
2: बिल्कुल आपकी आवाज़ से मैंने पहचान लिया।
0: क्या बात है, और बताइए तो आजकल चल क्या रहा है? मौसम तो बहुत खुशगवार भी है, बारिश भी हो रही है, फिर कभी धूप हो जा रही है, तो क्या चल रहा है आजकल आपकी तरफ? कुछ
2: ऐसा ही मौसम है, कभी धूप तो कभी बारिश, कभी हवा चल रही है
0: जी। और खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है?
2: खेती बाड़ी ठीक है मैम, धान बड़े हो रहे हैं।
0: हाँ हाँ, अब तो खैर समय हो रहा है। और आपका गीत संगीत कैसा चल रहा है?
2: बिल्कुल अच्छा चल रहा है।
0: तो देखिए आज इसीलिए हम लोग बहुत ही दो खूबसूरत म्यूजिकल फिल्में लेकर आए हैं जो अपने समय की हिट म्यूजिकल फिल्म्स हैं, करीब और हम दिल दे चुके सनम। तो इनमें से आप कोई फिल्म का, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे प्रेमचंद जी?
2: मैम हम दिल दे चुके सनम फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ श्रोताओं का नाम ले लें।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: विकास जी हैं दादनपुर प्रयागराज से जो एक ट्रक ड्राइवर है, नीतीश आर्या जी हैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, और राजेंद्र कुमार गुट्टी कुंडा प्रतापगढ़ से, कुकुड़ा हंडिया प्रयागराज से रेखा यादव, और उनके पति हैं महेंद्र यादव मुन्ना।
0: अरे वाह, इन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन सबकी पसंद और आपकी पसंद का ये गीत चलिए सुनते हैं बिना वक्त जाया।

0: 17 जुलाई 1998 को ये रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं अगर इसमें काम कर रहे कलाकारों की, तो बॉबी देओल और शबाना रजा, जिन्हें की हम नेहा के नाम से भी जानते हैं,
1: और ये इनकी एक तरह से डेब्यू फिल्म थी। और मैंने ये भी जानकारी हासिल की रितिका जी की, इनको बड़ा छुपा के रखा था विदु विनोद जी ने कि हमारी ये हीरोइन सीक्रेट रहनी चाहिए, जाहिर नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और आप देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी एकदम मासूमियत से भरा चेहरा, और काम भी उन्होंने उतनी ही खूबसूरती से एक अभिनेत्री के तौर पर फिल्म में किया। और जब बात करते हैं कि फिल्म के संगीत की, तो इसे अनु मलिक द्वारा दिया गया था, और गीत जो है वो इसके राहत इंदौरी साहब ने लिखे थे, जो कि बहुत बड़े अपने आप में लेखक शायर रहे हैं।
1: और आपको ये पता है कि बॉबी देओल को इसमें कास्ट क्यों किया गया?
0: भाई ये तो आप बताएंगे हमें।
1: इसका राज ये है कि विधु विनोद जी ने जब उनको जब सेलेक्ट कर रहे थे हीरो, तो उन्होंने देखा कि बॉबी देओल का चेहरा कुछ कुछ उस समय का है जब वो युवावस्था में लगते थे वैसे।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने अच्छा देखिए फिर से हमें इशारा मिल रहा है कि हमसे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: रेखा यादव को कहा है, प्रयागराज से बोल रही
0: हूं। रेखा यादव जी, कैसी हैं रेखा जी आप? हेलो
1: हेलो,
2: हाँ मैम।
0: हाँ रेखा जी, कैसी
1: आपको हमारी आवाज मिल रही है?
2: हाँ मैम आ रही, पसीलो आ रही।
0: अच्छा, तो कैसी हैं आप रेखा जी?
2: हम अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? दोनों मैम कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हैं हम लोग। आपको तो पता ही होगा, तो पहले तो आप हमें बता दीजिए कि आज कौन से फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप, करीब और हम दिल दे चुके सनम में से?
2: जो मैम पहले फिल्म का नाम दी उस फिल्म का।
0: करीब से, ठीक है। तो अब ये बताइए रेखा जी, क्या करती हैं आप?
2: हाँ मैम हाउस वाइफ।
0: अच्छा,
1: एक और चीज है इनकी खूबी, ये बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाती हैं।
0: अच्छा, तो कंचन जी से आपका परिचय पहले से है, यानी कि आप हमारी नियमित श्रोता हैं।
2: यस मैम।
0: अच्छा,
2: आपसे बात करने से ना दिल बहुत हल्का होता है, जैसे दवा खा ली है कोई रोग नहीं।
0: अरे वाह, ये तो चलिए हम लोग की खुशी। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, और हम इस प्रकार की जब आपसे बात करते हैं तो हमें खुशी, हमें भी बहुत मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो रेखा जी, और अभी आज आप व्यस्त है, ये फिल्में आपने देखी भी है?
2: नहीं मैम
1: देखी नहीं। आप दोनों में से कोई फिल्में नहीं देखी?
2: नहीं, हम दिल चुके सना में देखे हैं बहुत।
1: अच्छा,
2: जब पहले देखे हैं।
1: हाँ,
0: तो गीत संगीत का आपको रुचि है, आपको पसंद है, संगीत सुनती है?

0: हाँ
1: हाँ
0: अच्छा, और हमारी नियमित श्रोता हैं ये, तो आपकी बातें और कंचन जी से भी हमें पता चला। और हमारे कौन से कार्यक्रम आप और सुनती हैं?
1: यस मैम,
0: अच्छा
1: हमारे नाना नानी हैं,
0: जी,
1: और हमारी नानी गृह वो था पनघर, सुनती हैं वो
0: अच्छा पनघट सुनती हैं, चलिए
1: लोगों को डांटती
0: बहुत बढ़िया
1: हैं।
0: बात
1: और
0: है
1: हमारे
0: कि
1: नाना है ना, जो पंचायत घर आता है वो सुनते
0: वाह,
1: हैं।
0: तब तो
1: तो पूरा
0: हमारे
1: परिवार
0: हमारे
1: ही आकाशवाणी
0: हाँ
1: परिवार से जुड़ा
0: हमारे
1: हुआ है।
0: सभी कार्यक्रमों के श्रोता आपके घर में मौजूद हैं, और
1: और
0: इस
1: हमारे
0: बात
1: नाना 95 के पार है मैम।
0: ओ
1: अरे
0: हो,
1: वाह,
0: और उसके बाद भी
1: हाँ
0: इतनी रुचि से हमारे कार्यक्रम आपके नाना आपकी नानी और आप सभी सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत
1: पर
0: बहुत धन्यवाद। और इसी तरह
1: दिखने में लगते नहीं है कि इन दोनों का उम्र इतना ज्यादा है।
0: अच्छा, नहीं, जिस हिसाब से आप उनकी रुचि बता रही हैं और वो कार्यक्रम सुनते हैं हमारे, उस हिसाब से भी ये नहीं बिल्कुल महसूस हुआ हमें कि वो इस प्रकार उनकी इतनी आयु है। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा जो परिवार है वो हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, श्रोता के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

0: तो नहीं है कि इन दोनों का उम्र इतना ज्यादा है।
1: अच्छा, नहीं, जिस हिसाब से आप उनकी रुचि बता रही हैं और वो कार्यक्रम सुनते हैं हमारे, उस हिसाब से भी ये नहीं बिल्कुल महसूस हुआ हमें कि वो इस प्रकार, उनकी इतनी आयु है। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा जो परिवार है वो हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, श्रोता के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। हाँ,
0: बच्चों का नाम ले।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएं।
0: आयुष अनन्या।
1: आयुष अनन्या आपके दोनों बच्चे हैं?
0: हाँ।
1: अच्छा चलिए ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं करीब फिल्म का ये गीत।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: लगता है कोई और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो
1: हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? हेलो,
0: हेलो, कौन? नमस्ते, आप अपना नाम बताएं। थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। कहाँ से? अच्छा, अपना नाम एक बार और बताएं। दिव्यांशी
1: प्रियांशु।
0: प्रियांशु।
1: अच्छा,
0: अच्छा, क्या करते हैं प्रियांशु जी? किस क्लास में हैं? हाँ,
1: सेवेंथ।
0: सेवेंथ में। वाह, और गीत संगीत का इतना शौक भी है आपको?

अरे वाह, तो प्रियांशु जी कुछ सीखते भी हैं गाना वाना कि खाली सुनते हैं? अच्छा, गुनगुनाते तो होंगे गाने सुन सुनकर साथ में। तो नई फिल्मों के गाने पसंद हैं कि पुराने भी पसंद हैं? नए। अच्छा, तो और फिर ये दोनों फिल्मों के कैसे पसंद आप? तो हाँ हाँ ये तो है, हम तो यही दोनों फिल्में लेकर आए। तो इनमें से किस फिल्म का गीत आज आप सुनना चाहेंगे प्रियांशु जी? कोई भी। अच्छा, पहले भी आपने सुना है इनका गाना, इन फिल्मों का? चलिए, अब अगली बार जब आप हमें कॉल, हाँ, ले लीजिए, लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए, अगली बार प्रियांशु जी जब आप कॉल करिएगा तो आपको एक लाइन तो गा के सुनाना भी पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए। अच्छा, तो इन सभी लोगों का स्वागत है, शुभकामनाएं इन्हें, और इन सबके साथ साथ आपको भी सुनवाते हैं करीब फिल्म का ये प्यारा सा मीठा सा गाना, ठीक है?

0: और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो,
1: मैम, नमस्कार।
0: हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: आकाश माली का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ
0: जी
1: बहता है शीतल जल। नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गोतनी, तहसील कोंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: क्या बात है राजेंद्र जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए, कितनी अच्छी बात है, आपने इतने सुंदर तरीके से अपना परिचय दिया है। क्या करते हैं राजेंद्र जी आप?
1: मैं अपना खेती बाड़ी का काम करता हूँ और साथ
0: अच्छा,
1: साथ आपके कार्यक्रमों से भी जुड़ रहा हूँ।
0: नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रमों से
1: बहुत
0: जुड़े
1: अच्छे
0: हुए
1: अच्छे
0: हैं।
1: कार्यक्रम।
0: जी, और आप हमारे श्रोता हैं, आप हमारा नियमित कार्यक्रम सुनते हैं, और इसके लिए
1: जी
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे पास दो फिल्में हैं, करीब और हम दिल दे चुके सनम, इसमें से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे राजेंद्र जी?
1: सनम फिल्म का कोई सा भी गीत।
0: अच्छा, हम दिल दे चुके सनम का कोई सा भी गीत। अच्छा,
1: जी
0: तो आपने बताया आप खेती बाड़ी में मतलब खेती बाड़ी का

0: काम करते हैं, तो इस वक्त क्या उगाया हुआ है आपने अपने खेतों में?
1: धान उनकी फसल है मैम, ठीक
0: अच्छा
1: ठाक है। आपकी मौसम भी बहुत
0: जी,
1: है।
0: अच्छा, और बारिश वगैरह की वजह से
1: तो
0: कैसा रहा पूरा उसका, क्योंकि मौसम भी इस वक्त
1: आपकी
0: बरस,
1: बहुत हुई है मैम।
0: हाँ अच्छा
1: हमारे तरफ गंगा नदी का हम पहले इजहार कर दिया शायरी के अंदाज में, वो भी बहुत ज्यादा बाढ़ी है गंगा नदी।
0: जी, अब की बार बढ़ी भी बहुत हुई है। और आपको मौसम कैसा लगता है बरसात का?
1: बरसात का मौसम फिलहाल ठीक रहता है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो थोड़ा अलग सा
0: हाँ
1: लगने लगता है।
0: जी, ये तो है। तो आप हमारा जो हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम है, इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम हमारे सुनते हैं आप राजेंद्र जी?
1: जी मैम, जैसे तनघट कार्यक्रम और लोग
0: जी
1: एक एक कलाकार किए जाते हैं, और एक क्या होते हैं पंचायत घर और युवाओं का युवाड़ी, ये सब
0: जी,
1: जितने भी कार्यक्रम आज केंद्र से आते हैं सभी सुनते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और लगभग हमारे सभी कार्यक्रम
2: बिल्कुल,
0: सुनते
2: राजेंद्र
0: हैं।
2: जी हमारे नियमित श्रोता
0: हाँ,
2: हैं।
0: और हमारे हेलो गृहलक्ष्मी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम से ये गीत।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते।

0: मैं प्रयागराज से ही बात कर रही हूँ।
1: अच्छा, क्या करती हैं आप हर्षिता जी?
0: मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ।
1: ओह वेरी गुड। तो गीत संगीत का भी शौक रखती हैं आप?
0: बहुत, मैंने इवन म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया है।
1: अरे वाह,
2: और मैं आपको बता दूं कंचन जी, हर्षिता जी हमारी नियमित श्रोता हैं, सारे
1: क्या
2: हमारे
1: बात
2: कार्यक्रम
1: है, वाह
2: सुनती
1: वाह। तो
2: हैं
1: भाई
2: और
1: बहुत
2: खुद
1: बहुत
2: भी
1: स्वागत है
2: बहुत रुचि रखती हैं
0: आपका।
2: संगीत में।
0: इवन मेरा बचपन मतलब हवा महल और सखी सचिव यही सब सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ।
1: क्या बात है, बिल्कुल। और अब आप बड़ी होती चली जाइए, हर तरह से ओहदे में रुतबे में, लेकिन कार्यक्रम जरूर सुनती रहिए। तो
0: जी
1: ये
0: जरूर
1: बताएं,
0: जरूर।
1: आज हम करीब और हम दिल दे चुके सनम दो फिल्में लाए हैं, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: दोनों फिल्में ही बहुत संगीत के मामले में बहुत एक ही हैं,
1: बिल्कुल।
0: और मुझे झोंका हवा का भी बहुत पसंद है और दिल मेरा सुरालो भी बहुत पसंद है।
2: हाँ, दोनों ही गाने हैं भी बहुत
1: हाँ
2: खूबसूरत, एक
1: बहुत
2: हरी
1: अच्छे हैं,
2: हरन साहब
1: बिल्कुल।
2: की आवाज में है और दूसरा, तो आपको सुनवाएं कौन सा हर्षिता जी?
0: आप मुझे दिल मेरा सुरालो सुनवाई।
2: हाँ,
1: ओहो,
2: लेकिन
0: यानी
2: जैसा
0: करीब
2: कि,
1: फिल्म
2: हाँ,
1: का।
2: जैसा कि हमें पता है कि आप संगीत में बहुत रुचि रखती हैं, तो दो लाइनें हमें सुनाएंगी आप गा के, इन्हीं दोनों में से किसी गाने की?
0: हाँ ठीक है, दिल मेरा सुना लो।
2: हाँ,
1: हाँ हाँ
2: बिल्कुल।
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

0: शानदार गीत संगीत और उस पर कविता कृष्णमूर्ति की खनकती आवाज और ऐश्वर्या राय का डांस
1: इतना सुंदर
0: इस गाने को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। देखिए एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी हाँ, आपना शुभ नाम बताएं।
2: जी नमस्ते, मैं हर्षिता बात कर रही हूँ।
0: तो हर्षिता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?

0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: ही मेलोडियस
1: क्यूट।
0: आवाज है आपकी।
1: और हमारे, आप ये देखिए, जितना ही संगीतमय हमारा कार्यक्रम है उतने ही संगीतमय हमारे श्रोता
0: श्रोता
1: भी
0: है,
1: हैं। इतनी
0: बिल्कुल।
1: सुंदर खनकती आवाज है आपकी अर्षिता जी। आपने हमें कॉल किया हमारे कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको हम
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा
1: गीत,
0: लगा,
1: हाँ
0: और
1: आपको,
0: मेरी बहुत बचपन से थी कि कभी मैं भी रेडियो पर कॉल करूंगी, और आज फाइनली वो सपना सच हो
1: वाह,
0: गया।
1: हमें बहुत अच्छा लगा और हम सच में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आपसे हमारी बात हुई और इतने अच्छे और इतने काबिल हमारे श्रोता हैं।
0: बिल्कुल,
1: और आपको, हाँ
0: सुनवाते हैं उनका ये पसंदीदा गीत
1: जी
0: बिना वक्त
1: बिल्कुल,
0: जाया किए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए।

0: मीठे से गीत के दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो जी
0: हेलो,
1: मैम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते, आप अपना शुभ नाम
1: सुरेंद्र
0: बताओ।
1: यादव, बांका जलालपुर, पोस्ट मऊ में, जिला प्रयागराज से बोल रहा हूँ मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी।
2: हाँ सुरेंद्र जी, आपने हमारे हेलो गृह लक्ष्मी में फोन किया है, तो कौन सा
1: जी
2: गाना सुनना चाहते हैं पहले तो ये बता दीजिए हमें।
1: कौन कौन फिल्म है जी?
2: करीब है 1998 में प्रदर्शित हुई, और हम दिल दे चुके सनम 1999 में प्रदर्शित हुई फिल्म। इन दोनों फिल्मों से आज हम अपने श्रोताओं को गाना सुनवा रहे हैं, आप इनमें से
1: कोई भी
2: अपने कोई
1: हमें गाना
2: पसंद।
1: सुना दीजिए, कोई भी,
0: कोई भी,
1: सब
0: अच्छा।
1: पसंद है
0: तो आप करते
1: जी मैम।
0: क्या हैं सुरेंद्र जी?
1: क्या मैम?
0: क्या आप काम क्या करते हैं?
1: सर यही खेती बाड़ी है जी मैम,
0: अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: धान धान यही
0: तो
1: सब
0: अभी
1: हो
0: तो
1: गया है अब
0: अब तो धान
1: जी मैम।
0: आपके हो गए हैं। अब तो मौसम, इसमें जो बारिश हो रही है वो कोई
1: मौसम
0: मुश्किल तो नहीं
1: है,
0: पैदा कर
1: ठीक
0: रही
1: है
0: है?
1: आज, ठीक
0: नहीं, आज तो
1: है।
0: बढ़िया है।
1: हाँ बढ़िया है, हवा भी चल रही ठंडी ठंडी बिल्कुल। ठीक
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल।
1: मैम।
0: तो अब इसके बाद आप क्या, मतलब धान जब कट जाएंगे आपके थोड़े समय बाद, तब आप कौन सी नई फसल लेकर आएंगे?
1: गेहूं गेहूं
0: गेहूं। अच्छा
1: गेहूं
0: अच्छा
1: बोआ बोआ जाता है
0: तो चलिए, आप लोग वैसे इतनी मेहनत का काम करते हैं तो साथ में रेडियो चलता रहता है क्या?
1: जी। जी मैम इसी फोन में ही है,
0: अच्छा, तो फोन
1: फोन
0: से?
1: में ही रहता है,
0: हाँ,
1: रेडियो
0: तो
1: नहीं,
0: वो
1: सब फोन
0: आपका
1: में ही
0: मतलब
1: सिस्टम
0: फोन
1: है
0: पे ही
1: मेरा।
0: आपका जो रेडियो है वो भी साथ साथ चलता रहता है काम के साथ साथ।
1: हाँ
0: तो
1: लेकिन सब
0: क्यों ना
1: चलता है
0: आपको हम
1: सर।
0: लोग,
1: मैं दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ
0: हाँ
1: मैम,
0: हाँ ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए।
1: प्रेमचंद यादव है हड़िया के, वो शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, राजेंद्र कुमार प्रतापगढ़ के हैं,
0: जी
1: विकास
0: जी
1: ड्राइवर हैं,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: हमारे श्रोता हैं कॉलर
0: हाँ हाँ
1: हेलो फरमाई, ये सब सुनते हैं, कॉल
0: हाँ इनमें से
1: रेगुलर
0: कई
1: कॉलर
0: लोगों
1: हैं
0: के
1: जी
0: नाम तो
1: मैम।
0: हम भी सुने हुए हैं और ये लोग नियमित श्रोता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, आप सुना करिए कार्यक्रम, हम लोग को भी बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके। तो
1: जी
0: हम समय नहीं बर्बाद करते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा गीत बजाते हैं, ठीक है? आपके रेडियो सेट पर ये।
3: देखा।

0: और इस झूमते हुए नगमे के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं महेंद्र यादव मुन्ना बोल रहा हूँ, बरौसिया प्रयागराज से।
0: महेंद्र जी, तो महेंद्र जी क्या करते हैं आप?
1: जी अभी मैं जॉब करता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ इस टाइम पे, मैं दिल्ली से फोन लगाया हूँ।
0: अरे वाह भाई, दिल्ली से फोन लगाया है आपने और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे श्रोता हर शहर से हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमें कॉल करते हैं और हमें हमारा जो कार्यक्रम है वो सुनते हैं।
1: हमें हमारी मिसेज ने बताया फोन करके कि आज रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा। और अभी आप फोन कर सकते हैं, रेखा यादव जी।
2: ओह अच्छा, रेखा जी आपकी पत्नी है, वाह क्या बात है।
0: और
1: वो
0: कैसा
1: पत्नी है?
2: हाँ, वो तो नियमित श्रोता भी है हमारी।
1: जी,
0: और कैसा आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम?
1: हाँ जी मैम,
0: आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी बराबर सुनते हैं, हम भी रेडियो मोबाइल में भी सुनते हैं ऐप्स के माध्यम से।
0: जी जी, और कैसा लगते हैं आपको हमारे सभी कार्यक्रम?
1: हाँ जी मैम,
0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं और काफी रेडियो से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ रेडियो सभी सुनते बहुत ही अच्छा लगता है और आपके आकाशवाणी के माध्यम से हम लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कितने लोगों को आवाज सुनने को मिलता है।
0: ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे साथ आप जैसे श्रोता जुड़े हुए हैं। तो आज दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना
1: आज
0: चाहेंगे?
1: आप सुनवाइए हम दिल दे चुके सनम का गाना और चांद छुपा बादल में।
0: अच्छा, कितना सुंदर गीत आपने हमसे सुनाने के लिए कहा है, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपने हमें हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम ये गीत सुनवाते हैं लेकिन साथ ही आपने कुछ कॉलर्स का और नाम ले देते हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से फरमान, मोहम्मद फरमान, इरफान, सलमान, इसरार और नरगिस खातून
2: जी,
0: और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी ने।
2: और बड़ा अच्छा संयोग है कि उन्होंने भी इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है।
0: जी, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आप सभी को चांद छिपा बादल में हम दिल दे चुके सनम से गीत।

0: Sela. The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 centimeters every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nidhishri for Akashvani News, Patna.
1: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In U.S. Open tennis, defending champion Aryna Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semifinal in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In Men's Junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आर्यना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात

0: करेंगे अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवू ओजुकवू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity.
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: And transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
4: Take to the world as a trusted partner.
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए।

0: ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
2: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1,942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश

किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के

0: सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें,

0: इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नजर में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर फाइन सर।
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
2: Yes, sir.
6: We like.
1: Lovely butterflies?
2: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
2: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
2: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
2: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
2: Like us?
1: Would you like to listen?
2: Yes, sir.
6: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
2: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
2: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a big white bear. Looking down at me. As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a ship sailing.
2: On a white sea.
1: As I lie on my back. Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me. As I lie on my back. Looking up at the sky. Oh, it's fun to me.
2: Oh, it's fun to me.
1: To see whatever I want to

0: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: रियाज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। अरे दलाई लामा है, दलाई लामा। सच में?
1: वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूंगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलते, नजदीक आ गए,
2: आगे आगे,
1: आ जाओ आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 10 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने
4: जा रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है।
7: होमी, ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
8: जी माँ, बिल्कुल।
7: अच्छा बेटी,

0: इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो। सब ठीक तो है ना बेटा?
1: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
0: अच्छा, तो ये बात है। भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
1: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
0: अरे
1: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
0: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
1: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
0: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
1: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
0: कुछ नहीं होमी, बस करो।
1: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
3: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
4: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहीं।
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
4: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गईं। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
1: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
1: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी जरा इसे देखो।
1: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहां देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
1: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
1: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई होमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
4: मानेकशा स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। 8 महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद

0: 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर दी बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
1: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
0: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हो।
1: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
0: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
1: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
0: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के

0: 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब हमारी पहली सभा समाप्त होती है, दूसरी सभा शाम 5 बजे प्रारंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: कैसे हैं आप सब नन्हे मुन्ने बच्चों? क्या हुआ रितिका दीदी, आप बोल नहीं रही हैं, तबीयत नहीं ठीक है क्या?
0: अब ठीक है क्योंकि अब हम अपने बच्चों से मिलने आ गए हैं, लेकिन बीच में तबीयत खराब थी। वायरल फीवर था मुझे।
1: आजकल तो ये कितना फैल रहा है ना, मौसम ही कुछ ऐसा है।
0: सही कह रही हैं दीदी आप, तभी तो हम अपने नन्हे मुन्नों से भी अच्छे से रहने की बात करते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े और अच्छी तरह से अपने घर में सभी के साथ रहें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ना, घर में हर घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, वो बहुत अधिक बीमार थी, मतलब हाई फीवर।
0: फिर
1: तो फिर क्या, फिर वे डॉक्टर को दिखाया, घर में सब परेशान थे।
0: कंचन दीदी मैं तो ये कह रही हूँ ना कि बहुत जो एक होता है ना कि उसकी देखभाल कौन कर रहा
1: हाँ,
0: है,
1: हाँ।
0: ये सारी चीज़ें हमको, जैसे हमारा अपना कोई जब बीमार हो जाता है तो हमें बहुत परेशानी होती है इस बात की कि उसका कौन ख्याल रखता होगा, और अगर वो परिवार से अलग या अकेले रह रहे हैं तो और ज़्यादा, है ना। तो मैं हैरान रह गई जब मैंने उनके घर में उनसे मिलने गई, है ना, और जिनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी जब मैं उनसे मिलने गई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उनकी एक 12 साल की ना छोटी सी बिटिया थी।
1: अच्छा,
0: तो उसका मतलब मैंने उन्होंने खूब ख्याल रखा, खूब सेवा की, उसी की तबीयत खराब थी। और यहाँ तक कि घर के जो छोटे छोटे काम थे ना वो जो बच्ची थी वही कर रही थी, वही संभाल रही थी।
1: कितनी बड़ी हेल्प
0: है। बिल्कुल। और मुझे उस दिन इस बात का अंदाजा लगा कि देखिए बच्चे भी घर के काम में कितनी भागीदारी निभा सकते हैं।
1: और हम लोग अपने बच्चों को सिखाने की भी कितनी कोशिश करते
0: जी,
1: हैं,
0: जी।
1: मगर कभी कभी मौके कुछ ऐसे आ जाते हैं, ऐसा एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि बच्चे बिना कहे ही खुद भी तत्पर होकर करने भी लगते हैं और न जाने कितनी छोटी छोटी चीजें सीख भी जाते हैं।
0: जी, इसीलिए मतलब मैंने सोचा कि आज मैं अपने बच्चों से ये बात जरूर पूछूंगी कि बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने, मतलब रखना सिर्फ माँ बाप की या घर के बड़ों की जिम्मेदारी नहीं होती है, परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है।
1: बिल्कुल। और बच्चों पता है आपको, बहुत बड़े बड़े मेहनत के काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए। जैसे आप स्कूल से आए तो कहीं भी बैग मत फेंकिए। एक जगह बनी होगी ना आपका, स्टडी टेबल होगा, वहाँ बैग रखिए। अपनी यूनिफॉर्म ठीक से टांग के हैंगर में लगा दीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा मम्मी की कितनी बड़ी हेल्प होगी और वो मन ही मन कितना ज्यादा खुश हो जाएंगी।
0: बिल्कुल। घर परिवार के हर सदस्य को छोटे छोटे काम आपस में बांटने चाहिए, मिलकर हाथ बटाना चाहिए। और ऐसा जैसा कि आपने कहा भी कंचन दीदी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम जब बहुत बड़े बड़े काम करें तो ही ये हमारी मदद में काउंट होगा। जैसे हमने अगर अपना बिस्तर खुद ठीक किया और अपने खिलौने और किताबें सही जगह पे रख दी, जैसा कि आपने बोला अपने स्कूल से रिलेटेड चीजें, फिर वो यूनिफॉर्म हो, बैग हो, जूते हमने व्यवस्थित तरीके से रख दिए, कपड़े इधर उधर ना फेंक कर एक जगह व्यवस्थित तरीके से रख दिए और गंदे कपड़े अलग रख दिए, ना पौधों को पानी देना,
1: कितनी हेल्प है। बिल्कुल।
0: कितनी सारी मतलब,
1: और ये कितनी अच्छी आदतें भी हैं जो हम धीरे धीरे सीख जाते हैं अपने अंदर, उनको मतलब डाल लेते हैं, तो हमारे लिए आगे के लिए भी कितना अच्छा होता है।
0: जी जी, हमारे अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है, जिसको कहते हैं हम जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सब चीज़ें, इन सब की भावना जो है और वो बहुत स्ट्रांग होती है।
1: बिल्कुल। और देखो बच्चों, अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, पर धीरे धीरे आप बड़े होंगे, फिर आप कभी बाहर भी जाएंगे तो आपको हर वक्त गाइडेंस नहीं मिलेगा बड़ों का, लेकिन ये जो आप छोटे छोटे काम घर में सहयोग कर चुके होंगे, ये आपके लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक बनेंगे और आपको हमेशा गाइड करेंगे कैसे रहना है, अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है। आपको कभी किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में ही काफी रहेंगे।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जब बात घर के बच्चों की हो ना, तो साथ साथ बड़ों की भी भूमिका ये होती है कि बच्चों को शुरुआत से ही उनकी उम्र के अनुसार ऐसे

0: से काम बताएं या उनको चीज़ें करने की आदत डालें जिससे उनको ये समझ में आए कि वो क्या काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है। और इसी तरह घर के जो बड़े सदस्य हैं वो भी अपनी सुविधा अनुसार अपनी चीज़ें, मतलब खरीदारी है, बिल जमा करना है, ज़रूरी सामान लाने हैं या बुज़ुर्गों की सहायता करनी है, ये सब जिम्मेदारी बांट सकते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: जिम्मेदारियों बांटते कि मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी बांटते समय इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें ये फ़र्क नहीं करना है कि बेटी या बेटे को अलग अलग
1: नहीं,
0: जिम्मेदारी देनी
1: बल्कि
0: है।
1: जो लाइफ स्किल्स हैं
0: जी
1: वो चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों को समान रूप से आनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि दोनों को ही इन चीज़ों की ज़रूरत
0: जी
1: हमेशा
0: जी
1: आजीवन
0: जी
1: बढ़ने
0: जी
1: वाली
0: जैसे
1: है।
0: बेटियों को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है और बेटों को भी घर का काम आना उतना ही ज़रूरी है ना। इससे बच्चों में ये समझ विकसित होती है कि घर चलाना सभी की साझा जिम्मेदारी है
1: बिल्कुल सही
0: ना।
1: बात।
0: और जब हमने ये सारी बातें की अपने नन्हे मुन्नों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बाल श्रोताओं के साथ, जब हम ये सारी जानकारियाँ साझा कर रहे हैं, तो क्यों ना साझा करें आज का गीत भी।
1: बिल्कुल, बच्चे तो खुश हो जाएंगे।
0: हाँ।

0: सी हंसी को बहुत बड़ी हंसी बना देना चाहिए, क्यों
1: जी
0: दीदी?
1: और कहते हैं ना कि आप अपना जो आशिया होता है वो अपनी खुशियों में अपने छोटे से संसार में समाया रहता है, लेकिन जब हम संसार की बात करते हैं तब बात आती है हमारे सौर मंडल की भी, जो एक अलग दुनिया है, अलग संसार है।
0: बिल्कुल, और बहुत विस्तृत और बड़ा संसार है ना।
1: तो हम आज आओ जाने में अपने बच्चों से

0: यही बात करने वाले हैं कि आज हम अपने सौर मंडल के बारे में जानेंगे।
1: तो बच्चों, ये सौर मंडल भी हमारे परिवार की तरह है। अभी बताते हैं कैसे। देखो, जब आप रात के आसमान की ओर देखते हैं तो वहाँ चांद और ढेर सारे सितारे दिखाई देते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा परिवार मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। हाँ, तो ये सौर मंडल के केंद्र में है सबके दादाजी, मतलब सूर्य। वो सबसे बड़े, सबसे मतलब मुखिया की तरह है। हाँ। जैसे घर में हमारे सबसे बड़े लोग होते हैं ना, वैसे तो वो होते हैं सूर्य, और उनके चारों तरफ उनसे आभासित होके बाकी सब चक्कर काटते रहते हैं और उनकी बात मानते हैं। क्यों दीदी?
0: बिल्कुल, जो सूर्य है ना, ये एक तारा है, जबकि सोचिए इसकी रोशनी तथा गर्मी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है।
1: हाँ, हाँ।
0: सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और वो 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये पृथ्वी ही हमारा घर है, और अभी तक हमें यही एक ऐसा ग्रह ज्ञात है जहाँ जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर पानी, हवा और जीवन के लिए अनुकूल तापमान पाया जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लौह खनिजों के कारण इसका रंग जो है ना, वो हमें लाल दिखाई देता है।
1: बिल्कुल।
0: और शनि जो है वो अपने खूबसूरत वलयों के लिए प्रसिद्ध है।
1: वो जो रिंग्स होती है ना,
0: इसके चारों ओर बर्फ, चट्टानों और धूल से बने अनेक वलय हैं।
1: हाँ, और इसी तरह है बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसमें कई पृथ्वी जैसे ग्रह समा सकते हैं बच्चों। और बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीबी ग्रह है, जबकि वरुण सूर्य से सबसे दूर बैठा 8वां ग्रह है।
0: जी, जी।
1: और ये हमारा चंद्रमा, ये ग्रह नहीं है बल्कि ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है।
0: हाँ।
1: बल्कि हम कह सकते हैं पृथ्वी का बहुत अच्छा दोस्त है।
0: जी, और जब बात सौरमंडल की हो तो सौरमंडल में केवल ग्रह ही नहीं है, यहाँ शुद्ध ग्रह हैं, धूम केतु हैं, उल्का पिंड है, और अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना। तो बच्चों, जब अगली बार आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, हमारा छोटा सा घर पृथ्वी अंतरिक्ष के एक विशाल और अद्भुत परिवार यानी कि सौर मंडल का हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं सौर मंडल की, जब हम बात करते हैं जिम्मेदारियों को बांटने की, तो हमारा बस एक ही टोटल, एक की कहते हैं ना कि इंटेंशन रहता है कि हम अपने बच्चों को, अपने बात श्रोताओं को अच्छी आदत सिखा सके, ये सिखा सके कि जीवन में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या बुरी।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आपको इतनी ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारियां भी दी जा जाती हैं कि आप उनका इस्तेमाल करें, सोचें, समझें और उनसे सीखें, है ना? और बच्चों, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था ना, घर में अपनी एक जगह बनाइए, रिस्पॉन्सिबल हैं आप, ये बताइए घर वालों को कैसे, वो तो हम दोनों दीदियों ने आपको बता दिया है। तो अब जुट जाइए, छोटी छोटी हेल्प करिए, और मम्मी पापा की बड़ी बड़ी शाबाशी और अच्छा अच्छा ढेर सारा प्यार पाइए।
0: बिल्कुल। और जब बात होती है कि हमें अप्रिसिएशन जब मिलता है, तो किसी भी अच्छे काम को जब हम करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है, तो जब हमारे घर वालों से हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें उसकी खुशी भी होती है,
1: और जहाँ खुशी होगी वहाँ प्रोग्रेस अपने
0: आप आएगी। तो हम इसी खुशी के साथ आपसे यहाँ विदा तो ले रहे हैं, लेकिन जल्दी ही दोबारा मिलेंगे आके। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जाँच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
6: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
5: RBI कहता है जानकार बनिए,
6: सतर्क रहिए।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
8: युवा साथी, अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। शाम के इस खूबसूरत वक्त में आपका स्वागत है आकाशवाणी प्रयागराज के युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। तो चलिए शाम की इस महफिल को थोड़ा सा यूथफुल, थोड़ा फंकी और थोड़ा थॉटफुल बनाते हैं, क्योंकि युववाणी में बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें आपको अपनी ही कहानी सुनाई दे जाती है। तो आज भी ऐसी एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, आपने आज सुबह आँख खुलने के बाद सबसे पहले क्या देखा था? सूरज देखा था, मम्मी का चेहरा देखा था, या फिर फ़ोन की स्क्रीन देखी थी? और अगर फ़ोन की स्क्रीन थी तो बस एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फ़ोन उठाया होगा पक्का, फिर एक रील देखी होगी, फिर दूसरी, फिर किसी की स्टोरी, फिर किसी का वेकेशन, और फिर अचानक रियलाइज़ होगा, अरे मैं तो बस नोटिफिकेशन देखने आया था, वो बस 5 मिनट फ़ोन चलाऊँगा, कब 45 मिनट बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी डिजिटल आदतों और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच की बातें करने के लिए आप सुन रहे हैं युववाणी, वही फ़ोन जिसे हम सुबह उठते ही देखते हैं और रात को सोने से पहले भी आखिरी बार देखते हैं। कभी हम कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो बस लगता है ना कि फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो बस देख लेता हूँ किसका मैसेज है, कौन है। फिर नोटिफिकेशन आती जाती है, हम स्क्रॉल करते जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम को भी फिर पता चल जाता है कि हमें क्या पसंद आएगा। और फिर जब आखिर में हम फ़ोन रखते हैं ना, तो फिर यही रियलाइज़ होता है कि अरे इतने देर फ़ोन चलाया, इसके अलावा हम लोग कुछ काम कर सकते थे जो पेंडिंग काम हमारे रखे हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, कभी कभी सोशल मीडिया हमें हंसाता है, एंटरटेन करता है, नई चीज़ें भी सिखाता है, लेकिन कभी कभी वही स्क्रीन मूड भी बदल देती है। जैसे आपने किसी दोस्त की फ़ोटो देखी, नया कॉलेज, नई जगह, नया अचीवमेंट, और आपके दिमाग में अचानक आया सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है, मैं कहाँ हूँ। या किसी की ब्यूटीफुल वेकेशन पिक्चर्स देखकर लगा, यार मेरी लाइफ तो कितनी बोरिंग है। किसी की सक्सेस स्टोरी देखी और अपने स्ट्रगल्स याद आ गए। किसी की परफेक्ट लुकिंग पिक्चर देखी और अपने चेहरे में कमियाँ ढूंढने लगे। और कभी कभी तो मामला सिर्फ एक मैसेज तक नहीं रह जाता है, आपने किसी को मैसेज किया हो सीन हो।

गया। रिप्लाई नहीं किया। फिर दिमाग ने इन्वेस्टिगेशन अपनी ही शुरू कर दी। रिप्लाई क्यों नहीं किया? ऑनलाइन तो था, स्टोरी भी देखी है, शायद मुझसे नाराज़ है, और सामने वाला शायद बस फ़ोन रखकर चाय पी रहा हो। एग्जैक्टली नो। और एक और मज़ेदार बात, लेकिन बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन है ये, कि आपने कोई फ़ोटो या पोस्ट डाली हो, पहले 5 मिनट में लाइक्स कमाए हों, फ़ोन उठाया, फिर चेक किया, फिर रिफ्रेश, फिर दोबारा चेक किया, और मन में आया कि इतने कम लाइक्स, डिलीट कर दूं क्या पोस्ट। लेकिन यहाँ एक सीरियस सवाल छिपा हुआ है। आखिर हमें बार बार ये जानने की ज़रूरत ही क्यों महसूस होती है कि लोग हमारी पोस्ट को कितना पसंद कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया हमारे लिए सिर्फ एक्सप्रेशन का मीडियम है, या फिर धीरे धीरे हम अपनी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को भी लाइक्स, कॉमेंट्स, फॉलोअर्स और व्यूज से जोड़ने लगे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की दूसरी साइड भी है। यही प्लेटफॉर्म किसी स्टूडेंट को अपनी जो आर्ट है उसको दिखाने का मौका देता है, किसी को अपनी पोइट्री शेयर करने का, किसी को अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करने का, किसी को किसी सोशल इशू पर अपनी आवाज़ उठाने का, और कभी कभी एक सिंपल सा पोस्ट किसी को वो अपॉर्चुनिटी दे देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर एक ही प्लेटफॉर्म किसी के लिए आवाज़ कैसे बन सकता है और किसी के लिए दबाव? यही सवाल लेकर आज हम युवाणी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद बात होगी उस डिजिटल दुनिया की जिसमें हम हर दिन मौजूद हैं, और सवाल होगा सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति का मंच या मानसिक दबाव।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के उस सवाल की जो शायद हम सबकी डिजिटल लाइफ से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति का मंच या मानसिक दबाव। नाम में ही दो पॉसिबिलिटीज छिपी हुई हैं। अभिव्यक्ति यानी कि अपने थॉट्स, क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, और दूसरी तरफ मानसिक दबाव यानी कंपैरिजन, लाइक्स और कमेंट्स का प्रेशर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑनलाइन वैलिडेशन और हर वक्त कनेक्टेड रहने की फीलिंग। सबसे पहले पॉजिटिव साइड से अगर शुरू करें तो सोशल मीडिया ने एक्सप्रेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। पहले अगर आपको अपनी राइटिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट या ओपिनियन दुनिया तक पहुंचाना होता था तो लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स थे। आज आप अपने फ़ोन से एक वीडियो बना सकते हैं, एक पोएम पोस्ट कर सकते हैं, अपना आर्ट वर्क शेयर कर सकते हैं और सेकेंड्स में वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। और यूथ के लिए तो ये एक पावरफुल स्पेस बन गया है। किसी को अपना टैलेंट शोकेस करना है, किसी को अपना स्टार्टअप प्रमोट करना है, किसी को किसी सोशल इशू पर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया उन्हें वॉइस और विजिबिलिटी दोनों दे सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम कुछ पोस्ट करते हैं और उस पर लाइक्स नहीं आते तो क्या वो एक्सप्रेशन जो है वो कम वैल्यूएबल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आपकी पेंटिंग की वैल्यू जो है वो 20 लाइक्स से डिसाइड नहीं होती, आपकी पोइट्री की डेप्थ 100 व्यूज से डिसाइड नहीं होती, और आपकी पर्सनैलिटी फॉलोअर्स की काउंटिंग से डिसाइड नहीं होती। बिकॉज नंबर्स कैन मेजर एंगेजमेंट बट दे कैन नॉट मेजर योर वर्थ। लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर काफ़ी सटल तरीके से आता है। कोई आपको डायरेक्टली नहीं कहता है कि तुम्हें परफेक्ट दिखना है, लेकिन जब हम बार बार परफेक्टली एडिटेड फेसेस, लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स, अचीवमेंट्स और हैप्पी मोमेंट्स को देखते हैं तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, उनकी कंप्लीट लाइफ नहीं। किसी की एक ब्यूटिफुल ट्रैवल फोटोग्राफी हम देख कर ये सोच सकते हैं कि यार इसकी लाइफ कितनी अमेजिंग है, लेकिन उस एक फोटोग्राफी या फोटोग्राफ के पीछे का स्ट्रेस जो है, फाइनेंशियल वरीज, फैमिली प्रॉब्लम्स या फेलियर्स, ये तो हमें दिख ही नहीं रहे। मतलब हम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को किसी और के बेस्ट मोमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। और फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फ्रेंड्स कहीं गए, पार्टी हुई, इवेंट हुआ, सब ने फोटोज अपलोड कर दिए और आप घर में बैठे हैं तो लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? जबकि रियलिटी में ये भी हो सकता है कि आप बस एक पीसफुल इवनिंग एंजॉय कर रहे हो अपने घर पे। अब बात करते हैं उस छोटे से बटन की जो कभी कभी सरप्राइजिंगली बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, द लाइक बटन। पोस्ट की, फ़ोन साइड में रखा, 2 मिनट बाद फ़ोन चेक, कितने लाइक्स आए, फिर रिफ्रेश, फिर रिफ्रेश, और अगर एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वही थॉट, डिलीट कर दूँ क्या? पॉइंट यही है, अगर हमारी हैप्पीनेस रिपीटेडली एक्सटर्नल रिएक्शंस पर डिपेंड करने लगे ना तो सोशल मीडिया एक्सप्रेशन से ज़्यादा वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर का सोर्स बन जाता है। और वैलिडेशन की प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई परमानेंट इनफ पॉइंट नहीं होता है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा। ऐसे आज 100 लाइक्स आ जाएं तो खुशी, कल 500 आ जाएं

और चाहिए, फिर 1,000 चाहिए होगा। और धीरे धीरे हम पोस्ट इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ कहना है, हम पोस्ट करते हैं क्योंकि हमें लोगों के रिएक्शंस चाहिए हैं। तो क्या सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? नॉट नेसेसरली। सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि यूज़ कॉन्शियसली, मतलब हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होता है। सेकेंडली, कंपैरिजन को कैच कीजिए। अगर किसी की पोस्ट देखकर आपको बार बार लग रहा है कि आप इनफ नहीं हैं, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपनी फीड को भी कॉन्शियसली क्यूरेट कीजिए। ऐसे अकाउंट्स फॉलो कीजिए जो आपको इंस्पायर करें, इन्फॉर्म करें, एंटरटेन करें, ना कि कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर फील कराएं। और एक और सिंपल रूल, पोस्ट करने से पहले ना खुद से सवाल कीजिए कि मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ। अगर आंसर है बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, देन यू शुड गो फॉर इट, ग्रेट। लेकिन अगर आंसर है बिकॉज आई नीड पीपल टू टेल मी दैट आई एम गुड इनफ, तो शायद एक सेकेंड का पॉज ज़रूरी है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए।

मतलब हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होता है। सेकेंडली, कंपैरिजन को कैच कीजिए। अगर किसी की पोस्ट देखकर आपको बार बार लग रहा है कि आप इनफ नहीं हैं, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए। अपनी फीड को भी कॉन्शियसली क्यूरेट कीजिए। ऐसे अकाउंट्स फॉलो कीजिए जो आपको इंस्पायर करें, इन्फॉर्म करें, एंटरटेन करें, ना कि कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर फील कराएं। और एक और सिंपल रूल, पोस्ट करने से पहले ना खुद से सवाल कीजिए कि मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ। अगर आंसर है बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, देन यू शुड गो फॉर इट, ग्रेट। लेकिन अगर आंसर है बिकॉज आई नीड पीपल टू टेल मी दैट आई एम गुड इनफ, तो शायद एक सेकेंड का पॉज ज़रूरी है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए, टैलेंट दिखाने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन मंच पर खड़े रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ऑडियंस की तालियों का वेट करें। कभी कभी बिना पोस्ट किए भी मोमेंट को एंजॉय कर लीजिए। कभी फोटो क्लिक करके गैलरी में ही रहने दीजिए, और कभी फ़ोन साइड में रखिए और सामने वाले बैठे इंसान से बात कीजिए। बिकॉज रियल लाइफ को हर बार अपलोड करना ज़रूरी नहीं होता है, उसे इन द मोमेंट जीना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और याद रखिए, आपकी आइडेंटिटी आपके फॉलोअर्स से बड़ी है, आपकी क्रिएटिविटी लाइक से बड़ी है, और आपकी मेंटल पीस किसी नोटिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया यूज़ कीजिए अपनी आवाज़ बनाने के लिए और बनने के लिए, और अपनी वैल्यू इम्प्रूव करते रहिए। इसी थॉट के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड, स्टे एक्सप्रेसिव, बट डोंट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड विथ योरसेल्फ।

दोस्तों, कहते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता केवल उस बात से तय नहीं होती कि उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके विचारों और उसके कर्मों ने दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाया। और आज के प्रेरणा पुंज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व की जिन्होंने बिना किसी पद, सत्ता या हथियार के सामाजिक परिवर्तन का रास्ता चुना। एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने लोगों से जमीन छीनने की नहीं, जमीन बांटने की अपील की। एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने हिंसा के दौर में भी अहिंसा और संवाद पर विश्वास रखा। नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गागोड़े गांव में हुआ। उनका मूल नाम था विनायक नरहर भावे। उनका व्यक्तित्व बचपन से ही उनके माता पिता से गहरा प्रभाव पड़ा था और उनके पिता की सोच में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जबकि उनकी माता धार्मिक आस्था और दूसरों के प्रति संवेदना से प्रभावित थीं। बचपन से ही विनोबा की रुचि सामान्य सांसारिक जीवन से जो अधिक अध्ययन है, आध्यात्मिकता है और ज्ञान है, उसमें थी। वो बहुत पढ़ते थे और विशेष रूप से भारतीय आध्यात्मिक साहित्य और भगवद गीता से प्रभावित हुए। लेकिन उनकी कहानी केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही, ज्ञान को उन्होंने जीवन में उतारने की कोशिश करी। युवा विनोबा महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और वर्ष 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद उनका जीवन गांधी जी के आश्रम, रचनात्मक कार्यों, स्वावलंबन और अहिंसा के विचारों से गहराई से जुड़ गया। गांधी जी ने भी विनोबा की बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक गंभीरता को पहचाना और आगे चलकर विनोबा गांधीवाद विचारधारा के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए। और दोस्तों, 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। ये उनके जीवन में गांधी जी के विश्वास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण था। लेकिन विनोबा की खासियत ये भी थी कि वो केवल गांधी जी के अनुयायी बनकर नहीं रुके, उन्होंने गांधी जी के विचारों को अपने तरीके से समझा, विकसित किया और सामाजिक परिस्थितियों में भी लागू करने की कोशिश करी। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। साल था 1951। तेलंगाना का क्षेत्र हिंसा और सामाजिक तनाव से गुजर रहा था। एक तरफ जमीन और सामाजिक असमानता का सवाल था, दूसरी तरफ हिंसक संघर्ष। ऐसे समय में विनोबा भावे ने हथियार या

सत्ता का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना पैदल चलने का रास्ता। अप्रैल 1951 में वो तेलंगाना के गांवों से होकर पैदल यात्रा करने लगे। उन्होंने उद्देश्य केवल सिंपल रखा कि भाषण देना नहीं था उनका उद्देश्य। वो गांवों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि जमीन और गरीबी की समस्या का अहिंसक समाधान कैसे निकाला जा सकता है। और फिर आया 18 अप्रैल 1951, पोचमपल्ली, जहाँ से भूदान की शुरुआत हुई। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में विनोबा की मुलाकात हुई भूमिहीन परिवारों से। उन परिवारों की एक सीधी ज़रूरत थी, हमें ज़मीन चाहिए ताकि हम उस पर मेहनत करें और अपना जीवन चला सकें। विनोबा के सामने एक कठिन सवाल था। सरकार से ज़मीन दिलाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन क्या समाज के भीतर से भी कोई समाधान निकाला जा सकता है? तभी उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि क्या कोई अपनी ज़मीन का कोई हिस्सा इन भूमिहीन परिवारों को दे सकता है। और गांव के एक ज़मींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ की ज़मीन देने की घोषणा कर दी। यही घटना भूदान आंदोलन की शुरुआत बनी। सोचिए, एक ऐसी समस्या जिसे हिंसा और संघर्ष से हल करने की कोशिश की जा रही थी, विनोबा ने उसके सामने एक बिल्कुल अलग विचार रखा। क्या परिवर्तन स्वेच्छा, करुणा और साझेदारी से भी संभव है? यही था भूदान भूमि का दान। बाद में यही विचार आगे बढ़कर ग्राम दान के रूप में विकसित हुआ, जिसमें पूरे गांव को सामूहिक रूप से इस विचार से जोड़ने की कोशिश की गई थी। पोचमपल्ली की घटना के बाद दोस्तों, विनोबा भावे ने देश के अलग अलग हिस्सों में पैदल यात्राएं की। उनकी यात्रा केवल ज्योग्राफिकल यात्रा नहीं थी, वो एक विचार की यात्रा थी। वो लोगों से कहते थे कि अगर समाज में असमानता है तो केवल कानून से ही नहीं, बल्कि समाज की उस सोच और व्यवहार में बदलाव की भी ज़रूरत है, जिससे उसे कम करने की कोशिश की जाए। उनका भूदान यात्रा जो थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश और असम जैसे क्षेत्रों तक पहुँची। यानी जिस व्यक्ति ने एक गांव में लोगों से ज़मीन देने की अपील से शुरुआत की थी, उसका विचार धीरे धीरे करके एक व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। लेकिन इनका केवल भूदान से ही इनको याद करना कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को अधूरा कर देगा। विनोबा भावे केवल लैंड रिफॉर्म एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक दार्शनिक, अध्येता, आध्यात्मिक चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भगवत गीता पर गहन चिंतन किया और उनके गीता प्रवचन विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। और उनके लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत मुक्ति का विषय नहीं था, उसका संबंध समाज और मानव जीवन की समस्याओं से भी था। उनके विचार के केंद्र में थे अहिंसा, समानता, करुणा, स्वावलंबन और सर्वोदयी समाज। उनका लक्ष्य केवल कुछ लोगों का विकास नहीं था, वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करते थे जिसमें सभी का कल्याण हो, और यही विचार सर्वोदय की भावना से जुड़ता है। अब सवाल आता है कि इतने सारे महान व्यक्तित्वों के बीच आज के प्रेरणापुंज के लिए विनोबा भावे को ही हमने क्यों चुना? इसका जवाब उनके जीवन में ही मिलता है दोस्तों। पहली वजह ये, उन्होंने विचार को एक्शन में बदला। उन्होंने सिर्फ असमानता पर बात नहीं की, उन्होंने लोगों के बीच जाकर उसके समाधान की भी कोशिश की। दूसरी वजह ये कि उन्होंने हिंसा के सामने अहिंसा को विकल्प बनाया। तेलंगाना के हिंसक वातावरण में भी उन्होंने लोगों के बीच जाकर संवाद किया और वॉलेंट्री लैंड गिविंग के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया। तीसरी वजह ये थी कि उन्होंने युवाओं को एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। बदलाव लाने के लिए हमेशा आपके पास कोई बड़ा पद या बड़ी संस्था होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एक विचार, एक कदम और उसे लगातार जीने का साहस एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर सकता है। और चौथी, शायद सबसे महत्वपूर्ण वजह, विनोबा भावे की प्रेरणा आज भी इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ डिसएग्रीमेंट्स बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं। ऐसे समय में इनका जीवन हमें याद दिलाता है कि विचारों में दृढ़ता हो सकती है, लेकिन मन में हिंसा होना ज़रूरी नहीं। आप किसी समस्या के खिलाफ खड़े हो सकते हैं बिना किसी व्यक्ति के खिलाफ हुए। आप बदलाव की मांग कर सकते हैं बिना नफरत को अपना माध्यम बनाए। एक जीवन जो एक विचार बन गया। भारत सरकार ने भी उनके योगदान को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। लेकिन शायद

इसी पुरस्कार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वो विरासत है जो उन्होंने छोड़ी। उनका सवाल आज भी हमारे सामने है, अगर समाज में कोई समस्या है तो क्या हम केवल शिकायत करेंगे या खुद से पूछेंगे, मैं इसमें अपना छोटा सा योगदान क्या दे सकता हूँ। यही सोच विनोबा भावे को सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं बनाती, बल्कि उन्हें बताती हैं कि हमारे आज के प्रेरणापुंज का हिस्सा। क्योंकि परिवर्तन हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होता, कभी कभी एक विचार से शुरू होता है, और इस विचार को जीवन बना लेने वाले व्यक्ति का नाम था आचार्य विनोबा भावे। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट, और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हम अपने नियरली एंड ऑफ द प्रोग्राम में आपके लिए Q&A सेशन भी लेते हैं और आपको कुछ टिप्स देते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक करें, उस पर आएंगे मगर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम का हमारे Q&A सेशन में क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित होती है। इसका आंसर आप हमारे फोन नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि है 8004926250 पर। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम युववाणी है और हमारी जो ऑडियंस है दैट इज़ वेरी मच यूथ सेंट्रिक, तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे होंगे, वेदर इट इज़ UPSC, NET JRF, SSC, बैंकिंग, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। लेकिन इन सब एग्ज़ाम्स में एक चीज़ कॉमन होती है, कुछ टिप्स कॉमन होती हैं जो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम अंडरएस्टिमेट कर देते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो कर ही लेंगे, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे कॉमन टिप हम ये देना चाहेंगे दोस्तों कि कई बार जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसोर्सेज कलेक्ट कर लें, कि यहाँ से भी पढ़ लें, ये वीडियो भी देख लें, ये PDF भी देख लें और क्लास भी अटेंड कर लें, सब कुछ हम इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन हमको पहले ये ध्यान देना चाहिए कि आप अगर कुछ टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को एक बुक से पढ़िए। कई टॉपिक्स को अगर आप चार जगह से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है और वो कन्फ्यूजन से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हो सकती है वो वीक हो जाएगी। तो आप पहले कुछ स्पेसिफिक मटेरियल लीजिए, स्टिक टू दैट और उसी में कंसिस्टेंट रहिए। इसी से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होगी और वंस योर बेस इज़ रेडी तो आप दूसरे रिसोर्सेज भी गो थ्रू कर सकते हैं एज टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना कि पढ़ लिया हमने सारी चीज़ें हमको याद हैं, लेकिन वो याद हैं हम उसको भी अंडरएस्टिमेट करते हैं, बिकॉज समवेयर जब हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं और जब वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो वो जो छोटी सी चीज़ है ना, तो बस ये याद रह जाता है कि अरे इस जगह पे लिखी थी, ऐसे लिखी थी, लेकिन उसके अंदर था क्या वो नहीं याद रहता। सो थॉरो रिविजन इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि जैसे ही आप रिविजन करते रहते हैं, चीज़ों से गो थ्रू करते रहते हैं, तो वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली भी बैठ जाती हैं एंड यू नो इट बेटर, यू रिवाइज इट बेटर एंड यू रिमेंबर इट बेटर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आपकी जो प्रोग्रेस है दैट इज़ स्टीडी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल मेरा 1 घंटे भी नहीं हो पाया। सो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट देन कंसिस्टेंसी शुड बी योर मिडिल नेम। सो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो बस चलते रहिए, वन टॉपिक एट अ टाइम, वन मॉक टेस्ट एट अ टाइम और वन डे एट अ टाइम, क्योंकि आप अपने गोल से जितना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप दूर हैं, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा उसके करीब हैं।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। रिव्यू देना ना भूलिए हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर और हमारे फोन नंबर 8004926250 पर। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में नई बातों के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की

0: अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीपटेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के द्वितीय सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे 7:31 से। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम होगा। इसमें श्रोता सुनेंगे डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे से घनश्याम सिंह की बातचीत। विषय होगा बाग के व्यावसायिक उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक और कृषि और पशुपालन एक साथ।

विषय पर डॉक्टर राजेश सिंह से अनिल कुमार यादव की बातचीत। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती रात 9:30 होगा। संगीत का खेल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे सुबह 6:35 पर धर्मेंद्र नाथ पांडे से मनोज कुमार सिंह की बातचीत, सह फसली खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर पारितोष मिश्र से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत, मोबाइल की लत में फंसते बच्चे और समाधान। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन सुनवाया जाएगा सुबह 7:30। उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन सुनिए दोपहर 12:15। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शीला धर की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी सुबह 9:50 पर। लोकमाधुरी कार्यक्रम में रचना सरोज और अजय कुमार के गाए लोकगीत सुनिए सुबह 10:05 पर। कृति श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम और हेम श्रीवास्तव के गाए लोकगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30। मानिक चंद पटेल और साथियों के गाए लोकगीत सुनिएगा शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में। सुबह 10:30 हमारे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे नर्मदेश्वर उपाध्याय और रामजी पांडे। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में 12:30। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी नीरजा निषाद से की गई बातचीत, हाथ में मोबाइल और परिवार से दूरी। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 होगा। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर विजय शंकर शर्मा से शैलेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत, दांतों की देखभाल क्यों जरूरी। 7:31 पर प्रोफेसर मुश्ताक अली की वार्ता होगी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता के अंश। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो राम राम। आ घनश्याम भैया, का हाल चाल बा हो खेती किसानी के भैया?
1: हो बैजू भैया, हमार तो हाल चाल निक बा हो, खेती किसानी भी बढ़िया बा। देखत है भैया, बड़ा लहरात पगड़ी ओगड़ी बांध के आज पंचायती में आयल बटा।
0: हे भैया, देखा इस साल ने हम तक कही कि धान जब से लगा बा तब से पानी बरसत जात बा।
1: खूब खूब भैया हो, देखा पहले मनवा तनी उदास हो गेल रहल, लेकिन हो दऊ राजा ऐसा चेतन न कि भाई हो धान का इसमें देखा फसल न
0: बढ़िया
1: हर देखा बैजू एकदम ललहात बा।
0: सही कह भैया, हम कही धान पान केरा ही पानी के चेरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बराबर पानी पाए जात बात भैया लहराबे करे। और जेकर भैया का कहा थी अक्सर लग गया रहा और जल्दी पके वाला रहा, ओकर बालू निकल
1: खूब खूब भैया रेड़ा पर हो ढेर दिखाते।
0: और ऐसे में पानी पड़ा जाता है ना तो भाई बड़ा फायदा होता है जो
1: बिल्कुल।

0: एकदम ललहात बा।
1: सही कह भैया, हम कही धान पान केरा ही पानी के चेरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बराबर पानी पाए जात बात भैया लहराबे करे। आ जेकर भैया का कहा थी अक्सर लग्गा रहा और जल्दी पकई वाला रहा, ओकर बालू निकल रहा।
0: खूब खूब भैया, रेड़ा पर हो ढेर दिखाते हैं।
1: और ऐसे में पानी पड़ा जात है ना, तो भाई बड़ा फायदा होत है जो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अब देखा भैया पानी बरसत बा, मुन एक बात करें कि अपन हमें जो संझा सवेरे देखत रहे किसान भाई, कौनो भी रोग दोख बिरामी लागे तो तुरंत उपचार करें,
0: उपचार करे हो। डाणे मेड़े टहलबा न बैजू।
1: हाँ
0: भैया हो छिटपुट छिटपुट अगर घास वास दिखाए तो तनी से भैया जांगर सकिला के ओके बिन ले।
1: सही खरपतवार रचो देखाए, हालांकि जैसे पानी बरसत बने हमें खरपतवार नहीं हो पावत।
0: बिल्कुल।
1: मुन अगर मान लो जेकरे खेते में पानी नहीं लागत बा तो हमें उगी सकत है।
0: हाँ।
1: मेड़े डांडे जवन बा भैया निकारे जाए और देखभाल कहे जाए तो धान का फसल बढ़िया हो जाए। और भी भाई जवन मक्का खेती की है बटन, ज्वार बाजरा तिल बा उड़द बा, तो ओकर भी देखभाल करत रहें। या साग सब्जी में कोनो खेती किए हुए भाई, लौकी बा भिंडी बा बरसात वाली सब्जी जवन भी हो, तो मचान विधि से काफी किसान भाई मचान विधि से बरसात वाली खेती करते हैं सब्जी के।
0: बिल्कुल भैया हो, देखा जैसे अपने देही के अपने कपड़ा लत्ता का ध्यान देव के पड़त है ना, वैसे हो भाई खेती किसानी। ई नहीं कि बीज डाल दिया खेते अब भैया आंख मुन के सूत जा।
1: नहीं भाई, खेती किसानी तो रोज देखे के चीज।
0: बराबर बराबर।
1: तो कहा गया बाढ़ पूत पिता के घर में खेती उपजे अपने,
0: अपने कर्म,
1: कर्म
0: में। हाँ।
1: तो जब तक अपन कर्म ना करब तब तक खेती बढ़िया ना हो।
0: बिल्कुल।
1: हम तो कही भैया हो खेती किसानी में साथे साथे अगर अपन किसान भाई बाग बागवानी भी लगाए बाटें तो अच्छा किसान माना जाते, अगर पशुपालन भी साथ के है बाटें तो।
0: ये वो देखा कहले गल है, समृद्ध हो संपूर्ण किसान वह हो जेके भैया बाग बागवानी हो गोरु चौवा हो। अब भैया हो दोनों टाइम दूध दही हो घरे में।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: हो देखा दूध दही ना रह घर में उदास लगा।
1: ये बात सही कहे, हम तो कही के देखा जोन बाटे ने कही पहले भी कहा जात रहा गोरस हो चाहे रच के। तो भैया हो बाग बागवानी देखा जे अगर लगावे भी चाहत हैं तो बरसात के मौसम लगाए दे तो हरियरान चला आए भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जौन लगा बाटे ओकर देखभाल करें, कोनो जानवर न काटें तो ज्यादा बढ़िया। देखा जे आंवला के बाग लगाए बाटे फलत भी आएगी बाटे तो ओकर भी देखभाल करें।
0: बिल्कुल। और देखा एक चीज हो कि अगर भैया पेड़ बहुत घना हो।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो पानी के भैया देखा दबाव में ना टूट भी जाना।
1: ये बात
0: तो भैया
1: सही।
0: हाँ तो ओकर विरलीकरण जरूर कह दें, छटनी कर लें सावधानी से। भैया हो देखा डार ओकर जो शाखा ना भींगल रहत है तो कमजोरो रहत है।
1: ये बात तो सही कह।
0: तो भैया सावधानी से करे हो, अगर छटनी करे जरूरत है तो लग्गी ओगी बढ़िया बना ले धीरे धीरे के तनी सब पीरर कर दे।
1: हाँ जोन सूखी डाल हो या अनावश्यक हो समझत हो। हाँ। तो कटाई कर दे तो नवा कल्ला निकल।
0: ये अब पानी देखा अगर भैया जड़ पे लगल हो ना तनी माटी ओटी छोप दे।
1: हाँ।
0: से देखा जमीन नरम हो जाते हुलस जात हो
1: भैया हवा चला। हाँ, तो बड़ा बड़ा पेड़ उखड़ जात
0: की गिर जाए।
1: उन्हें बीचन देखा एक बार आंधी आई रही ना कुछ दिन पहले, बड़ा बड़ा पेड़ भैया ऐसे उखाड़ के जना के रख दे।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो भैया हो यहाँ समय तो बराबर पानी बरसा तो जमीन दलदल हो जाता तो हवा चले पर नुकसान होता है। और पहले से माटी गांजे रहा है पेड़ के भैया तो ज्यादा ठीक रहा।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी बात है कि जोन भर पेड़ ओड़ देखे में आवा था आजकल कीड़ा चढ़ के ना ओका नुकसान भी पहुँचाव थे। तो दवाई उवाई जो में लगावे कोई भैया लगा दे तो मोटी पन्नी भी लोग बांध देते हैं जड़ी में तो ना चढ़ पाते कीड़ा जो बढ़ते। तो ये सब का अगर काम करें तो बाग बागवानी बढ़िया रहे भैया। और भैया काका सुनो बा जोन बा है
0: भैया हो देखा रोज की तरह आज अपन पंचायत बहुत भरल पुरल बा। भैया देखा आज जोन है ना गीत गौनाई तो होबे करी हो। राम सुमेर यादव भैया देखते है वो ढोलक मजीरा लेके बैठल बाटन।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन देखा जोन बात किले ना कि बाग के व्यावसायिक उत्पादन के वैज्ञानिक तकनीक का हो, यहू पर भैया डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे भैया से जानकारी लोल जाए। आ एक देखा बत कही और बहो कि कृषि और पशुपालन एक साथ है पर डॉक्टर राजेश सिंह भैया जका को बत कही करी है। लेकिन तो हम देखा यह कहब कि राम सुमेर यादव उनके संगातिन भैया का तनी ढोलक ओलक बाजे।
1: हाँ एक बार मनसाहीन हो जाए जीवन।
0: सुनाओ भैया
1: सुनाओ।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: घनश्याम भैया, ये राम सुमेर यादव संघातिन गौने किसान भाई,
4: खूब भैया, खूब भैया,
3: और सनेश भी सुन।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
3: देखा हम सब बात बत कही करत रहे भैया, खेती किसानी के साथ बाग बागवानी भी हो चाहे तो भैया हो, बागवानी से काफ़ी फायदा भी होत है। का कहा थी मुन फायदा तभी होत है जब वो का हम वैज्ञानिक तरीका से किया जाए,
4: बिल्कुल। हाँ व्यवसायिक तरीका से हो भैया।
3: आज तक देखा भाई खेती भी व्यवसायिक हो गई बात,
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा ये भाई जो भैया हो, जनसंख्या बढ़त जात बा, कल कारखाना लगत हैं, घर द्वार बनत हैं, धरती तो तने तानी नहीं भाई, यह धरती पर कुल होता।
3: सही
4: तो भैया हो, धीरे धीरे खेती वाला जो जमीन है वो कम तो होबे करी।
3: कम काज करे, 4 बीघा रहा, 2 लड़कियां हो गए, बंटवारा हो गए, 2 बीघा भाव।
4: हाँ, वही
3: में घर द्वार बनवा ले
4: तो भैया हो, कम कम खेत में कौन ऐसा तौर तरीका अपनावे, ये सोचे वाली बात हो कि बढ़िया पैदावार हो और हर तरह के फसल हो।
3: सही कहे भैया, कम से कम पेट भरे के अनाज तो पैदा हो सब।
4: बिल्कुल।
3: तो भैया हो, यही बाग बागवानी में भी बाटे, वहाँ भी वैज्ञानिक तरीका से देखा। अब पहले बाग बगीचा होत रहे, एक एक पेड़ इतना बड़ा बड़ा होत रहे, एक बीघा फैला रहा मुन। अब देखा छोट छोट पेड़ होते हैं, लेकिन ये है कि अब जो ऐसा पेड़ आए गए हैं कि साले भर में फल दे लागत,
4: फल देव लागत है, वो भरपूर देव लागत।
3: हाँ, ओकर दाम भी अच्छा मिलत है।
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया, सुगर सुगर देखा फल हो, खाए में भी बढ़िया भैया हो, बाजार करे में भी देखा जो कहला ना दाम बढ़िया मिलत है।
3: हाँ
4: अब तो ऐसा ऐसा फल बढ़िया चिकन चिकन दिखाना हो कि मुहिम पानी आ जाए।
3: सही कहा। हाँ। भैया तो हम तो कही ना कि अगर जानकार मने से जानकारी लिया जाए तो वही ढंग से खेती हो तो बढ़िया हो।
4: बिल्कुल।
3: तो आज बातचीत की है विषय बाग कि बाग के व्यवसायिक उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है, डॉक्टर शैलेन देव दुबे से। घनश्याम सिंह भैया आपका बात बत कही बा है, किसान भाई एक सुन समझें।
4: बिल्कुल सुनवा दा किसान भाई। देखा अपन जौन खेती किसानी तो आप लोग करबे करते हैं और खेती किसानी से बढ़िया लाभ भी लेते हैं, अब तक तमाम वैज्ञानिक तौर तरीका हो गया कि हम कम लागत से अधिक लाभ भी लेते हैं। हमारे वहीं कुछ बागवान भाई हैं जो कि बाग से अच्छा फलत लेते हैं, अच्छा लाभ लेते हैं। लेकिन किसान भाई बात यह आवत है कि जौन हमार बाग हो, वो बाग के अगर हम समय समय पर सही ढंग से देख रेख करत रहें तो भैया हो, पुरान बाग हो चाहे नया बाग हो, फलत दोनों से बढ़िया लेवल जा सकेला, लाभ भी लेवल जा सकेला। लेकिन किसान भाई जब बाग पुराना हो जाए तो ओकरे के देख रेख में कुछ और विशेष तकनीक विशेष विधि अपनावे के जरूरत पड़त है। तो जौन पुराना बाग हो एके भी हम व्यवसायिक रूप से अपने लाभ में कैसे ले लें, तो ये तरह का तमाम बात आप लोग के जानकारी पहुँचे के चाहिए सब बात इनके। तो आज देखा बाग के व्यवसायिक उत्पादन में वैज्ञानिक तकनीक का हो, वैज्ञानिक तौर तरीका का हो, आज यही के बारे में बात करे खातिर डॉक्टर शैलेन देव दुबे भैया हमारे स्टूडियो में हुए। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत भाई। डॉक्टर साहब बात

0: होता कि बाग तो दो तरह से, एक नया बाग एक पुराना बाग। पुराना बाग में फलत जब कम होए लगेला तो जो अपन बागवान भाई हैं ओके उपेक्षित भी कह देना,
1: जी
0: वो पौधन के वो पेड़न के हटाओ के भी प्रयास करेना। लेकिन अब तो आप लोग जैसे समय समय पर सलाह भी देते हैं कि अगर थोड़ा सा भी वैज्ञानिक तकनीक अपना लें तो उसे भी अच्छी आमद उनके हो सकल है।
1: जी
0: तो पुराना बाग के व्यावसायिक रूप से लाभ ले बदे किसान भाई प्रारंभिक स्तर पे क्या करें?
1: देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आपका बाग 25-30 वर्ष जब पुराना हो जाता है
0: जी
1: तो वो बाग जो है अनुत्पादक हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: 3 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक बाग बहुत अच्छी फल देता है, जिससे आपको आमदनी प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद सनई सनई आम के बाग के उत्पादन घटने
0: जी
1: लगता
0: जी
1: है। तो इसके लिए तथा शाखाएं एक दूसरे से आपस में मिलने लगती हैं, जिससे उस बाग में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यदि हम इसको इससे अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक विधि से अगर कुछ हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमारी बाग हमेशा अच्छी उत्पादकता में बनी
0: तो
1: रहेगी।
0: कौन कौन विधि है डॉक्टर साहब जो उनके अपनावा?
1: वर्तमान समय में यदि हमारे बाग पुराने हो गए हैं तो उसमें खरपतवार उगाते हैं, उसकी गहरी जुताई कर देनी
0: जी
1: चाहिए। गहरी जुताई कर देने से उसके अंदर जो हमारे हानिकारक कीड़े मकोड़े अपना आवास खरपतवार के अंदर बना रहे हैं वो नष्ट हो जाते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तथा जो पोषण की मात्रा, पोषण प्रबंधन की जो मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, वर्मी कंपोस्ट अथवा गोबर की कंपोस्ट की जो हमको मात्रा देनी है, आधी मात्रा उसको हम इसी समय पर देते हैं। आधी
0: अच्छा
1: मात्रा फरवरी मार्च में देते हैं
0: जी
1: तथा आधी मात्रा इस समय देते हैं।
0: जी जी
1: यदि किसान भाई इस समय जो 50% की मात्रा देनी है, आधी मात्रा देनी है, जुताई करके उसमें पोषण प्रबंधन कर दें तो हमारा बाग जो है वो उसमें फलत अच्छी आएगी।
0: अच्छा तो अगर किसान भाई इस तरह से देखा जैसे कि डॉक्टर साहब बताओ थे, अगर इस तरह से आप लोग देख रेख कर लेते तो पुराने बाग से भी अच्छा लाभ हो सकेला। डॉक्टर साहब जैसे बात यह होता कि बाग हमारे किसान भाई जो लगोले हों जो पुराना बाग हो तो ओकरे नीचे जो जमीन हो वो जमीन का भी कुछ और लाभ बदे उपयोग करें चाहें, या का कौन ऐसा भी तरीका हो कि बड़ा अगर बाग हो उमन पेड़ बड़ा बड़ा है तो छोटे आकार के पेड़ का भी उमन वो नया लगा के ले सकने लाभ?
1: जी,
0: जी
1: अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के लिए किसान भाइयों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा
0: जी
1: कि किसान की आय चौगुनी दुगुनी कैसे हो, ये केवल प्रोडक्शन बढ़ाने से, लागत बढ़ाने से नहीं हो सकता।
0: जी जी
1: लागत को हम कम करें तभी हमारी आय बढ़ेगी। इसका सबसे बाग के विषय में सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है इंटरक्रॉपिंग, अंतर शस्य क्रियाएं।
0: बिल्कुल
1: परवर की खेती 15 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच में जो परवर लग जाता है उसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा यदि हम आप यह पपीता रोपना चाह रहे हैं तो बरसात का अब मध्य चल रहा है, इसके बाद बरसात खत्म होगी तो हम पपीता की बेरन भी डाल सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: टमाटर बैंगन ले सकते हैं, हरा सागा प्याज बीच बीच में लगा सकते हैं।
0: अच्छा
1: जैसे आम की बाग है, आम 15 दिसंबर के बाद उसमें फल आना शुरू होगा, इस बीच उस जगह को अगर हमको उपयोग में करना है, प्रति इकाई से अधिक उत्पादन लेना है तो हमको अंतर शस्य क्रियाएं करनी पड़ेंगी।
0: यह बात है कि किसान भाई देखा कि अगर आप लोग अपने बाग में अतिरिक्त लाभ लेना चाहते हैं तो तमाम तरह के जैसे डॉक्टर साहब सुझाव देना है कि परवल का भी आप खेती कैसे कला और तमाम भी इस तरह का खेती आप करके उसे लाभ ले सकते हैं तो बिल्कुल लग जाए चाहिए। और जैसे समय सीमा भी बताते हैं कि एकदम बिल्कुल समय चलत हो अब कि अब आप बिल्कुल सजग हो के वो तरह का लाभ लें। डॉक्टर साहब बाग में एक जैसे कि आप बताना कि लागत कम करें और उसे आमदनी अच्छा हो, हर किसान हर व्यक्ति यही चाहला चाहे कोनो व्यवसाय है को चाहे कोनो धंधा हो। बाग में एक खर्च सिंचाई के भी हो, सिंचाई पेड़ का अगर करत हैं तो पूरी पानी बाग में डुबावें तो पेड़ पानी पावे, कौनो ऐसा तरीका जो उनकी पानी का सही उपयोग हो और हम पेड़ के पानी दे सकें?
1: जी,
0: जी
1: जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि पानी ही जिंदगानी है, अगर सही

0: सही रूप से पानी पौधों को मिल रहा है तो उसमें फलत अच्छी होगी, फ्लावर अच्छे, पुष्प अच्छे आएंगे, तभी उत्पादन अच्छा होगा। इस समय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है,
1: जी
0: जिसमें जो लघु अथवा सीमांत कृषक हैं, कहने का मतलब जिन किसान भाई के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, उनको सरकार 90% अनुदान पर ड्रिप
1: वाह भाई
0: इरिगेशन
1: वाह वाह।
0: लगवा रही है। ड्रिप का मतलब है कि ड्राप, बूंद बूंद सिंचाई, पौधों के जड़ तक पानी पहुंचता है, तथा आप एक बार लगवा लेते हैं तो 10 से 15 साल तक इसका उपयोग कर सकते
1: यह
0: हैं।
1: बात है तब एक तरह से पानी का भी बचत हो जाए और जो अनावश्यक खर्चा हो वो भी बचे। हम तो समझे थे किसान भाई, देखा अगर आप लोग बाग में पेड़ के पास पानी देवा तो जो बेवजह खर पतवार भी उगते मन भी कमी आ जाए।
0: जी जी
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जब आंधी बौखा के समय होता है, अब तो धीरे धीरे समय निकल गया है, बहुत सघन बाग हो पुराना तो उमन भी समस्या आवत है कि भाई पेड़ पेड़ से टकराए तो उमन पेड़ के भी नुकसान हो। ये तरह से अगर वो प्रारंभिक स्तर से तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एक तरह से कटाई छटाई के बात आता है, तो वो सही वक्त उनके कार रहते हैं और कौने समय अगर ऊपर कटाई छटाई करें तो इससे जो वृक्ष का पेड़ के नुकसान हो वो बच सकते हैं।
0: जी अक्टूबर नवंबर का महीना,
1: जी
0: जैसे हम मनुष्यों में ठंडी में ऑपरेशन किया जाता है सबसे सफल रहता है,
1: जी
0: उसी तरह पौधों में भी अक्टूबर दिसंबर और जनवरी के महीने में इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए।
1: जी जी
0: 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पूरा टॉप वर्किंग कर देना चाहिए। 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पूरा टॉप वर्किंग कर देना चाहिए। फिर बगल से कल्ले निकलेंगे, उन कल्लों का मैनेजमेंट करना चाहिए। और हमारा एक आदर्श जो पौधा है वो छतरी के समान होना चाहिए। जैसे
1: बिल्कुल
0: बरसात के
1: बिल्कुल
0: समय आप छाता लेके निकलते हैं, पानी आपके ऊपर नहीं पड़ता, उसी तरह वृक्ष की हर शाखाओं को अच्छा प्रकाश, अच्छा हवा मिलना चाहिए, तभी उसमें फलत अच्छी
1: बिल्कुल
0: होगी।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात बताना है कि बाग के व्यावसायिक उत्पादन में वैज्ञानिक तकनीक किसान कैसे अपनावे। आपकी जानकारी देव खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
1: हाँ
2: घनश्याम
1: भैया,
2: भैया, हम कही देखा ये बात बस कही किसान भाई सुनन, बाग के व्यावसायिक उत्पादन की वैज्ञानिक
1: बिल्कुल
2: तकनीक
1: बिल्कुल
2: पे
1: बिल्कुल
2: डॉक्टर
1: बिल्कुल
2: शैलेंद्र देव दुबे से घनश्याम भैया बात बत कही की है। हम कही किसान भाई सुनन तो गुने अपने बाग बागवानी करत हों या खाली जमीन हो तो यही हिसाब से ओकर उपयोग करें, जरूर फायदा होए। अब बात सिंचाई के चलत रही कि भाई देखा आजकल तो बारिश हो तो मान लो सिंचाई को उतना नहीं ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखा जब रबी की खेती करे के हो या गर्मी में देखे महत भाई सिंचाई के बड़ा दिक्कत होत है। अपने ही यहाँ काफ़ी क्षेत्र असिंचित क्षेत्र भी बाटे हैं,
1: बिल्कुल
2: तो ये सब देखते हुए खास करके पानी के बचत बहुत जरूरी बाटे है। हाँ हम तो कही भाई पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं
1: बिल्कुल
2: कहा।
1: बिल्कुल
2: हाँ
1: भाई जो भैया,
2: तो पानी के बचत जरूरी बा, देखे में आवत पहले परंपरागत जो सिंचाई होत रही पानी हमें काफ़ी बर्बाद भी होत रहा है।
1: हाँ
2: हाँ पता चली मशीन खोल दहन यहाँ बहत बा वहाँ बहत बा।
1: भैया, नाली से देखा उस समय बैजू सिंचाई होत रहे, लंबी दूरी तक जाए में हो भैया, कबो कबो तो ऐसा रहे कि खेते तक पानी पहुँचबे न करे, लाइट से बिजली कट जाए, तो भैया फिर से वह काम दोहराओ के पड़े।
2: दोहरावे बीच बीच में चूहा जोन बाटे मोड़े
1: हाँ
2: रहा
1: भैया
2: भैया
1: भैया, का खेते में पानी पहुंचत नहीं बा, दूसर के खेत में
2: चला
1: डूब
2: जात
1: जाता।
2: और का जरूरत ना है तब ओकर नुकसान होत
1: ये
2: भैया।
1: बैजू देखा भैया, ये सब समय समय के बात रह लो। अब भैया सिंचाई के जोन तौर तरीका हो ना बहुत बदल गया।
2: सही कहत हम कही भैया अब आधुनिक सिंचाई विधि वैज्ञानिक भरे ढूंढ रहे यहाँ अपन सरकार योजना भी चलाए
1: तमाम तरह
2: प्रधानमंत्री।
1: के,
2: हाँ
1: तमाम तरह के
2: प्रधानमंत्री
1: भैया,
2: कृषि सिंचाई योजना में तो पहला तो भैया हो किसान भाई इनके खेत में हरियाली आवे, उनके ज़िंदगी में खुशहाली आवे, ये मकसद बा। साथे साथे जौन असिंचित क्षेत्र हैं उस सिंचाई के उत्था में आवे जौन बाटे है, एकरे लिए काफ़ी अनुदान भी दिया जात खास करके टपक सिंचाई विधि हैं। तो यह सब जितनी भी आधुनिक सिंचाई विधि हैं स्प्रिंकलर वाली जो छिड़काव करत हैं मशीन है पे
1: भैया
2: अनुदान भी
1: बिल्कुल
2: मिलत है।
1: फुहारा
2: हाँ और
1: फुहारा की
2: सब
1: तरह भैया, वो पानी का कम से कम उपयोग होत बा, पर्याप्त जो ना पौधन के मिल भी जात
2: मिल
1: हो।
2: भी जात बा तो अपन किसान भाई ने फायदा लें या कर पानी के बचत करें।
1: बिल्कुल
2: हाँ
1: बिल्कुल
2: देखे में आवत कितना जने तो भैया हो नहाए के बहे ना तब वो मशीन खोल लेन, एक बाल्टी की जरूरत बा तो 20 बाल्टी खराब होत बा।
1: नहीं भाई, देखा हो चाहे गांव हो बैजू चाहे शहर भैया हो, ये गांव का भैया खेती किसानी में तो देखा बिना ओकरे पानी के बिना खेती संभव नहीं हो
2: ना
1: है।
2: ना ना
1: अब बारिश के समय में भैया हो कोशिश करा

0: कि देखा जौन पानी हो ये भैया तालाब पोखर में इकट्ठा करा,
1: बचत कर,
0: हाँ बचत करा, धरती के अंदर पानी अधिक से अधिक जाए ताकि जरूरत पड़े पे भैया ओकर हम उपयोग कर सके।
1: जल संरक्षण बहुत जरूरी है, बारिश के पानी ही संरक्षित कर सके थे हम सब। देखे में आवत कोनो कोनो क्षेत्र ऐसा है गर्मी में पिए के पानी नहीं
0: मिलत, बिल्कुल
1: नल जौन बाटे छोड़ दे तो पानी नहीं आवत हमें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जल स्तर नीचे चला जात बा। अगर जौन बारिश होत बा एक हिसाब से तालाब पोखरा पहले तो बहुत राहत रहन भाई, अब देखा लोग पाट ले हैं तो अब भी वो का जीर्णोद्धार कर के हमें पानी रोका जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ
0: बिल्कुल
1: भाई, चिड़ई चिरोमन पशु को पानी के पिए मिल जाए था, साथे साथे हमारे जमीन का जल स्तर जो धर पाटे वो बना रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भैया हो खेती किसानी के बात चलत बात, खेती तो किसान भाई करते हैं, अगर दोनों एक साथ जैसे पशुपालन कृषि एक साथ
0: भैया बिल्कुल
1: तो एक साथ कैसे हो, यह पे भी जानकारी बा जोन बाटे किसान भाई के लिए। तो कृषि और पशुपालन एक साथ डॉक्टर राजेश सिंह से अनिल कुमार यादव बात बत कही भाई, वे किसान भाई का सुने।
0: बिल्कुल सुनवा दा।
2: देखा भैया, खेती किसानी में किसान भैया हरे धान और ये समय जो है खरीफ में मक्का है, ज्वार है, बाजरा, ये सब के खेती करे हैं। मूला खेती किसानी में का समस्या आवत है और का उनका जो है करे के चाही, समय से बुआई करे के चाही, समय से जुताई करे के चाही, ये सब के बातन के जो है जानकारी देवे बदे आज हमारे बीचे में डॉक्टर राजेश सिंह भैया आए हैं जौन की प्राध्यापक हैं सुवार्ष प्रयागराज। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब ये बतावें हमारे किसान भाई हरेन के कि कृषि एवं पशुपालन ई का बाटे जौन है, एकर आपस में का संबंध बाटे जौन है, हमारे किसान भैया हरेन बदे जौन है एकरे विषय में आप बतावें।
3: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली आज जो है किसान भाइयों को आज कृषि केवल एक जीविकोपार्जन का एक साधन नहीं रह गया है
2: जी।
3: ये एक व्यवसाय के रूप में जो विकसित हो रहा है, और खेती किसानी के साथ साथ अगर हमारे किसान भाई पशुपालन है, मुर्गी पालन है, सूकर पालन है, वर्मी कंपोस्टिंग है इत्यादि का भी व्यवसाय किसान भाई करते हैं तो उनकी आय दोगुना भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर कभी मौसम की मार पड़ती है जिससे हमारा जो है खेती किसानी अच्छी नहीं चलती
2: जी,
3: तो हमारे किसान भाइयों का खर्च भी निकलता है और उनको एक साधन मिलता है जिससे जीविकोपार्जन उनका चल सकता है।
2: बिल्कुल सही।
3: तो बिल्कुल। इसके साथ साथ पशुपालन करने से जैसे देखिए इसमें जो आपका कृषि से जो आपका अवशेष बचता है
2: जी जी,
3: उसको चारा के तौर पर आप पशुपालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पशुओं का जो गोबर होता है उससे आप बायोगैस बना सकते हैं
2: जी जी,
3: और उसके उपरांत जो बायोगैस के बाद जो आपका स्लरी बचता है या अवशेष बचता है
2: जी जी,
3: उसको आप वर्मी कंपोस्टिंग जो केचुआ की खाद होती है
2: जी जी,
3: उसमें उसका उपयोग में ले सकते हैं, और फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट तो मिलेगा ही उससे, केचुआ की खाद तो मिलेगी, साथ में वर्मी वॉश भी मिलेगा, और हमारे किसान भाई केचुए भी बेच सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो वर्मी कंपोस्ट जो बनेगा उसको अगर आप खेत में डालते हैं तो उससे आपका जो है जीवांश खाद की तरह काम करता है, और उसमें लगभग 17 आवश्यक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे ये फर्टिलाइजर्स में उर्वरक में नहीं मिलते हैं
2: जी जी जी।
3: तो ये हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें जो जैसे हमारे किसान भाई अगर सिर्फ खेती करते हैं तो उनको सिर्फ एक फसल ही मिलती है
2: जी।
3: लेकिन इसमें आप जो है फसलों के साथ साथ आपको दूध भी मिलेगा, उसके बाद फिर बायोगैस भी मिलेगी जिससे आप खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है उसको बिजली बनाने के भी उपयोग ले सकते हैं, फिर वर्मी कंपोस्ट मिलता है, वर्मी वॉश मिलता है, और आपको केचुए भी अपने आस पड़ोस में किसान भाइयों को आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं
2: जी जी।
3: और मतलब इससे क्या हुआ कि आपका डाइवर्सिफाई हो गया, आपका पैसा बहुत जगह से आपको मिलने लग गया, साथ ही साथ आपकी लागत कम हो गई
2: जी जी,
3: क्योंकि आपका जो एक चीज का अवशेष बच रहा है उसको आप इनपुट के तौर पर दूसरे व्यवसाय में यूज कर सकते हैं
2: जी जी।
3: तो आपका जो है कुछ बर्बाद भी नहीं हो रहा, और साथ ही साथ आपको कई जगह से आपको आय मिल रही है जिससे अगर मान लीजिए मौसम अच्छा नहीं रहता और हमारे किसान भाइयों को कुछ नुकसान होने की चांसेस होती हैं तो उसमें और जगह से उनको पैसा मिल जाता है और उनका घर का खर्च चल जाता है
2: जी जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं कि खेती के साथ साथ बारी कहा गब कि खेती के साथ साथ पशुपालन जरूरी बात है। मूला एक बात आवत है कि जैसे ये समय जो है ये खरीफ के सीजन चलत है, किसान भैया हरे धान के खेती करे हैं, धान लग भी चुका है, अब धान के फसल में का का समस्या आवत है, ऐसे कैसे जोन है, कौन कौन समस्या आवत है एकरे बारे में आप बतावें।
3: देखें इस समय धान की

0: रोपाई के लगभग 25 से 30 दिन हो चुके होंगे,
1: जी
0: और इसमें जो अधिक उपज वाली फसल है उसमें लगभग 30 किलोग्राम नत्रोजन या 65 किलोग्राम यूरिया, और जो सुगंधित प्रजातियां हैं जिसका उपज कुछ कम होती है उसमें 15 किलोग्राम नत्रोजन या 33 किलोग्राम यूरिया की
1: जी जी
0: टॉप ड्रेसिंग कर दें, और नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 50 से 55 दिन बाद करनी चाहिए।
1: जी जी
0: और ये भी ध्यान दें, टॉप ड्रेसिंग के पूर्व खरपतवार निकाल दें तथा टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से पानी ज़्यादा न रहे।
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: तो होता क्या है कि मान लीजिए बरसात भी हो गई तो
1: जी
0: आपकी वो जो है यूरिया पानी के साथ बह जाएगी,
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और वो जो है खरपतवार को मिलेगा।
1: जी जी
0: ठीक है, उसके बाद खैरा रोग अगर हमारे किसान भाइयों को खेत में दिख रहा है
1: जी जी
0: तो उसके रोकथाम के लिए आपको जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या 4 बड़े बीघे में उसको मिला दें 2.5 किलोग्राम चूना के साथ, बुझा हुआ चूना जो होता है,
1: जी जी
0: ढाई
1: जी
0: किलोग्राम चूना में मिला करके 1000 लीटर पानी में डाल करके उसको अगर स्प्रे कर देंगे तो उससे हमारे खैरा रोग की बचत होगी। और साथ साथ इसमें कई बार तना छेदक कीट भी देखा गया है,
1: जी जी जी
0: उसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोग्रामा, ये एक परजीवी आती है
1: जी जी जी
0: जो कि 8 से 10 दिन के अंतराल पर छोड़ देने से इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा और इससे आपका जो है ये फली छेदक कीट का कंट्रोल हो जाएगा, या किसी कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और धान की फसल से अधिक उपज लेने के लिए खेत में हमेशा पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है, ये
1: जी
0: पहले की भ्रांति थी कि पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, जब उसमें दाना भरने की अवस्था होती है या जब उसमें फूल आते हैं उसके बाद पानी भरना अच्छा है, लेकिन उससे पहले आप जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पे अगर बारिश नहीं होती तो उसमें सिंचाई करेंगे तब भी आपकी उपज ज़्यादा अच्छी
1: जी
0: मिलेगी।
1: जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, एक बात आवत है कि जोन है किसान भाई हर एक कुछ जैसे यूरिया का आप ट्रॉप ड्रेसिंग की बात करत
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो कुछ किसान भाई हरे हैं जोन ओके सीधे जोन है खेत में छिड़क देते हैं, तो हमन ट्रॉप ड्रेसिंग और ये जोन छिड़काव कर देते हैं सीधा यूरिया बिना घोल बनाए के, हमन का अंतर बे एक थोड़ा सा
0: नहीं,
1: बतावें।
0: देखें यूरिया को तो नॉर्मली टॉप ड्रेसिंग ही की जाती है,
1: जी जी
0: और उसमें ये जो है ये है कि आपका जब आप टॉप ड्रेसिंग करें तो ये ध्यान दें कि धूप में, मतलब सुबह करना चाहिए नहीं शाम को करना चाहिए,
1: जी जी
0: धूप में नहीं करना चाहिए नहीं तो वाष्पीकरण हो जाता है, हमारे पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको यूरिया डालें तो ये ध्यान दें नमी होनी चाहिए खेत में, ताकि यूरिया उसके साथ मिक्स होके मिट्टी में जा सके अंदर,
1: जी जी
0: तो इसलिए नमी भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। और कोई भी उर्वरक डालें या जो है पेस्टिसाइड डालें तो उसको आप सुबह या शाम को करें,
1: जी जी जी
0: दिन में ना करें।
1: जी जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, अब बात आवत है खरीफ में फसल बा मक्का, और मक्का का अगर खेती किसान भाई ये देख करे हैं इसमें बुआई करे हैं, तो हमें का का सावधानी किसान भैया हरेन के बरते चाहिए, का कैसे ओकर देख रेख करें, का हमन खरपतवार का रोग बीमारी लागत है, एकरे बारे में बतावें थोड़ा सा।
0: देखें मक्का में इस समय क्या है कि नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लगभग 87 किलोग्राम यूरिया या 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए,
1: जी
0: जो
1: जी
0: कि अभी इस समय नरमंजरी निकलने का समय हो रहा है, तो इस समय तो आपका खरपतवार नहीं आएगा क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पत्तियां घनी होती हैं,
1: जी जी जी
0: तो इसलिए नरमंजरी के समय आप जो है एक जो आखिरी टॉप ड्रेसिंग करनी है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की वो कर लें, और ध्यान रहे कि खेत में उर्वरक प्रयोग करते समय पर्याप्त नमी रहे ताकि वो मिट्टी में अंदर जा सके यूरिया उसके मिक्स होकर के, और साथ में फसल में नरमंजरी व बाली बनते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए,
1: जी
0: अन्यथा उपज में 50% तक गिरावट देखी गई है।
1: जी जी
0: और ये जो है इसमें एक चीज और ये ध्यान देना है कि आपका इसमें जो है, मतलब आपका उर्वरक डालते समय या वही चीज सुबह या शाम को डालें
1: जी जी
0: और दिन में ना डालें, उसमें जब धूप की आपको वो लगे और जब बारिश की संभावना हो उस समय ना डालें।
1: जी जी
0: जी
1: किसान भाई जैसे कि मक्का की फसल जब उमन नरमंजरी बनत है तो ओका यूरिया जोन हमें डालत है जड़ के पास जोन डालत है,
0: जी
1: और कुछ किसान भाई हरे ओका छींट देते हैं, तो इनमें दोनों का अंतर वे कौन तरीका अपनावे किसान भाई के जोन उनका फायदा हुए, एकरे बारे में बताओ
0: नहीं,
1: थोड़ा सा।
0: देखें जड़ के पास ही डालने को कहा गया है ताकि
1: जी जी
0: हमारे पौधों को मिल सके, छींट देने से तो हमारा अगर खरपतवार होंगे तो उनको भी मिल जाएगा,
1: बिल्कुल
0: तो जड़ के
1: बिल्कुल
0: पास पास ही नजदीक डाला जाता है।
1: जी जी जी
0: और आजकल तो नैनो यूरिया का भी स्प्रे करते हैं 4 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके, वो
1: जी जी
0: भी
1: जी
0: अच्छा पाया गया है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है।
1: जी जी डॉक्टर

0: दूसर फसल खरीफ के आवत है कि ज्वार। अब ज्वार के फसल के जौन खेती किसान भाई हरे करे हैं उमन का समस्या आवत है, एक बारे में थोड़ा सा बता
1: देखें,
0: दो।
1: ज्वार की फसल में हमारे किसान भाई लगा चुके होंगे,
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: विरलीकरण कर लें, उसको जो है लाइन में पौधों के अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी बना दें ताकि उसमें एक दूसरे से कंपटीशन ना हो। और दूसरी बात, संकर व उन्नत प्रजातियां हैं उनमें जो है विरलीकरण के बाद आपको प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी,
0: जी
1: डालना पड़ेगा। वही छिटकवा विधि से, वो जो टॉप ड्रेसिंग होती है,
0: जी जी
1: वो या तो आप 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन या वही चीज़ है 108 से 130 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, मतलब चार
0: जी
1: बड़े बीघे के लिए बता रहे हैं,
0: जी जी
1: कि दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग बुआई के 30 से 35 दिन के बाद कर लें।
0: जी जी
1: जी
0: खरीफ में डॉक्टर साहब और फसल आवत हैं जैसे उर्द मूंग के भी बुआई किसान भाई हरे हर करे हैं, एमन का समस्या आवत है, एक किसान भाई फसल के कैसे देख रेख करें एक बारे में बताऊं।
1: देखें, इसमें तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें,
0: जी जी
1: और इसमें एक पीला मोज़ेक रोग लगता है
0: जी जी जी
1: जो कि ये वायरस से लगता है, लेकिन इसको फैलाने के लिए जो सफ़ेद मक्खी होती है वो जिम्मेदार होती है।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एक कीटनाशक जैसे डाईमिथुवेट 30 EC है या मिथाइल ओ डेमेटान 25 EC है,
0: जी जी जी
1: इसको 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति 1 हेक्टेयर, मतलब 4 बड़े बीघे के लिए, आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पे 3 से 4 स्प्रे कर लेंगे,
0: जी जी
1: छिड़काव कर देंगे, तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब और फसल आवत हैं जैसे सूरजमुखी है
1: जी
0: और
1: मूंगफली,
0: सोयाबीन है, एमन किसान भाई हरे का करें जो है कैसे फसल के अपन देख रेख करें, एमन कौन सा खरपतवार कौन रोग बीमारी लागत हैं एकरे बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: देखें सोयाबीन में तो फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई करके खरपतवार निकाल दें,
0: जी जी
1: और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी निराई भी बुआई के 40-45 दिन के अंतराल पे कर लें।
0: जी जी
1: और सोयाबीन में भी पीला मोज़ेक बीमारी, ये जो है वायरल्स वायरस से होता है, तो इसके भी फैलाव सफ़ेद मक्खी से ही होता है,
0: जी जी
1: तो इसकी रोकथाम के लिए भी डाईमिथुवेट या मिथाइल ओडेमेटान का आप स्प्रे कर सकते हैं जैसे वो बताया गया था उसमें। और मूंगफली की फसल में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 35 से 40 दिन के बाद कर लें, साथ ही साथ मिट्टी भी चढ़ा दें। और मूंगफली में टिक्का बीमारी एक देखी गई है जिसमें पत्तियों पर भूरे भूरे गोल धब्बे बन जाते हैं,
0: जी जी जी
1: इनकी ये फफूंदी जनित बीमारी है, इनकी रोकथाम के लिए जिंक मैंगनीज कार्बोमेट 20 किलोग्राम या जिनेब एक दवा आती है,
0: जी जी
1: फफूंदी नाशक दवा है जिनेब, 75% का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के लिए आप 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव कर दें, इससे बचत हो जाएगी।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब आवत है दूसर फसल जो है सूरजमुखी है और गन्ना है, एहमन का समस्या आवत है एकरे बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: देखें, सूरजमुखी में अब बुआई के 15 से 20 दिन बाद ये जो फालतू पौधों को निकाल कर लाइन में पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर बना लें ताकि उनमें बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो,
0: जी जी
1: और फसल बुआई के 40 से 45 दिन के बाद दूसरी निराई गड़ाई करने के साथ ही 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे उसको जो है हवा चलेगी या बारिश होगी तो उसको थोड़ा सा मजबूती मिलेगी।
0: जी जी
1: और सूरजमुखी की बुआई के 25 से 30 दिन बाद खड़ी फसल में प्रति हेक्टेयर की दर से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो कि लगभग 87 किलोग्राम यूरिया होता है,
0: जी जी
1: उसकी टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। और इसमें जैसे गन्ने में भी कुछ हमारे किसान भाई लगाए होंगे, तो गन्ने को बांधने का कार्य इस माह में अवश्य कर लें, क्योंकि पानी बरसता है, हवा चलती है, तो उससे हमारे गन्ने लटक सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: इस समय गन्ने की लंबाई लगभग 2 मीटर हो चुकी होगी, तो ध्यान रखना है कि बांधते समय हरी पत्तियों के समूह को एक साथ न बांधें, हेर फेर करके ऑपोजिट वाले पौधे के साथ बांधें,
0: जी
1: उससे
0: जी
1: हमारे पौधे झुकेंगे नहीं।
0: जी जी डॉक्टर साहब जैसे ये बात रही कि खेती के साथ साथ बारी, तो खेती के साथ साथ किसान भाई इनके पशुपालन करब बहुत जरूरी बा, काहे से कि अपने माटी के जौन संरचना बा वो रासायनिक उर्वरक से दिन ब दिन जौन है खराब हो जात बा, तो पशुपालन किसान भाई अरे करी हैं तो उनका जौन है माटी की संरचना उसे जौन भी गोबर खाद मिलत है ओके डली हैं तो उनके माटी की संरचना सुधार हो सकत है, तो डॉक्टर साहब ये पशुपालन और खेती के एक थोड़ा सा बारे में किसान भैया इनके बताऊं।
1: देखें, इसमें पशुपालन में नए आए हुए पशु हैं तथा जो आपके पुराने पशु भी हैं
0: जी जी
1: उनमें गला घोंटू का टीका लगवा लें। गला
0: जी
1: घोंटू
0: जी
1: एक बड़ी बीमारी है जो लगती है, तो उसका टीका लगवा लें। साथ में लिवर फ्लूक नाम का एक परजीवी होता है, अंदर होता है, उसके लिए भी दवा पिला दें। और नवजात बच्चों को कोलेस्ट्रम जो होता है, जो खीस कहते हैं,
0: जी जी
1: उसको अवश्य दें, उससे जो है बीमारी रोध

0: क्षमता आएगी बच्चों में।
1: जी जी
0: साथ में गर्भित पशु की उचित देखभाल करें तथा पौष्टिक चारा दें और पशुशाला को साफ सुथरा रखें व सूखा रखें। इस समय सूखा रखना अति आवश्यक है, पानी का जमाव ना होने दें।
1: जी
0: मच्छरों से बचाव के लिए पशुशाला के पास नीम की पत्ती का धुआं करें जिससे मच्छर ना लगे हमारे पशुओं को। साथ ही साथ बाहर परजीवी के लिए दवा लगाएं।
1: जी जी जी
0: और कुछ हमारे किसान भाई मुर्गी पालन भी करते हैं,
1: जी जी जी जी
0: तो इसमें इस समय अंडे के लिए नए चूजे द्वारा मुर्गियां पालन के लिए तो यह समय उपयुक्त नहीं है, बरसात का समय, परंतु ब्रॉयलर के लिए मुर्गियां पालें। और मुर्गी के पेट में कीड़ों को मारने के लिए डीवॉर्मिंग की दवा दें।
1: जी जी
0: साथ ही
1: जी
0: मुर्गी खाने को सूखा रखें, सूखा रखना अति आवश्यक है, तथा बिछावन को पलटते रहें ताकि सूख सके। और दूसरी बात, मुर्गी खाने में अधिक नमी हो आपको दिखे तो पंखा चलाएं,
1: जी जी जी
0: और साथ ही साथ पानी को क्लोरीनेशन करके अवश्य यूज़ करें। और आपने देखा होगा वहाँ पे, जैसे जहाँ से आपका दरवाज़ा है पशु ये जो मुर्गी पालन
1: जी
0: वाले
1: जी जी
0: उसमें जाने के लिए,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें चूना रखें दरवाजे पे,
1: जी जी
0: ताकि
1: जी
0: पैर में चूना लगने से वो आपके जो है जो वो होता है वो भी एक तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो
1: जी जी
0: चूना
1: जी
0: अवश्य रखें
1: जी जी जी
0: ताकि पैर में चूना लगा के ही आदमी अंदर जाए।
1: जी जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आप जो है बहुत बढ़िया बताए हमारे किसान भाई हरन की, चाहे किसान भाई जिसे पशुपालन भी करें ना, उनका का समस्या हुआ था, उन कौन रोग बीमारी लागत है, और मुर्गी पालन अगर किसान भाई हरे करें खेती किसानी के साथ साथ, तो हम का समस्या हुआ था और कैसे उसे निजात पाई जा सके। डॉक्टर साहब, हम चले चले ये जाने चाहब कि हमारे किसान भाई हरन के जिसे खेती किसानी करते हैं और का समस्या आ सकत है, ओकरे बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: देखें, इसमें क्या है कि आपका जो है थोड़ा सा, जैसे शुरुआत में हो सकता है आपको जो है वो हो, लेकिन ये जरूर है कि आप जो जैसे व्यवसाय चुने
1: जी जी
0: वो रिलेटेड व्यवसाय ही होने चाहिए। ऐसा व्यवसाय ना
1: खेती
0: हो,
1: किसानी से
0: हाँ, खेती किसानी से रिलेटेड व्यवसाय ही हो, ताकि आपको उसमें अतिरिक्त व्यय न करना पड़े।
1: जी जी जी
0: और इसके साथ साथ, जैसे जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसके साथ साथ आप जो है मशरूम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं।
1: जी जी जी
0: मशरूम से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, और जो है एक छोटे से एरिया में ही, एक छोटे से कमरे में मशरूम पालन किया जा सकता है।
1: जी जी जी
0: तो मतलब ये जो आप इसको करें, और अगर उसको सही ढंग से, जैसे अगर आप गोबर की खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते हैं,
1: जी
0: उससे अच्छा अगर आप बायोगैस बना करके उसका इस्तेमाल करें, तो बायोगैस से ना केवल आपको गैस मिलेगा, और फिर उसका जो है आपको जो वो बनता है उसमें जो अवशेष बचता है उसको अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग के काम में लें,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: वर्मी कंपोस्ट बेच भी सकते हैं। उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमारे किसान भाइयों को। साथ ही साथ आप जो है, जो हमारे केंचुए हैं ये भी बहुत महंगे बिकते हैं और बहुत तेज बढ़ते हैं।
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: आपने अपने यहाँ डाला हुआ है तो आप देखेंगे 2 ही 3 महीने में आप उनको बेचने लायक आपके पास इतने केंचुए हो जाएंगे,
1: जी जी
0: और इससे सभी को फायदा है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बढ़िया जानकारी दें कृषि एवं पशुपालन ये का बाट है, ऐसे हमारे किसान भैयारन के का लाभ होता है, आपके जानकारी देवे दे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
0: हाँ
2: भैया,
1: किसान भाई देखा ही बात बत का ही सुनन, अब देखा समय समय स्कूल निकला अगर चले कि बेला होगी तो पंचन साग्या लगे तो पंचो राम
2: राम
1: राम।
2: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन थी कहां, ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
3: चिकची चिकची चिकची चिकची चिकची चिकची चिकची चिकची।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज। धड़कन
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश, कहा आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए सारे काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा, कहा सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार, उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने काम में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखने को कहा है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: ज्यादा रहता है वहाँ की सड़कों को प्राथमिकता दी जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा, स्वास्थ्य और जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
2: जो सेवा संकल्प अभियान है, इसको हम सब धरातल पर उतारेंगे। केंद्र और प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा एक मुहिम हम चलाएंगे कि प्रदेश में हेल्थ कैंप्स के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति उपचार लेना चाहता है तो वो आए। वहाँ पर सभी प्रकार की जांचें होंगी, सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी को अन्य टर्सरी केयर की आवश्यकता है या कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमारे हेल्थ कैंप में जांच करा करके वो बड़े अस्पताल में उनको रिफर करके हम चिकित्सा सुविधा सभी प्रकार की उपलब्ध कराएंगे।
1: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22 लाख किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किया था। अभियान के तहत 14 वर्ष की लड़कियों को माता पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान किया जाता है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को लंबित मामलों का निस्तारण करना है। लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन, पारिवारिक, राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव और सिविल जज कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है।
3: राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर को आयोजित की जा रही है, मेरा आम जन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों का निस्तारण कराएं, जिसमें वाहन से चलानों के संबंध में ज्यादा आम जन को असुविधाएं होती हैं, उस पर फोकस करते हुए वाहनों के चलानों को निस्तारित कराएं, छोटे सम्मी मामलों को, पारिवारिक मैटर्स को, सम मामलों को, मोटर एक्सीडेंट के मामलों को, आप अधिक से अधिक मामलों में इसको निस्तारित कराना सुनिश्चित करने।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में आज वाराणसी में EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC सुपरवाइजर शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों को EVM की जाँच से लेकर मॉक पोल और FLC की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
4: यहाँ से जाने के बाद ये अधिकारी फर्स्ट लेवल चेकिंग कराएंगे FLC, और फर्स्ट लेवल चेकिंग का अर्थ है

0: कि ये जो मशीनें हैं इनको हम इलेक्शन में इनका प्रयोग करने से पहले एक एक मशीन को, एक एक यूनिट को, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, वीवीपैट हो, उसको चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है। और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी लिखित में सूचना देकर आमंत्रित करते हैं ताकि वो स्वयं उपस्थित रह सकें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि ये मेला लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पुस्तक मेले में 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 120 से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों को प्रदर्शित करेंगे।
2: पूरा इवेंट टिकट फ्री है, सो कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी कार्यक्रम और किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकता है। 250 से ज्यादा पब्लिशर्स यहाँ बुकस्टॉल्स लगे हुए हैं। वंदे मातरम का 150 वर्ष को लेकर एक यहाँ स्पेशल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इन सब के अलावा आप देखेंगे तो हर रोज बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं, हर रोज कल्चरल एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने का, रूबरू होने का अलग मौका है। तो अपने आप में एक कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आप इसका आकर लाभ उठा सकते।
1: चित्रकूट में भदई अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। रामघाट समेत प्रमुख तीर्थस्थलों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए बचाव अभियान, भोजन वितरण, राहत शिविर, चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर फर्रुखाबाद में नरौना बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा और रामगंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश। का आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए नवीनीकरण का काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा। कहा, सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार। उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के द्वितीय सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: सभी लोगों का अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द स्टूडियो। दिस इज गीतांजलि सोनी अलोंग मनीष चौली एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम टुडे बिकॉज़ दिस इज अ इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल। इंडिया इज ऑलरेडी इन द फाइनल सो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट।
5: गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है।
6: कह दो जहां से कह दो इश्क पर।

बहके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपीहा तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजा

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये गुलिस्तां हमारा। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: मूल यादें।
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
0: अनमोल यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है इस कार्यक्रम की आखिरी भेंट। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम हिम्मत।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें। नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें, अनमोल गीतों की यादों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके 10वें एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते जैन जी।
0: तो राजीव जी, आज के एपिसोड में क्या लेकर के आए हैं आप?
1: देखिए, फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा जो मैंने कुछ एपिसोड पहले बात कही थी
0: जी, जी।
1: कि नए फिल्मों के गाने जो है वो एक अलग ही दौर आ गया है, जिसमें प्रमोशंस नाम के वजह से म्यूजिक कंपनीज अपने आप चुनते थे कि किस गाने को प्रमोट करना है। मतलब उनके हिसाब से जो पॉपुलर हो सकते थे गाने, और
0: उन्हीं गीतों को लिया जाता था।
1: जी हाँ, उनसे जी। उनकी कमाई भी हो सकती थी कॉलर ट्यून के जमाने में या सीडीज के जमाने
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: लेकिन वैसे उसी कारण के वजह से कुछ अनमोल यादें हमने खो दी, अगर हमने उस वक्त याद नहीं रखी। तो मैंने ये दो गाने 2000 के बाद के आज के श्रृंखला में चुने हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस 80s के गाने से।
0: हाँ।
1: जिसके बाकी

0: के गाने बहुत चले, जिस फिल्म
1: अच्छा
0: के बाकी के गाने बहुत चले,
1: जी
0: फिल्म भी
1: जी
0: बहुत चली। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर,
1: अच्छा कामचोर। हाँ
0: और
1: हाँ
0: कामचोर में अगर आप देखेंगे तो पूरा हिट परेड था।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उसमें एक गाना जो है वो थोड़ा बहुत कम चल गया, और बाकी उसमें से एक गाना था वो थोड़ा कम चला और बाद में दब भी गया। बहुत ही मीठा प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारी मेलोडी थी। इंदिवर जी का लिखा हुआ ये गाना,
1: और राजेश
0: राजेश
1: रोशन का
0: रोशन का
1: संगीत।
0: म्यूजिक,
1: जी,
0: किशोर और लता मंगेशकर की आवाज।
1: और गीत के बोल हैं तुम मेरे स्वामी।
0: जी हाँ,
1: आइए सुनते हैं।

0: आमचोर फिल्म का ऐसा गीत जो बहुत कम सुना जाता है और जिसका जिक्र भी नहीं होता, हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और अब 2000 के बाद की फिल्मों के दो गीत आप सुनवाने वाले हैं राजीव जी।
1: जी हाँ, आपने वो जो बहुत ही जबरदस्त मेलेडी सुनी आपने, हाँ, कामचोर फिल्म में,
0: जी जी,
1: उसी मेलेडी की तरफ मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। उसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही गहरी मेलेडी। और ये गाना अनु मलिक जी ने कंपोज किया है।
0: अच्छा,
1: ले चले डोलियों में तुम्हें, जिसे रूप कुमार राठौड़ और चित्रा जी ने गाया है फिल्म फिलहाल के लिए। फिलहाल का जो शीर्षक गीत था आशा जी ने गाया हुआ, वो बहुत चला। ये गीत फिर से मेरे रोंगटे खड़ा करता है।
0: आइए सुनते हैं।

0: फिलहाल फिल्म का वो गाना जो बहुत कम सुना गया हमने सुना। और राजीव जी, आज के एपिसोड का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: देखिए, ये सारे गाने अनकहे गाने भी बोल सकते हैं, और हाँ। मेरा अगला गाना अनकही फिल्म से है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जो 2006 में आई
0: जी,
1: और उसमें ये बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत ही कम गाने लिखने वाले इसके लिरिसिस्ट थे, सुब्रत सिन्हा, लेकिन मार्केट लीडर, जो आज भी मार्केट लीडर है, प्रीतम साहब का कंपोज किया ये गाना, कुणाल गांजावाला ने गाया है। तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था।
0: आइए सुनते हैं अनकही फिल्म का ये गाना।

0: क्या बात है। अनकही फिल्म का ये जो गीत हमने सुना, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा भी न था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के गीतों की यादों से हमारी मुलाकात होगी। और बहुत खूबसूरत ये सिलसिला अनमोल यादों का चल रहा है। अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए श्रोताओं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अनमोल यादें।
3: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: अनमोल यादें।

हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री बी आर गुदगुदी की लिखी मूल कन्नड़ नाटिका का हिंदी रूपांतर शकुन का शीनू।

0: सरसुती ए सरसू, जरा जल्दी यहाँ आओ।
1: आती हूँ।
2: क्या है ये सुबह सुबह, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? तुम तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे कोई सर पर आसमान फट पड़ा हो। कहो क्या बात है?
0: ओहो, क्यों बिगड़ती हो सरसू? वो देखो उधर, उस खिड़की के उस पार, उस पेड़ पर।
2: पेड़ पर?
0: हाँ।
2: क्या है? अरे होगा कोई काला बंदर। क्यों जी, उसको दिखाने के लिए ये सब करना था तुम्हें?
0: ओफो
2: है, तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर तुम्हारे सातों पुत्र पुत्रियां जागेंगे और घर में संगीत सभा रचाएंगे। मुझे क्या चैन से काम करने देना है या नहीं?
0: देखो सरसू,

0: तुम यूं ही बिगड़ जाती हो। जो तुम्हें पेड़ पर दिखाना था वो काला बंदर नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें अकल कम है। वो देखो आंख फड़फड़ाता हुआ बैठा है, उसी के बारे में कहना था मुझे। हाय राम, आज क्या अशुभ समाचार मिलेगा। मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन लेकर उनको नमस्कार करूं, मगर देख रहा हूँ इस अनिष्टकारी उल्लू को। मेरे नाना जी कहते थे कि उल्लू जैसा मनहूस अनिष्टकारी दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सुबह सुबह कोई अनिष्टकारी उल्लू को देख ले तो समझ ले कि किसी बड़ी विपत्ति का उस दिन उसे सामना करना पड़ेगा। हाय राम, अब मैं क्या करूं?
1: वाह भाई वाह, इस इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में तुम तो जामवंत के युग की बात कर रहे हो। क्यों जी, आपको मालूम नहीं कि रोज हमारा नौकर सुबह उठकर पिछवाड़े में काम करते समय उस उल्लू को देखता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। अजी, ये सब पागलपन छोड़िए ना।
0: नहीं जी, ये कैसे हो सकता है। पहले मैं इस मनहूस उल्लू को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देने का प्रबंध करूंगा। उसको आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर एक बार भी इधर झांकने का नाम नहीं लेगा।
1: हाय मेरे भाग्य। अरे अरे, देखो जी, ये उस तरह मचाना, पिछवाड़े में बहुत कांटे हैं। अरे उस उल्लू को उसके हाल पर छोड़ दो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। अरे जी सुनो तो। ओफो, कुछ भी करो तुम तो मेरा कहना मानने वाली नहीं। तौबा, मुझे तो अंदर बहुत काम पड़ा, मैं जाती
0: हूँ। हाय भगवान, हाय भगवान, मर खड़े। अरे सर फटा जा रहा है, कोई है? ए सरसू, सरसू आओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। एक लोटा पानी लेती आओ, पानी।
1: फिर हम, ये क्या हो गया? बदन सब खून से भरा हुआ है। अरे हम, ये क्या कर रहे हो तुमने? अरे मैं जो कह रही थी उसको तुमने नहीं सुना, और ये बुद्धूपन का काम किया तुमने। देखो जोर से घाव को पकड़ लो, मैं अंदर जाकर अभी कपड़ा ला दूँ। ठीक है, क्यों जी, तुमने उस उल्लू को पाठ पढ़ाने के बदले खुद पाठ पढ़ लिया ना।
0: सरो, तुम हमेशा सभी बातों को हंसी मजाक समझती हो। मैंने तो पत्थर का निशाना उल्लू को ही बनाया था, मगर वो पत्थर थोड़े में ही फिसल कर पेड़ की उस टहनी से टकरा कर वापस मेरे सर को लग गया।
1: ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम अर्जुन के वंशज हो, और तुम्हारा निशाना हमेशा बराबर ही लगता।
0: सरू, मैंने जब से इस मनहूस उल्लू को देखा है तब से ही मनहूस समय का अनुभव कर रहा हूँ। पता नहीं सरू, पता नहीं, मुझे मुझे आज एक तरह की घबराहट सी हो रही है।
1: ओफो, क्या हुआ है जी तुम्हें? तुम्हें क्यों घबराहट होने लगी? तुम्हारी इस तरह की घबराहट को मिटाने के लिए कोई दवा किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। बस चलो, अब बहुत हो चुका।
0: सरू, तुम नहीं जानती मेरे मन में क्या हलचल मच रही है।
1: वो क्या है?
0: सरू, कल रात पड़ोस के घर का कुत्ता रोता था, और उसमें वर्षा भी नहीं थी। उसी समय घर के छत पर बिल्ली भी रोती थी।
1: हाँ, और आज उस उल्लू के सुबह सुबह ही दर्शन करने पड़े। इसीलिए हमारे नाना जी कहते थे कि ये सब अशुभ शकुन किसी अनिष्टकारी आपत्ति की सूचनाएं हैं। यही ना?
0: तुम तो मेरी सभी बातों को मजाक ही समझती हो। कल मैंने सपने में क्या देखा मालूम है? कल मैंने सपने में माँ को कुएं में गिरते देखा।
1: वाह वाह,
0: माँ कुएं से पानी उठा रही थी, यकायक रस्सी टूट गई। घड़ा कुएं में गिरते ही माँ भी उसके साथ ही कुएं में गिर गई। इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं ये सब अशुभ शकुन माँ पर कुछ असर ना करें।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तुम्हारे तर्क का भी जवाब नहीं। अजी, तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए टूटी हुई रस्सी ही हमेशा इस्तेमाल होती है। हमेशा माँ यही कहती थी कि इस घर में नई रस्सी शायद तभी आएगी जब तक कि शायद कोई कुएं में गिर ना पड़े।
0: ओ, ओ, सर, सुन।
1: पर सुनो, उसी विचार को तुमने अपनी खोपड़ी में रख लिया है और सपने में उस आपत्ति का साक्षात्कार कर लिया। बस यही है आपके मन का भ्रम।
0: नहीं भाई नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है कि माँ के बीमार होने का पत्र पिताजी से आया था, और उसमें ये भी लिखा था कि बीमारी और बढ़ गई तो वो तार भी भेजेंगे।
1: इसीलिए साहब को घबराहट हो रही है।
2: माँ, माँ, माँ स्कूल जाने का समय हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ।
0: सरू, अगर माँ को कुछ हो गया तो? धत, तेरी की चीख दिया। क्यों रे शैतान के बच्चे, तुझे एक ही बार चीखना था क्या? चल जल्दी एक बार और चीख, चीख, चीख। नालायक कहीं का।
2: कोशिश तो करता हूँ बापू चीखने की, लेकिन नहीं हो सकता।
0: नहीं हो सकता।

0: निकम्मा कहीं का, मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, निकल जा।
1: जाने उस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो?
0: तू चुप रह, तुझे तो हमारे संप्रदाय सभ्यता सभी ढकों से दिख पड़ते हैं। हाय प्रभु, मेरी रक्षा तुम्हें करना प्रभु।
1: ठीक है महाशय, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर अब क्या तुम तौलिया लेकर नहा कर मेरी रक्षा करोगे? सुनो, समय बीता जा रहा है।
0: ठीक है देवी जी, तुम्हारी तो माननी ही पड़ेगी। देखो सरू, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी का तो बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं यूं गया और नहाकर यूं आया।
2: हाय भगवान, मैं मर गया। तो जल्दी आ सरू, मैं गिर गया। हाय मेरा हाथ पांव टूट गया।
0: उजली छिपकली को वो मेरी बाईं ओर गिरी और मैं उससे बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा तो साबुन से पांव फिसल कर गिर पड़ा। ओह मेरा वो पांव ही टूट गया। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं क्या करूं?
1: तुम्हारी आंखों का भी जवाब नहीं, छिपकली दाईं ओर पड़े या बाईं ओर, तुमने तो अकलमंदी दिखाने जाकर पांव तोड़वा दिया। ये शकुन का भूत कहीं तुम्हें खा ही ना ले।
0: क्या कहती हो जी, तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है। मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
1: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
0: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो। हाँ, मुझे याद आया, परसों में गाय का घी लाया था ना सरू, उसको डालकर एक दिया जलाओ और उस दिए को भगवान के सामने रखो। तुम नहीं जानती सरू, इससे पीड़ा का परिहार हो जाता है।
1: बड़े आए घी का दिया चलाने वाले, यहाँ तो बच्चों को तेल भी नसीब नहीं और ये चले हैं गाय के घी का दिया चलाने।
0: सरू,
1: वो क्या भगवान एक ही दिया जलाने से संतुष्ट नहीं होते? बस बस बस, जल्दी स्नान समाप्त करो।
0: ठीक है बाबा, करता हूँ। जय गंगा जमुना।
1: क्यों जी, स्नान कर लिया? ठीक, अब भगवान के सामने दिया जला हुआ रखा है, जाओ। हाँ, और कॉफी भी तैयार है।
0: सरू,
1: क्या है?
0: अमावस्या परसों ही होने वाली है ना?
1: हाँ, तो क्या हुआ?
0: वो इसलिए कहता हूँ, वो बस मनहूस कुत्ता रात भर रोता रहा। हाय भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्ते के रोने का और माँ की तबीयत से क्या संबंध है।
0: ओहो सरू,
1: ओहो, मैं कहती हूँ छोड़ो जी, बेकार क्यों सोचते हो? कुछ नहीं होगा माँ को, अगर कुछ होगा भी तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, उससे माँ ठीक हो जाएंगी। जल्दी जलपान कर लो और डाक खाने जाकर ट्रंक कॉल करो, माँ की तबीयत की पूछताछ करो और आते समय बाजार से सब्जी भी लेते आना।
0: अच्छा लाओ कॉफी, मैंने पूजा भी कर ही ली है। ये बिल्ली क्यों मेरे सामने से चली? इसका हमारे घर का दूध ही मुंह लग गया है, मनहूस कहीं की।
3: पोस्टमैन, नमस्ते श्रीनिवास जी, आपके लिए तार है।
0: तार? हाथ पांव ठंडे पड़ गए। देखो भाई, ये तार मेरा ही है ना, और एक बार देखो तो सही।
3: मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ये तार आपका ही है।
0: ये क्या ही सुबह सुबह मुसीबत। भाई मुझे जरा बता देना, ये तार कहाँ से आया है?
3: घटक प्रभा से आया है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, सलाम साहब।
0: हाय भगवान, ये डाकिया क्या लाया सुबह सुबह? माँ की हालत बिगड़ गई होगी, माँ को घटक प्रभा ले गए होंगे। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ मर गई। सरू, ए सरू जल्दी आओ। हाय भगवान, ये क्या क्या तूने? सरू सरू आओ, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं जैसा सोचता था वैसे ही हुआ। हाय भगवान, मुझे अनाथ बना दिया, मुझे अनाथ बना दिया भगवान।
4: क्यों रो रहे हो?
0: आजा गोपी, आजा बेटे, तुम्हारी दादी चल बसी।
4: दादी चल बसी, पिताजी को तार आया है।
1: सच? हाय राम, क्यों जी, क्या ये खबर सच है? हाय राम, ये क्या हुआ? खैर जाने दीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए, माँ जी की भी तो उम्र काफी थी, भगवान की चाहत के सामने

0: किसका बस चलता है। माँ जी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही चाहती थी। क्यों जी, और क्या लिखे है जी तार में?
1: और क्या लिखना बाकी है, आखिर में वो अनिष्टकारी शकुन ने अपना प्रभाव दिखा ही दिया है।
0: वो देखो आपके मित्र रामचंद्र जी आ गए।
1: कोई आया हो तो अब क्या होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका है।
2: क्या हुआ भाभी जी, शिनू को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है?
0: भाई साहब, इनके घर से तार आया है, उसमें इनके माँ जी के गुजर जाने का समाचार लिखा हुआ है।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: हाँ रामू, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं किए।
2: रो मत शिनू, रो मत, धीरज रख। लाओ ये टेलीग्राम मुझको दो। He has been promoted and transferred and all are well in. क्या भाभी जी, आप भी इस बुद्धू की बातों में आ गई?
0: क्यों?
2: इस तार में ये लिखा है कि तुम्हारे बेटे को इंजीनियर की पदोन्नति मिली है।
0: क्या?
2: हाँ, प्रमोशन।
1: प्रमोशन
2: और घटक प्रभा को बदली हो गई है, यानी कि ट्रांसफर। तुम लोग तो बिना तार पढ़े ये सब हंगामा मचा रहे हो। गोकाक के सभी लोग सकुशल हैं, इस तार में ये भी लिखा हुआ है।
0: क्यों जी, बिना तार पढ़े ये सब गड़बड़ी पैदा की गई? मुझे क्या मालूम था रामचंद्र भैया, मैं समझी थी कि ये तार पढ़कर ही मुझे बता रही है।
3: हाँ रामू, सचमुच माँ को कुछ नहीं हुआ क्या?
2: ये क्या कर रहे हो शिनू, गंवार जैसी हरकतें। उठो, मुंह धो कर आओ पहले। मैं तुम्हें मानसिक रोग चिकित्सालय ले जाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊं। तुम तो बहुत भारी शकुन के शीनू हो भाई।
1: रामू, ये शुभ समाचार इसलिए आया कि सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी।
0: अच्छा जी, तो तुम सदा अपनी ही हांकते रहोगे। आखिर भाई साहब ने ठीक ही कहा है, तुम ठहरे जो शकुन के शीनू।
4: शकुन का शीनू, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ये नाटिका सुनी। मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुडगुडी, हिंदी रूपांतरकार एस ए हुनगुंड, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारव्हेकर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है फिल्म धड़कन का दो गाना, स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक के, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

ये स्वर थे अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के। फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की, फिल्म का नाम जुदाई।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। युगल स्वर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला के गीत को समीर ने लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: प्यार तो होना ही था, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आप सुन रहे थे, रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अब सुनिए जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और अभिजीत की आवाजी फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले, आदित्य नारायण और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है रंगीला। इस गीत को महबूब ने लिखा और धुन बनाई ए आर रहमान ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र

0: में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी

0: बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

0: भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वक्त कुछ गीत ऐसे आपके लिए हमने चुने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी को याद कर। तो चलिए, इस वक्त कुछ ऐसे ही भावुक नगमों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, कभी कभी हमारी तलाश किसी किसी खास पर आकर रुक जाती है, तो इसी खूबसूरत एहसास से गुथा हुआ था ये गीत, दिल को छू लेने वाला नगमा। हमने लिया था फिल्म जवानी दीवानी से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। हाँ, कभी कभी हम किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत सुने जहां कोई किसी के रंग में रंग गया है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। दोस्तों, किसी की यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल के करीब होती है, है ना? होती है ना? तो चलिए, इस गीत के माध्यम से हम उन पत्रों को, उन खतों को ढूंढते हैं जो हमने मोहब्बत के नाम लिखे थे,

0: यह अवस्थी मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था कन्यादान। गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है शर्मिली, गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है, मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अभी वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीत दिया है राहुल देव।

तो दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास, या यूं कहें कि कसक, बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी। लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

अपनी किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

हिंदी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है

कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो जिसने कहा था,
1: छोटी सी ये दुनिया

मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ न कहें फिर भी आप जान जाएंगे।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसास मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था हमने छोड़ा बहाना है।

की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों सी शान है, खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ, अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ियों, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना कहेंगे।

अब जाएंगे कितनी दूर भाई बस दूर।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: बार संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: लिया है, जैसे सुजाता वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।